मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन EIR ऐप पर, और इसके साथ वेव्स OTT पर। ये आकाशवाणी भोपाल है। आज गुरुवार है, शक संबत 1948, ज्येष्ठ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है। आपका दिन मंगलमय हो।

0: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को

0: जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: प्रातः बेला की आराधना वंदना।

भक्ति तभी संभव है जब भक्त स्वयं को और अपने अहम को भी अपने आराध्य के समक्ष समर्पित कर दे। ईश्वर की भक्ति कोई काम नहीं है, ये तो एक भावना है और भावना को व्यक्त करने का कोई समय या स्थान निर्धारित नहीं होता।

आध्यात्मिक उन्नति के लिए पूजा पाठ, मंत्रोच्चार, प्राणायाम, योग और भक्ति जैसी साधनाएं की जाती हैं। इन सब में से भक्ति ऐसी है जो हमारी भावनाओं से जुड़ी है।

ईश्वर का वास हमारे हृदय में ही होता है। उसे हम सांसारिक मोह माया में लिप्त रहकर देख नहीं पाते। हम जीवन भर देह की स्वच्छता पर ध्यान देते रहते हैं, मन की चादर मैली की मैली ही रह जाती है।

ईश्वर हमारा जन्मदाता है, वही हमारा पालक है। हम कभी प्रभु के दास हैं, कभी मित्र, कभी उसकी संतान। ईश्वर से हमारा निश्चल प्रेम और समर्पण का संबंध है।

0: आज की वंदना में आपने समूह स्वर में देशभक्तिपूर्ण रचना के पश्चात लता मंगेशकर, जगजीत सिंह, हरिओम शरण और अनुराधा पौडवाल के स्वर में भक्ति रचनाएं सुनी।
1: अभी आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी भोपाल है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

पुण्यात्मा काकभुशुंडी से श्री रामचरित मानस तथा ज्ञान और भक्ति की मीमांसा सुनकर गरुड़ कृतकृत्य हो गए। अब उनके इस आश्रम से विदा होने की घड़ी आ पहुंची थी, किंतु विदा होने से पहले वे अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहते थे। ये 7 प्रश्न थे। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा सुख क्या है? संत और असंत का भेद, सबसे महान पुण्य, सबसे भयंकर पाप और मानस रोग कौन से हैं? काकभुशुंडी ने उत्तर दिए, सबसे दुर्लभ मानव शरीर है और अभागे हैं वे जो इसे पाकर हरि भजन नहीं करते। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता। संत मिलन के समान अन्य सुख नहीं है। संत परोपकार करते हुए दुख स्वीकार कर लेते हैं और असंत दूसरों को दुख देने में सुख का अनुभव करते हैं। वेदों ने अहिंसा को परम धर्म अर्थात सबसे महान पुण्य बताया है और पर निंदा को घोर पाप। सभी प्रकार के मानस रोगों की जड़ है मोह अथवा अज्ञान, क्योंकि इसी से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है।

0: श्री रामचरितमानस गान अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से। लीजिए अब प्रस्तुत है चिंतन। विषय है प्रतिभा और परिश्रम। आलेख है डॉक्टर समर बहादुर सिंह का।
1: एक परिचित हैं, काफी घनिष्ठ। बहुत दिनों से उन्हें देखते परखती आई हूँ। उनकी योग्यता, उनकी कार्यपटुता और उनके चरित्र की कायल हूँ। अनेक महत्वपूर्ण और विशिष्ट सेवाओं के बाद सेवा मुक्त हुए हैं, किंतु आज भी वो उतने ही सक्रिय, उतने ही सजग और उतने ही उत्साही हैं, जैसे भविष्य की ओर उन्मुख 30-40 का युवक। हाल ही में उनसे मिलने का संयोग हुआ। बातचीत के दौरान मैं उनसे पूछ बैठी, धृष्टता क्षमा करेंगे, आपकी इन महती उपलब्धियों का रहस्य क्या है? जीवन से आपने क्या सीखा? प्रश्न सुनकर वे गंभीर से हो गए। लगा जैसे चिंतन सागर में डुबकियां लगा रहे हों। फिर अपने को बटोरते हुए उन्होंने कहा, जिंदगी में कामयाब होना कोई मुश्किल बात नहीं। यदि इंसान में प्रतिभा और परिश्रम है तो सफलता उसे मिलेगी ही। हाँ, कुछ बातें ऐसी अवश्य हैं जिन पर निरंतर ध्यान देते रहना चाहिए। उनके अभाव में प्रतिभा कुंठित हो जाती है और परिश्रम प्राय असंभव। मेरी जिज्ञासा बढ़ी, वे कौन सी बातें हैं? मैंने विनम्रता से पूछा। और फिर अनुभव सागर में चुने गए मोती से भरी उनकी पिटारी जो खुली तो मोती पर मोती बिखरते रहे, इतने कि मुझे संभालना भी मुश्किल हो गया। उनमें से 3 बातें आज रह रहकर मानस में उभरती हैं। उन्होंने कहा था, जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए जो मूल आधार है वो है स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती। इसी पर सारी क्षमता, सारी सफलता निर्भर करती है। कोई कितना भी मेधावी क्यों ना हो, यदि स्वास्थ्य ने साथ न दिया तो प्रतिभा संपन्न होते हुए भी वो विशिष्ट नहीं बन पाएगा। मामूली प्रतिभा का स्वस्थ और सबल आदमी उससे कहीं अधिक उल्लेखनीय कार्य कर सकेगा। मैंने पूछा, तो स्वास्थ्य उत्तम कैसे रहे? बस थोड़ी सावधानी बरती, स्वास्थ्य ठीक ही रहेगा। उन्होंने छूटते ही उत्तर दिया,

0: आहार विहार में संतुलन और नियमित व्यायाम, आहार उचित समय पर, उचित ढंग का, उचित मात्रा में, भूख लगे तभी खाएं, किंतु सच्ची भूख झूठी भूख नहीं। प्राय हम निश्चित समय पर खाने बैठ जाते हैं बिना ये सोचे कि शरीर को उस समय खाने की ज़रूरत है भी अथवा नहीं। यदि हम भूख और भोजन का संबंध अच्छी तरह समझ लें तो हमारे स्वास्थ्य की समस्या बहुत कुछ हल हो जाएगी। अपनी आदतों को भी हम यथासंभव अच्छी रखें, सोने जागने नित्य कर्म आदि में नियमितता बरतें, किसी व्यसन में अति न करें, सांसारिक सुखों का उपभोग करें किंतु संतुलन खोकर नहीं। आहार विहार के बिगाड़ देने से रोग हो जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार विहार में संतुलन तो होना ही चाहिए, साथ ही हमें नियमित रूप से व्यायाम भी करना चाहिए अपनी रुचि और सामर्थ्य के अनुसार। 15-20 मिनट सुबह खुली हवा में किया गया व्यायाम आगे चलकर उसी तरह फल देता है जैसे बीमा के लिए भरी गई रकम यानी कि प्रीमियम। वे कहते जा रहे थे, स्वास्थ्य के लिए सफलता प्राप्ति में प्रार्थना का भी बड़ा महत्व है। सच्चे हृदय से की गई सच्ची प्रार्थना कभी बेकार नहीं जाती, वो मनुष्य को मनोवांछित फल देती ही है। तभी तो गांधी जी प्रार्थना पर इतना बल देते थे। समर्पण की भावना से की गई प्रार्थना से शक्ति मिलती है, तनाव ढीले पड़ जाते हैं और जीवन में एक नई उमंग नई आशा का संचार हो जाता है। तीसरी बात थी जीवन के प्रति सही और स्वस्थ दृष्टिकोण की। सुख दुख सफलता विफलता चढ़ाव उतार तो जिंदगी में आते ही रहते हैं, ये तो विधि का विधान है, किंतु यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अपना दृष्टिकोण संतुलित रखें तो विफलता भी सफलता के रंग में रंग जाती है। कुंठाग्रस्त तुनक मिसाजी इंसान अवसाद के क्षणों में ये बात भूल जाता है, परिणाम स्वरूप वो अपनी खुद की जिंदगी को तो दूभर बना ही लेता है, सहयोगियों और परिवार वालों को भी इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। संक्षिप्त में, सुखी और सफल जीवन के लिए सुंदर स्वास्थ्य, हार्दिक प्रार्थना और संतुलित दृष्टिकोण, ये तीनों आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी हैं। अनुभव सागर के ये चुने हुए मोती हम सब के लिए पथ का दीप बन सकते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कृषि चर्चा।
2: किसान भाइयों नमस्कार, आज की कृषि चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान की उन्नत किस्में और खेती के बारे में। जैसा कि अभी हमारा समय धान की किस्मों खरीफ की फसलों का समय आ गया है, उसमें किसान भाई अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर धान की उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि धान की किस्में तीन प्रकार से हमने उसको वर्गीकृत किया है, आगेती किस्में, मध्यम अवधि की किस्में और देर से पकने वाली किस्में, और एक प्रकार से हम और वर्गीकृत कर सकते हैं मोटे अनाज वाली किस्में और पतले एवं लंबे चावल वाली किस्मों के बारे में। तो जिन किसान भाइयों को हम धान का विक्रय MSP पे करना है या सरकारी रेट पे करना है तो वे अपनी मोटे धान के का सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि MSP पे केवल मोटे दाने वाली किस्मों का ही क्रय किया जाता है। तो अगर हम मोटे धान की बात करें तो उसमें JR 206, JR 21 और JR 10 और क्रांति, इन चार किस्मों को आप प्रोग्राम में ले सकते हैं और उनका उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि इनमें सबसे अच्छी किस्म कौन है तो JR 206, क्योंकि यह किस्म कम अवधि लगभग 105 से 110 दिन में पककर तैयार होती है और इसमें कीट पतंगे और बीमारियों के लिए इसमें रेजिस्टेंट पावर है, तो इसमें हमको कम से कम लागत में हम अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे यहाँ जो क्रॉप फसल चक्र है जिसमें हम धान गेहूँ और मूंग की बुआई करते हैं तो उस फसल चक्र में यह बहुत ही सूटेबल है। इसी प्रकार अभी जो नई किस्म आई है जो अभी लेटेस्ट 2023 में रिलीज हुई है JNKV जबलपुर के द्वारा, यह किस्म है JR 21, इसका भी उत्पादन बहुत अच्छा है और यह किस्म फाल्स स्मट, जिसको कि हमारे किसान भाई हल्दीघाट रोग के नाम से जानते हैं, इसमें रेजिस्टेंट पावर है, तो यह हल्दीघाट रेजिस्टेंट होने के कारण यह किसान भाई इसको अगर लगाते हैं तो उनका भी लागत कम आएगी और एक बहुत बड़ी समस्या से वो बच सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें बासमती चावल वाली किस्मों की तो इसमें बहुत सारे

0: किस्में हैं, सबसे जो उन्नतशील किस्में हैं वो पूसा 1886 और पूसा 1885। ये जो जो दो किस्में हैं ये अभी लेटेस्ट 2022 में पूसा अनुसंधान द्वारा रिलीज की गई है, विकसित की गई है। और यह किस्म जो बैक्टीरियल ब्लाइट, ब्लास्ट और नेक ब्लास्ट, ये जो तीन बीमारियां हैं सबसे ज़्यादा अटैक मारती है, पर ये जो किस्म है जो हमने बताया 1886 और 1885, ये दो किस्में इसके लिए रेजिस्टेंट हैं और इनकी जो अवधि है वो लगभग 115 से 125 दिन की हैं। तो ये कम अवधि के साथ साथ इनका बहुत अच्छा उत्पादन है और इसकी जो लागत है वो कम लागत में भी ये अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो पूसा 1692, यह भी एक लगभग 105 से 110 दिन में पककर तैयार होने वाली किस्म है। तो आगेती जहाँ पर हमें बुआई करना है, जहाँ पर तीनों फसलों लेना है, तो वहाँ पर हम पूसा 1692 का भी चयन करके अपने खेतों में लगा सकते हैं। सबसे मेन बात अगर हम बात करें कि हम वैरायटियों का चयन तो कर लेते हैं, पर जो इनका स्रोत है ये कहाँ से, हमें कहीं पे भी प्रमाणित जगह से ही इन किस्मों का चयन करना चाहिए। और सर्टिफाइड सीड, या अगर हम बात करें कि प्रमाणित बीज या आधार बीज को ही किसान भाई खरीद कर अपने यहाँ लगाएं, क्योंकि अगर टीएल बीज खरीदते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आप प्रमाणित स्रोत से ही या प्रमाणित संस्थाओं से ही अपना बीज प्राप्त करें। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि बीज आपने अच्छा ले लिया, वैरायटियों का भी अच्छा चयन कर लिया, अब हम बीज दर कितनी रखें, तो किसान भाई जब हम बात करते हैं बीज दर की, तो जो मोटी धाने हैं उनमें हमें लगभग 10 से 12 किलो प्रति एकड़ की दर से बीज दर रखना चाहिए। और अगर हम डायरेक्ट बुआई करते हैं, जैसे मैंने बात करी JR 21 की, यह वैरायटी आप डायरेक्ट भी बुआई कर सकते हो। अगर हम डायरेक्ट बुआई करते हैं तो लगभग 15 से 20 किलो प्रति एकड़ की दर से इसकी बीज लेना चाहिए। और अगर हम नर्सरी बना रहे हैं तो 10 किलो प्रति एकड़ से बीज दर रखनी चाहिए। अगर हम पतली धान की बात करें तो 7 से 8 किलो प्रति एकड़ की दर से इसकी बीज दर हम ले सकते हैं। जितनी भी पतली धान है उसको हम डायरेक्ट बुआई ना करके हम उसका नर्सरी बनाएं और नर्सरी के बाद उसकी ट्रांसप्लांटिंग हमारे मेन फील्ड में करें। यह भी एक बहुत जानकारी किसान भाइयों ने रखना चाहिए कि जब भी हम नर्सरी लगाएं तो 18 से 20 दिन वाली नर्सरी को ही हमको अपनी मेन फील्ड में ट्रांसफ़र करना चाहिए। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि लगभग एक महीने की 30 दिन 35 दिन की हो जाती है, जब उसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जहाँ से हम नर्सरी निकालेंगे वहाँ उसकी जड़ें टूट जाती है। जड़ टूटने के कारण जब उसको नई जगह पर ले जाएंगे तो उसकी जो पूरी एनर्जी है वो जड़ बनाने में चले जाएगी, तो उसका कन से कम निकलेंगे और कहीं ना कहीं वो उत्पादन को हमारा कम करेगा। अगर हम 18 से 20 दिन का नर्सरी लेते हैं तो हमें अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। आज
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। अब समय है एक अंतराल का।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: पड़े, घटना स्वयं ही घट पड़े। भारतीय सेना।
1: अंतराल का समय समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल है, संस्कृत में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अभी आप सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधि झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियानम् 2.0 इत्यस्य प्रभावपूर्ण क्रियान्वयनस्य आवश्यकतामुद्दिश्य सबलं प्रोक्तवान् यत् अभियानम् आधारभूत संरचना निर्माणमतिक्रम्य नियमित निरीक्षणेन नागरिक सहभागितया अथ विभिन्न हितधारकाणां समन्वयेन मापन योग्य परिमाणान् सुनिश्चितं कुर्यात्। नवदिल्ल्याम् 51वें प्रगति उपवेशने अध्यक्षतां कुर्वन् श्रीमोदी राज्येभ्यः निर्दिष्टवान् यत् अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्राणि सहैव गोबरधन संयंत्राणि च सम्मिलितं कृत्वा कठोर अपशिष्ट प्रबंधन सम्बद्धानां आधारभूत परियोजनानां कार्यं शीघ्रं पूर्णं कुर्वन्तु। उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा 30,000 कोटि रूप्यकाणां सप्त महत्वपूर्ण परियोजनानां समीक्षा विहिता। सः अवोचत् यत् विद्युत् व्ययं न्यूनीकर्तुं ऊर्जा सुरक्षां वर्धयितुं गृह सामुदायिक स्तरे च स्वच्छ ऊर्जायाः प्रसारार्थं रूफटॉप सौर योजना मिशन मोड रूपेण स्वीकरणीया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य गैंगटॉक नगरस्य पालजोर क्रीडांगणे आयोजिते समारोहे सिक्किम आरक्षिबलाय प्रतिष्ठितं प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सर्वोच्चं सम्माननं प्रदास्यति। एतेन सह सिक्किम राज्यं सम्मानमिदं प्राप्तुं देशस्य 15वें राज्यं तथा उत्तरपूर्व क्षेत्रस्य 3वें राज्यं अभवत्। प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर इति सम्माननं देशे कस्यापि आरक्षिबलस्य असाधारण सेवायाः सुदृढ़ अनुशासनस्य राष्ट्रं प्रति निष्ठायाः च कृते दीयमानं सर्वोच्चं औपचारिक सम्मानं वर्तते। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा CBSE इत्यनेन हैदराबाद स्थितस्य शैक्षणिक तंत्रज्ञान संस्थायै कोइम्प्ट एडु

0: इत्यस्मै परीक्षा परिणामानुबन्ध आवंटनस्य विषये आरोपाः निराकृताः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीय पटलीय सन्देशे सीबीएसई इत्यनेन आरोपाः त्रुटिपूर्णः भ्रमात्मकः तथ्यहीनास्ति इति प्रतिपादितम्। परिषदा उक्तं यत् संस्थायै अनुबन्ध प्रदाने सामान्य वित्तीय नियमानां नियमावल्याः च निष्ठापूर्वकं पालनं कर्तव्यम्। परिषदा सूचितं यत् 26,2000 बोर्ड परीक्षायाः उत्तरपुस्तिकानां डिजिटल मूल्यांकनेभ्यः आरएफपी इति गतवर्षस्य अगस्तमासे केन्द्रीय सार्वजनिक क्रयण पोर्टल इत्यत्र आरभ्य योग्याय निविदानुबन्धः प्रदत्तः आसीत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य गुजरात राज्यस्य यात्रां प्रति एष्यति। स्वयात्रावधौ गृहमन्त्री अहमदाबाद गांधीनगर मण्डलयोः प्रायः 12 जनोपयोगी शिक्षा ग्रामीण आधारभूत संरचना परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विधास्यति। ईद उल अजहा अद्य कृत्स्ने उत्तर प्रदेशे सोत्साहं सोल्लासम् आचर्यते। बकरीद पर्व निर्विघ्नेन आचरितुं प्रशासनेन विस्तृता व्यवस्था कृता अस्ति। राज्यसर्वकारेण सर्वेषां मण्डलारक्षिप्रमुखाणां कृते सञ्चेतना च प्रसारिता अस्ति यत् क्षेत्रे नूतनपरम्परायाः आरम्भः न भवेत्, निषिद्धानां पशूनां बलिः न भवेत् इति सुनिश्चितं कर्तव्यम्। अन्ते च क्रिकेट् क्रीडायां आईपीएल क्रिकेट् स्पर्धायां गतरात्रौ न्यू चण्डीगढ़ नगरे क्रीडिते एलिमिनेटर द्वन्द्वे राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलं 47 धावनांकैः पराजितम्। राजस्थान रॉयल्स दलेन सनराइजर्स हैदराबाद दलस्य सम्मुखं 44,200 धावनांकानां लक्ष्यं स्थापितम् आसीत्। प्रत्युत्तरे हैदराबाद दलं केवलं 96,100 धावनांकानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
2: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृहमंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृहमंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF

0: चौकियों और कटीले तार की बाट लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर टू में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। श्रोताओं, अब हम आपको बता दें आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनिएगा अपना पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसमें आज आप सुनेंगे समाचार पत्रों से गाने नए पुराने, समय के साथ कल, आज और कल, नगर की बातें। और इसके बाद 8:30 आप सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। 9:02 पर फिल्म संगीत और 9:15 पर सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनिएगा रागनी तेलंग के गीत और भजन।

9:30 बजे नाटक डाकू बनते बनते। इस नाटक के लेखक हैं आशा शुक्ला और प्रस्तुतकर्ता हैं जगदीश अधिकारी। 10 बजे आप सुनिएगा जिले की चिट्ठी और 10:05 पर कार्यक्रम गीत सागर प्रसारित किया जाएगा। दिन में 11 बजे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे प्रस्तुत होगा। 12 बजे आपकी फरमाइश और 12:30 बजे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक सिस्किया की दूसरी कड़ी। 1 बजे महिलाओं का कार्यक्रम, योगदान होगा आकाशवाणी जबलपुर का। 1:30 पर लोक संगीत और 1:45 पर सुगम संगीत आप सुनिएगा, योगदान होगा आकाशवाणी जबलपुर का।

शाम 5:02 पर युवा साथी सुनेंगे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की रहेगी। फिल्म संगीत

का कार्यक्रम होगा शाम 5:30 बजे, 6:30 बजे और 8:15 पर, और इसके बाद रात्रि 9:30 बजे आप सुनिएगा। शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में आप सुनिएगा ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम आज। रात 8 बजे कार्यक्रम सुर्खियों में।

रात 10 बजे आप सुनेगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात्रि 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज आप सुनेंगे पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन, राग होगा गौरव कल्याण, राग होगा गौरख कल्याण।

श्रोताओं, कुछ खास कार्यक्रम हम आपको पुनः बता देते हैं। आज रात 10 बजे आप सुनेगा आपकी फरमाइश, रात्रि 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में आज आप सुनेंगे पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन, राग होगा गोरख कल्याण। श्रोताओं, ये थे आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रम। ये आकाशवाणी भोपाल है।

आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51वीं प्रगति बैठक में राज्यों को स्वच्छता, सोलर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बकरीद पर देशवासियों को बधाई दी। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में पढ़ने की अपील की। त्विशा शर्मा मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की। और IPL एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन की तूफानी पारी खेली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई अहम मुद्दों पर राज्यों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ शौचालय बनाने तक ना रहे, बल्कि कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों में भी तेजी लाए। छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बिजली सस्ती होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बल मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने लोगों से सड़क या सार्वजनिक जगहों पर नमाज ना पढ़ने की अपील की है। बोर्ड का कहना है कि नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में ही पढ़ी जाए। इसके अलावा कुर्बानी भी तय जगहों पर हो और उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर न शेयर करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने सार्थक PDS फेज 2 के लिए 25,530 करोड़

0: रुपये मंजूर किए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में AI और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज़्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। डॉक्टर यादव ने बताया कि पिछले एक दशक में राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार से जोड़ना और EPOS मशीनों जैसे कई अहम सुधार पहले ही किए जा चुके हैं। यह नई योजना उस कड़ी को और आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार करेंगे। चर्चा का जलवायु के अनुकूल खेती, दलहन तिलहन उत्पादन, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर जोर रहेगा। भोपाल की ट्विशा शर्मा की मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने देर रात 17 पन्नों के आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए राहत देना उचित नहीं था। साथ ही निचली अदालत पर भी सवाल उठाए कि उसने केस डायरी और साक्ष्यों की सही जांच नहीं की। अब CBI गिरिबाला सिंह को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वहीं ट्विशा के पति समर सिंह पहले से 29 मई तक CBI रिमांड पर है। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत SIR कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि मतदाता सूचियों की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी निर्भर करते हैं। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार कल पन्ना जिले के बहिरपुरवा गांव पहुंचे और कुआं धसकने से जान गंवाने वाले 5 मजदूरों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने शोक में डूबे परिवारों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि ये मजदूर अपने घर परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे और यह हादसा बेहद दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ भी पीड़ित परिवारों को दिलाया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। सांची स्तूप में रखे भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगल्यायन के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। आज ये अवशेष भोपाल से दिल्ली रवाना होंगे, जहां 29 मई को राष्ट्रीय संग्रहालय में लोग इनके दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। वहाँ की राजधानी उलान बतौर में 31 मई से आम लोगों के दर्शन के लिए अवशेषों को रखा जाएगा। यहाँ करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए जिले से लेकर गांव तक के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बना दिया है। अब कलेक्टर से लेकर पटवारी तक हर स्तर पर कोई न कोई अधिकारी सीधे जिम्मेदार होगा। शहरी इलाकों में नगर निगम के जोनल और स्वास्थ्य अधिकारियों को भी यह जिम्मा सौंपा गया है। साल 2025 में प्रदेश में बाल विवाह के 538 मामले दर्ज किए गए थे। प्रदेश में स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारी है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कल समीक्षा बैठक में बताया कि हर गौशाला में कम से कम 5000 गोवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गाय होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के अधिकार हेतु देगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। संभागायुक्त आशीष सिंह ने सभी विभागों को 7 दिन में पौधारोपण की प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। नई सड़कों, पंचक्रोशी मार्ग और शिप्रा नदी के नए घाटों के किनारे अमलताज, गुलमोहर और पलाश जैसे गर्मियों में खिलने वाले फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। IPL एनिमेटर में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर

अगले दौर में जगह बना ली। मैच के सबसे बड़े हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं आज राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा और जीतने वाली टीम रविवार को अहमदाबाद में RCB से फाइनल खेलेगी। अब बात मौसम की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से हाइड्रेटेड रहने और घर से निकलते वक्त पानी की बोतल साथ रखने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं, आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर के खजुराहो और नौगांव में 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। कल दोनों जगहों पर पारा 46.6 डिग्री रहा। आज यहां तीव्र लू का रेड अलर्ट है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल से 31 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में बारातियों से भरी पिकअप पलटने से एक महिला और 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। रतलाम जिले के आलोट के पास चलती कार में अचानक आग लग जाने से एक व्यक्ति झुलस गया, जबकि चालक और एक अन्य सवार ने कूदकर जान बचाई। खंडवा जिला चिकित्सालय में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। देवास की शाही ईदगाह में सुबह 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। शहर काजी ने समाज से कुर्बानी का हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने की अपील की है। खरगोन जिला सहकारी बैंक की ठिपगांव शाखा में 41 लाख से अधिक के गबन पर 3 कर्मचारी निलंबित। शिवपुरी कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों और कारखानों में बाल श्रम रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरमालवा में पेयजल और हैंडपम्प शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू। कटनी में प्रेमनगर बस्ती के आवासों पर बने 8 अनधिकृत कब्जे जिला प्रशासन ने हटाए। राजगढ़ में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला आयोजित और शहडोल में इस साल खरीफ धान बोनी का लक्ष्य 3000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,50,000 हेक्टेयर किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी भोपाल है, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।
2: कार्यक्रम नमस्कार भोपाल सुन रहे सभी दोस्त स्वीकार करें आपके अपनी दोस्त हमीदा का प्यार भरा नमस्कार आदाब।

दोस्तों, गर्मी की छुट्टी आती ही नया संदेश लाती है। किसी की घर की बेटी, किसी की घर की बहू वापस घर को आती है। बुआ, मौसी, चाची, नानी बहुत लाड़ दिखाते हैं। दोस्तों, एक समय था जब गर्मियों की छुट्टियां आते ही घरों में हलचल शुरू हो जाती थी। बच्चे खुश होकर कहते थे, नानी के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। कपड़े पैक होने लगते थे, टिफिन बनने लगते थे और टिकट बुक किए जाते थे। रास्ते के लिए टिफिन जो बनाए जाते थे उसकी एक अलग ही आनंद होता था। ये सब उस पीढ़ी के बच्चों के लिए केवल एक सफ़र नहीं होता था दोस्तों, बल्कि ये बचपन के एक ख़ास अनुभव में कदम रखना होता था। ऐसा अनुभव जो बिना सिखाए बहुत

कुछ सिखा जाता था। ये बच्चों के मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था और आज की इसकी ज़रूरत भी है। हमें उस अनुभव को नए तरीके से अपने जीवन में जगह देने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चों को सिर्फ व्यस्त ही नहीं रखना है बल्कि अपनापन भी चाहिए होता है, जो आज के दौर में दूर होता जा रहा है, नज़र ही नहीं आ रहा। स्कूल से छुट्टियों का होमवर्क ही इतना मिल जाता है कि बच्चों को अपने नानी दादी के घर खुशी भरे प्यार भरे माहौल तक जाने ही नहीं देता, जबकि रिश्तों की भी ज़रूरत है ज़िंदगी में, बच्चों के जीवन में।

वो सिर्फ व्यस्त ही नहीं रखना है बल्कि अपनापन भी चाहिए होता है, जो आज के दौर में दूर होता जा रहा है, नज़र ही नहीं आ रहा। स्कूल से छुट्टियों का होमवर्क ही इतना मिल जाता है कि बच्चों को अपने नानी दादी के घर खुशी भरे प्यार भरे माहौल तक जाने ही नहीं देता, जबकि रिश्तों की भी ज़रूरत है ज़िंदगी में, बच्चों के जीवन में। पहले दादी के घर से नानी के घर जाना कोई प्लान नहीं बल्कि जीवन का स्वाभाविक विस्तार होना होता था। परिवारों के बीच आना जाना इतना सहज था कि रिश्ते निभाए नहीं जाते थे, वे अपने आप ही जी लिए जाते थे। वहाँ बच्चा मेहमान नहीं बल्कि उस घर की धड़कन बन जाता था। उस परिवेश के हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता था और कोई सख्त तो कोई बहुत इस नहीं, कोई चुप तो कोई बातूनी। बच्चे इन सभी तरह की आदतें वाले लोगों के बीच रहते हुए अनजाने में ही सामंजस्य सीख जाता था। आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। आज सहजता कम हो गई है, परिवार छोटे और समय सीमित हो गया है। इन सब का कारण है एकल परिवारों का बढ़ना, कामकाजी जिंदगी की तेजी गति से बच्चों को व्यस्त रखना और डिजिटल दुनिया का जिंदगी में घुसना। पर दोस्तों, वक्त की मांग वही है, पुरानी जिंदगी जिसने रिश्तों की मिठास होती है। अपने और अपनों के लिए वक्त होता है, अपनों के साथ परिवार के साथ मिल बीट कर खाना पीना और घूमने का आनंद ही कुछ और होता है। बच्चों की छुट्टियां लग चुकी हैं तो प्लान बनाइए परिवार के साथ घूमने का, छुट्टियां एंजॉय करने का।

सबसे पहले आपको जो खबर दे दें दोस्तों वो है ईद उल अजहा का पर्व आज बुधवार को मनाया जाएगा। सुबह 6:30 बजे ईदगाह के शहर काजी नमाज अदा कराएंगे। इसके बाद शहर की 100 से ज़्यादा मस्जिदों में नमाज अदा की जाएगी। और आपको ये भी बता दें दोस्तों कि ईद उल अजहा के अवसर पर आज गुरुवार को राजधानी के ईदगाह सहित प्रमुख मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाज अदा करने वाले लोगों को देखते हुए भोपाल ट्रैफिक पुलिस ने विशेष यातायात व्यवस्था शुरू की है। ये डायवर्सन व्यवस्था आवश्यकता अनुसार सुबह 5:30 बजे से लागू होगा। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार भोपाल गेट से तरण पुष्कर होकर ईदगाह, गोलघर, परी बाजार होकर ईदगाह तथा वीआईपी गेस्ट हाउस और टीबी अस्पताल मार्ग से ईदगाह तक केवल नमाज अदा करने वाले लोगों को और उनके वाहनों को ही आने जाने की अनुमति रहेगी। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन और राजगढ़ ब्यावरा की ओर से आने वालों की बसों को लाल घाटी से नादरा बस स्टेशन भेजा जाएगा। ये बसें सीधे हलालपुरा बस स्टैंड तक संचालित की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के हर घर योग पहुंचे, इस दिशा में राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। योग के प्रचार के लिए सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सकारात्मक संकेत है कि आज का युवा पीढ़ी भी योग को सहर्ष स्वीकार कर रहा है।

29 स्टेशनों पर नियुक्त हुए टिकट बुकिंग एजेंट आसानी से मिलेंगे अब जनरल टिकट। भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 29 स्टेशनों पर जनरल टिकट बिक्री के लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट नियुक्त करने का निर्णय लिया। कई यात्रियों को ऑटोमेटिक टिकट वेटिंग मशीन से निकालने के लिए परेशानी होती थी, खासकर बुजुर्ग ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले और कम पढ़े लिखे यात्री तकनीकी प्रक्रिया को समझ नहीं पाते थे, जिससे उन्हें टिकट लेने में कठिनाई होती थी। इसी समस्या को देखते हुए रेलवे ने यह व्यवस्था लागू करने का फैसला किया। चयनित एजेंट स्टेशन काउंटर पर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के माध्यम से यात्रियों को जनरल टिकट जारी करेंगे। राजधानी में बीती शाम हिंदी जगत के मूर्धन्य कला व्यंगकार शरद जोशी की स्मृति में ऐसी महफिल सजी जहां ठहाकों के बीच व्यवस्था व समाज के दोहरेपन पर तीर चलाए गए। अवसर था अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा आयोजित व्यंगोष्ठी का। अध्यक्षता उर्दू एकेडमी की निदेशक व परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नुसरत मेहंदी ने की। और मौसम से जुड़ी दोस्तों आपको खबर दे दें, इन दिनों शहरवासियों को भीषण गर्मी ने हलकान कर रखा है। साल में सबसे गर्म माने जाने वाले ज्येष्ठ माह और नौतपा में गर्मी का टॉर्चर बढ़ गया है। हालात यह है कि 24 घंटे में से 19 घंटे तापमान 35 से 44 डिग्री

0: के बीच बना हुआ है। सिर्फ रात में ही 12 से 5 बजे के बीच तापमान 30 डिग्री के आसपास रहता है। उसमें नमी के कारण रात में भी उमस बनी रहती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अभी 2 दिन मौसम की यही व्यवस्था रहेगी और 29 से 30 मई के बीच एक्टिविटी कुछ अलग दिखाई देगी। खासकर ग्वालियर चंबल में तेज हवा गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति बन सकती है। भोपाल में भी बादलों की उम्मीद है। दोस्तों, छुट्टियां लग चुकी हैं, बच्चों में मस्ती का क्रेज बढ़ चुका है, तो उन्हें रोके नहीं, उन्हें टोके नहीं, उन्हें करने दे मस्ती और मस्ती के साथ साथ उन्हें करने दे पढ़ाई। ये उनकी उम्र है दोस्तों, उनको मस्ती करने दे क्योंकि छुट्टियां लग चुकी हैं, उनको एंजॉय करने दे।
1: चकरक चीचाचो चकलो रम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडि गिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकि चकचो गिलि गिलि मल सुलु सुलु मल मकनक हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलि सिलि सिलिगो बगडुम चकडुम चिकि चकचो।

0: मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस है। आज ये दिवस मनाने का उद्देश्य महिलाओं के प्रजनन अधिकारों, सेहत से जुड़ी समस्याओं को दूर करने और उनके शारीरिक अधिकारों के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। साथ ही आज मासिक धर्म जो स्वच्छता दिवस है, जो पीरियड्स के दौरान स्वच्छता के महत्व को उजागर करता है, महिलाओं को जागरूक करता है। हमारे साथ में है प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरिता अग्रवाल, जो प्रकाश डाल रही हैं इस दिवस पर।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता अग्रवाल। एक बहुत अच्छे टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। कहते हैं स्वच्छता ही स्वास्थ्य की कुंजी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। लेकिन अगर हम मासिक धर्म की बात करते हैं, क्योंकि आज हम एनवायरनमेंट हमारा बहुत ख़राब हो रहा है और बहुत सारी बीमारियां एनवायरनमेंट की वजह से हो रही हैं। हमारी बच्चियों को हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम किस तरह से मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता रख सकते हैं, क्योंकि उससे पर्सनल हाइजीन मतलब खुद का स्वास्थ्य सुरक्षित होगा ही, लेकिन हम समाज में और विश्व के स्वास्थ्य की भी चिंता कर सकते हैं। पहले तो हम अपने खुद के स्वार्थ की बात करें, जो हमारी बच्चियां हैं उनको हमको पहले से ही बताना चाहिए। वैसे आजकल बहुत इस पर काम हो ही रहा है, हमको शुरू से ही बताना चाहिए कि मासिक धर्म क्या होता है, उसके दौरान हमको क्या सुरक्षाएं अपनानी चाहिए, हमको कैसे पैड यूज़ करना चाहिए और कैसे उसका थ्रो आउट करना चाहिए या कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। तो हमें हमारी बच्चियों को पहले से ही बताना चाहिए कि कैसे वो क्या यूज़ कर सकती हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ कि जो हम पैड यूज़ करते हैं, नॉर्मली पहले हमारे गांव में कपड़े यूज़ करते थे, कोई भी पुराना चादर फाड़ के दे देते थे, पुराने कपड़े फाड़ के दे देते थे, तो उससे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो स्टरलाइज नहीं रहता था। तो उसके क्योंकि पहले हमारे खुलकर बातचीत नहीं होती थी और इसको छुपा के रखा जाता था, तो लड़कियों को और बहुत बुराई मतलब अलग रखा जाता था, ऐसा अछूत समझा जाता था और लड़कियों से इस बारे में बात ही नहीं की जाती थी। तो उनको वही कपड़े यूज़ करने होते थे और उसी को वो धो के बेचारी सुखा कर फिर से यूज़ करती थी। तो वो एक बहुत गलत तरीका है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन के बहुत चांसेस होते हैं, तो उसी से अंदर जाके आगे जाके PID यानी कि इन्फेक्शन होने के चांसेस होते थे, वाइट डिस्चार्ज होने के चांसेस होते थे, यहाँ तक कि सर्वाइकल कैंसर तक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए हमको हाइजीन हम खुद मेंटेन करेंगे तो बहुत सारी बच्चेदानी से जुड़ी बीमारियों से बचाया जा सकता है और यहाँ तक कि कैंसर से भी बचाव किया जा सकता है। तो हम अगर कपड़ा नहीं यूज़ करते हैं तो क्या यूज़ करना चाहिए? तो कपड़ा, ऐसा नहीं कि कपड़ा बुरा है, लेकिन उसको प्रॉपर धूप में सुखा के सैनिटाइज अच्छे से स्टरलाइज करके यूज़ करना चाहिए, जो कि कन्वीनियंट शायद नहीं होता है। तो कन्वीनियंस के लिए पैड आ गए, तो पैड डिस्पोजेबल पैड्स यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी कई तरह की बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक केमिकल की लेयर लगी रहती है जिसकी वजह से वेजाइना में इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, कई बार फंगल इन्फेक्शन, ईचिंग, ये सब होता है। दूसरा बड़ा कारण है कि पैड यूज़ करने की वजह से वो जो पैड यूज़ करके फेंक देते हैं उनको कई सारे जानवर खाते हैं, इधर उधर पड़े रहते हैं, वो एक बहुत बहुत ही गलत वातावरण को हम प्रदूषित कर रहे हैं। और कितने टनों पैड की वजह से कितने टनों एनवायरनमेंट में वो गंदगी आ रही है, तो फिर क्या यूज़ करना चाहिए? आजकल कॉटन के पैड्स भी आ गए हैं जो कि कॉटन के रहते हैं, तो जिसकी वजह से केमिकल वगैरह होने के चांसेस कम रहते हैं, कई सारे NGO उनको देते भी हैं। मेंसेस के दौरान लड़कियों को

0: बीटाडीन लोशन वगैरह से वॉश करना चाहिए, उस टाइम बराबर पानी से धुलाई करनी चाहिए, और अच्छा खाना खाना चाहिए, और थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, और खुली हवा में बैठना चाहिए। मॉडर्न ज़माने के साथ में वो सब उनको सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए और अच्छी डाइट देनी चाहिए।
1: पीरियड से जुड़ी मैडम बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे सुनने वालों को दी। अब जानना चाहेंगे कि मेनोपॉज के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
0: ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। मेनोपॉज ये बीमारी नहीं है। जिस तरह से महीना आना शुरू होता है उसी तरह एक औरत की जिंदगी में महीना जाता भी है, जो कि 45 से 50 ईयर्स के बीच में होता है, और उस टाइम शरीर में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो शायद परिवार वाले समझ ही नहीं पाते, क्योंकि उस टाइम एक औरत पूरी जिंदगी अपने परिवार अपने बच्चों में अपना पूरा समय लगा देती है, और अचानक से उसमें ऐसे बदलाव आते हैं जो कि हार्मोन के चेंजेस की वजह से होते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन, ज़्यादा गर्मी लगना, पसीना आना, थोड़ा मोटापा होना, और बहुत सारे उसके अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं, थकान ज़्यादा लगना, कि वो अपने इस बदलाव से वो खुद परेशान हो जाती है, और घर वाले उसको समझते हैं कि ये तो इसकी अब बूढ़ी हो रही है। उस टाइम उसको इमोशनली और फिजिकली मेंटली फैमिली को साथ देना चाहिए।
1: बहुत ही अच्छी जानकारी मैडम आपने हमारे श्रोताओं को दी। अंत में आप क्या कहना चाहेंगी इस दिवस पर?
0: अंत में यही कहना चाहूँगी कि हम अपने अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर महीने में जो आना और जाने का समय है उसको हम अच्छे डाइट, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी खान पान और सेफ एनवायरनमेंट, सेफ जो चीज़ें मैंने आपको बताई जैसे मेंस्ट्रुअल कप है, कॉटन के पैड्स हैं, उनको यूज़ करके हम अपने आप को भी बचा सकते हैं और हम एनवायरनमेंट सेव करने के लिए भी अपना योगदान दे सकते हैं।

बहुत ही उपयोगी जानकारी हमें दे रही थी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरिता अग्रवाल। दोस्तों, आज की महिला, आज की बालिका चहर दीवारी तक नहीं है, बल्कि वे घर के बाहर निकलकर घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी निभा रही है, इसलिए उसका जागरूक रहना भी जरूरी है।

0: मीडियम वेव 1593 किलोहर्ट्ज डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र, जहां से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। दोस्तों, गर्मी अपने पूरे शवाब पर है। पारा सिर्फ धूप में निकलने वालों को ही नहीं बल्कि घर के अंदर रहने वालों को भी परेशान कर रहा है, बीमार कर रहा है। हॉस्पिटल में चक्कर, उल्टी, डिप्रेशन, सिरदर्द और बेहोशी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में काम करने की ऊर्जा भी कम होती जा रही है। उससे कैसे निपटा जाए, यही जानने के लिए हम मिले डाइटिशियन डॉक्टर दीप्ति बाथम से और उनसे जानना चाहा कि भीषण गर्मी, घटती कार्य क्षमता, तो क्या है इसका समाधान। उन्होंने बताया,
1: बढ़ती गर्मी से लोगों में जल्दी थकान, कमजोरी और एकाग्रता में कमी आ रही है। इससे काम की गति और कार्य क्षमता दोनों प्रभावित होती हैं।
2: अत्यधिक तापमान में काम करने वाले जो लोग हैं उन्हें किन स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है?
1: उन्हें डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, चक्कर आना, सिरदर्द, कमजोरी, अधिक पसीना और कभी कभी बेहोशी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
2: जानना चाहेंगे गर्मी के कारण थकान और एकाग्रता में कमी क्यों आती है?
1: गर्मी में शरीर का तापमान बढ़ जाता है और शरीर को ठंडा रखने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च होती है। इससे व्यक्ति जल्दी थक जाता है और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है।
2: तो क्या बढ़ती गर्मी का असर मजदूरों, किसानों, फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों पर अधिक पड़ता होगा?
1: हाँ, क्योंकि ये लोग लंबे समय तक धूप और गर्म वातावरण में रहते हैं, इससे उनके स्वास्थ्य और कार्य क्षमता पर अधिक असर पड़ता है।
2: मैडम, हाई स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं?
1: अत्यधिक प्यास लगना, चक्कर आना, कमजोरी, सिरदर्द, उल्टी, शरीर का बहुत गर्म तापमान होना और अधिक पसीना आना, इनके शुरुआती लक्षण होते हैं।
2: तो मैडम, लगातार गर्म वातावरण में काम करने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी क्या प्रभाव पड़ता है?
1: लगातार गर्मी में काम करने से तनाव, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, नींद की कमी और मानसिक थकान बढ़ सकती है।
2: तो गर्मी के कारण काम की उत्पादकता और गुणवत्ता प्रभावित होती होगी?
1: हाँ, गर्मी से थकान और ध्यान में कमी आती है, जिससे काम की गति धीमी हो जाती है और गलतियाँ की संभावना बढ़ जाती है।
2: मैडम, जानना चाहेंगे कि गर्मियों में कार्यस्थल पर किन किन सावधानियों का हमें पालन करना चाहिए?
1: पर्याप्त पानी पीना चाहिए, हल्के और सूती कपड़े पहनना चाहिए, समय समय पर आराम करना चाहिए, धूप से बचना चाहिए और ठंडी जगह पर काम करने की कोशिश करनी चाहिए।
2: पर्याप्त पानी और सही खानपान कार्य क्षमता बनाए रखने में कैसे मदद करते हैं?
1: पर्याप्त पानी शरीर को हाइड्रेट रखता है और सही खानपान ऊर्जा प्रदान करता है, इससे शरीर स्वस्थ रहता है और कार्य क्षमता बनी रहती है।
2: मैडम, शैक्षणिक संस्थानों में, ऑफिस में, फैक्ट्रियों में गर्मी से बचाव के लिए क्या व्यवस्थाएं होना ज़रूरी हैं?
1: शैक्षणिक स्थानों में गर्मी से बचाव के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जैसे कि कक्षाओं में एयर कंडीशनर या पंखों का उचित इंतज़ाम, हल्का रंग और सूती कपड़ों का इस्तेमाल, पानी की व्यवस्था और समय समय पर आराम के लिए ब्रेक। साथ ही खुले स्थानों में हवा का प्रभाव सुनिश्चित करना चाहिए। आम नागरिक भी गर्मी से बचने के लिए नियमित पानी पिए, हल्का और पोषक भोजन ले, धूप से बचे और अगर संभव हो तो काम के घंटे सुबह या शाम के ठंडे समय पर रखें, इससे उनकी दैनिक कार्य क्षमता बनी रहती है।
2: मैडम, अंत में जानना चाहेंगे कि जो आम नागरिक हैं गर्मी से बचते हुए अपनी दैनिक कार्य क्षमता कैसे बनाए रख सकते हैं?
1: आम नागरिक गर्मी से बचने के लिए कुछ सरल कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले पर्याप्त पानी पीना जरूरी है ताकि शरीर हाइड्रेट रहे, हल्का पौष्टिक भोजन करें और ज़्यादा वसा और भारी भोजन से बचें। गर्मी के चरम समय में घर के अंदर या छायादार स्थानों में रहें और हल्के कपड़े पहनें, नियमित रूप से छोटे छोटे ब्रेक लें, गहरी सांस लें और अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस तरह आप गर्मी के बावजूद अपनी रोज़मर्रा की कार्य क्षमता बनाए रख सकते हैं।
2: मैडम, आपने खान पान की बात की, क्योंकि आप एक न्यूट्रिशन हैं, तो खान पान में क्या लेना चाहिए इन दिनों आवाम को?
1: गर्मियों के दिनों में हल्का, पचने में आसान और अधिक पानी वाले खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, जैसे फल, सब्जियां, दही और सलाद। तली हुई चीज़ों से बचें और तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी, लस्सी या सूप का सेवन करें। कम मसालेदार और ताज़ी चीज़ें खाने से शरीर हाइड्रेट रहता है और ऊर्जा भी बनी रहती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि गर्मी बहुत है, सभी लोग से निवेदन करूँगी कि अपना ख्याल रखें और खान पान का ध्यान रखें।

जानकारी हमें दे रही थी दीप्ति बाटथम, जो कि पोषक आहार विशेषज्ञ हैं। दोस्तों, गर्मी तो जो है वो है ही, लेकिन इसमें ज़रूरी है अपना ख्याल रखना। तो धूप में जाएं तो कवर होकर जाएं, चश्मा लगा कर जाएं, खुद को सेफ करते हुए एंजॉय करें इस मौसम को।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। दोस्तों बात करते हैं सम्मान समारोह की। वर्ष 2026 में 113 हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए। हमारे लिए गौरव की बात है कि इन पुरस्कारों में हमारे शहर के डॉक्टर नारायण व्यास को पुरातत्व विज्ञान और श्री कैलाश पंत को शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से अलंकृत किया गया। हमने डॉक्टर नारायण व्यास से बात की और सबसे पहले उन्हें पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से बधाई देते हुए उनसे जानना चाहा इस पुरस्कार के बारे में, तो उन्होंने बताया।
1: ये कहना चाहूंगा ये इतना बड़ा सम्मान है, राष्ट्रीय सम्मान है और सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है जो बहुत ही दुर्लभ होता है। जिसमें हमने देखा है कि जितनी अधिक मेहनत करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उनको ये पुरस्कार जरूर अवश्य मिलता है। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आगे बढ़े, सभी मेहनत करें। मैं जैसे ये पुरातत्व क्षेत्र में काम करता हूँ, पुरातत्व का ऐसा क्षेत्र है कि इतिहास और पुरातत्व, जब तक हम पुरातत्व नहीं देखेंगे इतिहास समझ में नहीं आया। वैसे जड़ और चेतन का होता है, जड़ जमीन में होती है और चेतन वो वृक्ष के रूप में होती है, तो ये दोनों चीज समान है। इसलिए हमें क्या है कि वर्तमान में एक तरह का विज्ञान है, तो इस विज्ञान को जानने के लिए हमें पुरातत्व की आवश्यकता होती है। जो सामग्री हमें उत्खनन मिलती है उसी से हमारा इतिहास बनता है, जो कि हमारे पूर्वजों की धरोहर होती है, वो हमसे सबके सबके सामने इस माध्यम से सामने आती है सभी के।
2: तो सर हमारे युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे इससे जुड़ने हेतु?
1: नहीं, ये कहना चाहूंगा हमारा विषय कोई भी हो पर हमारी जो धरोहर है, हमारे ये सबकी टेक देती है और हमारे जो पड़ोसियों ने जो धरोहर बनाएंगे उसे हमें संभाल के रखना है, जैसा वर्तमान में हम सब लोग संभाल के रखते हैं ताकि भविष्य को जैसा वक्त मिल सके, ताकि वो भी उसका आनंद ले सके।
2: जानना चाहेंगे कि अब तक की आपकी सबसे महत्वपूर्ण खोज या परियोजना कौन सी रही?
1: ऐसा है, हमने तो अपने समय में बहुत काम किए 33 साल में, लेकिन उसमें जो दो महत्वपूर्ण काम थे हमारे
2: जी,
1: पहला तो हमारे जो भीमबेटका है भोपाल के पास में, जो हमारे गुरुजी भाकनकर साहब ने उसकी खोज की थी और उनके साथ हम उनके असिस्टेंट रहकर काम किया, और उसके बाद क्या हुआ कि विश्व धरोहर में हमने पूरा योगदान दिया और पूरे विश्व धरोहर में ये भीमबेटका आई है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्थल है आदि मानव की सभ्यताओं का, जहाँ उनके पत्थर के हथियार, उनकी संस्कृति की चीजें और विशेष रूप से जो शैल चित्र करना आज जनता के सामने जो आई है वो भीमबेटका के कारण ही आई है
2: जी।
1: और एक और मैं आपको बताना चाहूंगा।

0: अयोध्या में रानी की वाव करके एक साइट है, वो जिसे हम बावड़ी कहते हैं आजकल, तो रानी की वाव ऐसी बनी हुई है, विशाल बावड़ी है करीब, वो जब मैं खुदाई करके पूरे गए पानी के लेवल 160-120 फीट तक था, तो 120 फीट तक पूरे जहाँ देखना हमें मूर्तियां देखने को मिलती है, वो 7 मंजिल वाली बावड़ी थी। पहले मंजिल, तीसरी मंजिल, पांचवी मंजिल और सातवीं मंजिल, तो उसके पास कुआ था।
1: अच्छा।
0: तो लगभग 1500 से ज्यादा वहाँ पर मूर्तियाँ लगी हुई थी विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की, और वो इतना सुंदर था ना कि उसमें मैं तो जोखिम भी थी उसमें कि 3 बार तो उससे गिरते बचा, 2 बार ऐसे चक्कर आया और एक बार मार ऐसा पड़ा मैं कि 1 महीने तक बीमार आया, इतनी कमर अकड़ गई थी उसके अंदर ठंड। वो जो हम आज सोकर नोट देखते हैं ना, उसके पीछे कोई मॉन्यूमेंट बना है, तो हमें ये लगता है कि आज हमारा काम सोकर नोट के ऊपर सभी दिखाई, हम भले दिखे ना लेकिन हमारा काम दिख रहा है।
1: नहीं, आपका काम दिखा, आपको इतने बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया, तो युवा शोधकर्ताओं को और विद्यार्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं तो ये संदेश ही देना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को भले कोई विषय हो, हमें शोध कार्य करना चाहिए, जो पूर्वजों की धरोहर है, जो जमीन के नदी हुई है, वो विभाग के साथ मिलके, भारतीय पुरातत्व के साथ मिलके, और ऐसी खोज करें कि आज जनता के सामने, क्योंकि विश्व में सबसे प्रसिद्ध अपनी सभ्यता है अपने भारत की, तो उससे पुरानी सभ्यताएं कहीं नहीं मिलती है, लेकिन हम उसकी खोज करें, उसकी जानकारी लें और सहयोग करें एक से एक दूसरे से मिलकर, ताकि सभी चीजें, सभी जो छुपी हुई चीजें जमीन के अंदर, वो जनता के सामने आ सके, इस प्रकार का ऐसा काम हम करें।
2: गौरवशाली पल को हमसे साझा कर रहे थे डॉक्टर नारायण व्यास। दोस्तों, इस कार्य को शिद्दत से किया जाए, किसी भी कार्य को शिद्दत से किया जाए तो वो काम सराहनीय होता है, पुरस्कृत होता है। और इस गौरवशाली मुलाकात के बाद इजाज़त दीजिए, हमीदा को नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी भोपाल है।
4: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में 2-2 फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतरराज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतर्राज्य जल समस्याओं के समाधान पर

0: बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
2: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
3: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक PDS को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
4: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई हैं। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल हैं। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुंचाया जाएगा।
2: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में

0: बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
2: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
3: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जागृति। एसआईआर पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा एसआईआर। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जांच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी अवैध ढांचा को ध्वस्त करें। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन

0: पार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा हॉर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है। अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. Prime Minister Narendra Modi chairs 51st Pragati meeting in New Delhi. Reviews 7 critical infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah asks authorities to demolish all illegal structures within 15 kilometers of international border. Heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 days. Eid ul Azha being celebrated in different parts of the country today with religious fervour. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Sunrisers Hyderabad by 47 runs in eliminator match in New Chandigarh. Prime Minister Narendra Modi has emphasised the need for effective implementation of Swachh Bharat Mission 2.0 and underlined that the mission should move beyond infrastructure creation and ensure measurable outcomes through regular monitoring, citizen participation and convergence between various stakeholders. Chairing the 51st Pragati meeting in New Delhi, Mr. Modi asked states to expedite the completion of solid waste management related infrastructure, including waste processing plants and Gobardhan plants. During the meeting, the Prime Minister reviewed 7 critical infrastructure projects across the railways, power and road sectors, covering 9 states worth around 30,000 crore rupees. We have a report.
3: While reviewing power sector projects, Prime Minister emphasized the need to accelerate rooftop solar adoption across urban areas with a special focus on cities, residential clusters and public institutions. He underlined rooftop solar should be taken up in mission mode to reduce electricity costs, improve energy security and promote clean energy at the household and community level. While reviewing road and port connectivity projects, it was emphasized that Vadhavan Port should be developed as a model of port-led multimodal development where every major mode of transport is seamlessly integrated to create a future-ready logistics ecosystem. Mr. Modi said the project should not be seen merely as a port but as a national gateway connected through coastal shipping, inland waterways, dedicated freight corridors, high-speed rail connectivity, highways and airport linkages. While reviewing Ken-Betwa River interlinking project, the Prime Minister observed that Ken-Betwa project should

0: वतन का राग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है महादेव विनायक रानाडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हरियाणा से हरस्वरूप और दमोह से हर्षिता। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

क्रांति पथ पर चलते हुए सौगंध आजादी की खाई थी, जंजीरों से थे बंधे वो तन, पर रूह नहीं झुक पाई थी। इस पार खड़े थे पहरेदार, उस पार स्वाधीन सवेरा था, वो वीर वहां भी हंसते थे जहां घोर काल का डेरा था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अनगिनत देशभक्तों ने जेल यातनाएं सही, लेकिन अंडमान की सेलुलर जेल में कैद क्रांतिकारियों का जीवन अत्यंत कठिन था। सेलुलर जेल, जिसे क्रांतिकारियों द्वारा वैली ऑफ डेथ माना जाता था, इसका निर्माण ही क्रांतिकारियों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए किया गया था। इसी जेल में बलिदान होने वाले महान क्रांतिकारी थे मोहन किशोर नामदास। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन बिरले योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपनी शहादत से मौत को भी छोटा साबित कर दिया था।

सेलुलर जेल की दीवारों ने भले ही उनके शरीर को कैद किया हो, लेकिन उनके संकल्प ने उस काल कोठरी में कैद क्रांतिकारियों के जीवन को उनकी शहादत के बाद बदल कर रख दिया। उनकी जीवन यात्रा पराधीन भारत के उस क्रोध की यात्रा है जिसने अंततः 1947 के सूर्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। मोहन किशोर नामदास का जन्म अविभाजित बंगाल के मैमनसिंह जिले के बाजितपुर क्षेत्र में हुआ था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में ये क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। बंग भंग आंदोलन से आरंभ हुए आक्रोश ने यहाँ के युवाओं के मन में तीव्र राष्ट्रवादी भावना का संचार किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं, विशेष रूप से आनंद मठ और उसके कालजयी गीत वंदे मातरम ने इस पूरे क्षेत्र को जागृत कर दिया था। इस वातावरण ने मोहन किशोर नामदास को गढ़ने का काम किया। उनके भीतर स्वाधीनता, स्वदेश और स्वराज की भावना अत्यंत प्रबल होने लगी। भारत भूमि से उन्हें अगाध प्रेम था और अपनी इसी जन्मभूमि की मिट्टी को माथे से लगाकर उन्होंने क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश किया।

उस समय बंगाल में दो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे, जुगांतर और अनुशीलन समिति। मोहन किशोर नामदास ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत अनुशीलन समिति की कोलकाता शाखा के साथ की। अनुशीलन समिति मात्र एक राजनीतिक या सामाजिक संगठन नहीं था, बल्कि ये युवाओं के लिए एक शारीरिक, मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण का केंद्र था। यहाँ केवल व्यायाम नहीं सिखाया जाता था, जैसा कि प्रचारित था कि ये एक व्यायामशाला है, बल्कि इससे बहुत आगे जा

कर इसके वृहत्तर उद्देश्य थे। यहाँ युवाओं को शक्ति की उपासना और मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार किया जाता था। अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1902 में हुई थी। व्यायाम और साहस इसकी मूल भावना थी। संगठन का मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को केवल याचिकाओं या संवैधानिक दायरे में रहते हुए नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह अनिवार्य है। इसके कई अखाड़े थे जहां लाठी चलाना सिखाया जाता था, तलवारबाजी और मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। इसके सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य दिया जाता ताकि उसे पढ़कर वो भारत की आज़ादी में अपना योगदान देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हों। अपना अधिकार मांगने की बजाय उसे छीन लेने में इस संगठन का विश्वास था। इसके सदस्यों को गीता पर हाथ रखकर देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। मोहन किशोर नामदास ने इसी संगठन के कठोर अनुशासन में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके लिए ये संगठन एक ऐसे विश्वविद्यालय की तरह था जिसने उन्हें औपनिवेशिक दासता की बीड़ियों को तोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। इस तरह उनके जीवन को एक दिशा मिली, एक अटल लक्ष्य जिसके लिए जीने और मरने का उन्होंने संकल्प लिया। 1930 का दशक आते आते क्रांतिकारियों ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। अब तक वो अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों से बदला ले रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, लेकिन अब हथियार जुटाने के लिए धन की व्यवस्था वो डकैती से करने लगे। ब्रिटिश दस्तावेजों में उनकी इस कार्रवाई को डकैती कहा गया, जबकि क्रांतिकारी इसे स्वदेशी डाका या राजनीतिक कार्रवाई कहा करते थे। मोहन किशोर नामदास इसी रणनीति में सघन रूप से सक्रिय थे। सन 1932 में क्रांतिकारियों ने धन और हथियार जुटाने के लिए एक डकैती की योजना बनाई। क्रांतिकारियों ने नेत्रकोना के पास स्थित एक गांव में सशस्त्र डकैती डाली। मोहन किशोर नामदास और उनके कुछ साथी क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ और उसके बाद चली सघन तलाशी में मोहन किशोर नामदास गिरफ्तार कर लिए गए।

गिरफ्तारी के बाद मोहन किशोर नामदास का जीवन अत्यंत कठिन रहा। पुलिस संगठन के अन्य नेताओं के नाम और हथियारों के ठिकानों के बारे में जानकारी चाहती थी, इसलिए उन्हें अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी गईं। लेकिन मोहन किशोर नामदास न झुके न टूटे। भीषण पीड़ाएं सहने के बावजूद उन्होंने किसी का नाम उजागर नहीं किया। उनके विरुद्ध एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों के त्वरित दमन के लिए विशेष कानून का सहारा लिया गया और उन्हें 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। लेकिन अंग्रेज अब भी चिंतित थे और इस समय एक नीतिगत निर्णय लिया गया। कहा गया कि जिन क्रांतिकारियों को 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है, उन्हें उनकी जेलों से हटाकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया जाए। ब्रिटिश प्रशासन ने तर्क दिया कि ये क्रांतिकारी अपनी भूमि पर जेल में रहते हुए दूसरे सामान्य कैदियों को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं तथा खतरनाक विचारों का प्रसार कर रहे हैं। इस तरह फरवरी सन 1933 में मोहन किशोर नामदास को महाराजा नामक पानी के जहाज पर चढ़ाया गया। उनके साथ इस जहाज में हरे कृष्ण कोनार, सतीश पाकराशी, डॉक्टर भूपाल बोस, डॉक्टर नारायण रॉय और निरंजन सेन जैसे क्रांतिकारी सवार थे। समुद्र की विशाल लहरों के बीच ये यात्रा जैसे इन क्रांतिकारियों के जीवन की सबसे कठिन और अंतिम संघर्ष की प्रस्तावना थी। सेलुलर जेल में कैदियों का जीवन अत्यंत कठिन था। मोहन किशोर नामदास को सौंपे गए सबसे कठिन कार्यों में से एक था कोल्हू चलाना। एक कैदी को प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल तेल निकालना होता था। यदि ये कोटा पूरा नहीं होता तो उसे बेड़ियों से जकड़कर डंडों से पीटा जाता था। भोजन के नाम पर आधा पका चावल, कीड़े लगे गेहूं की रोटियां और उबली हुई सब्जियां दी जाती थीं।

परिस्थितियों ने कैदियों के भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर दी। 12 मई सन 1933 को सेलुलर जेल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूख हड़ताल शुरू हुई। मोहन किशोर नामदास इस हड़ताल के अग्रणी नायकों में से एक थे। इस हड़ताल में उनके महत्वपूर्ण साथी थे महावीर सिंह और मोहित मोइत्रा। क्रांतिकारी चाहते थे कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो, पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पुस्तकें दी जाएं और बुनियादी स्वच्छता की सुविधा दी जाए। ब्रिटिश प्रशासन इसे कैदियों की अनुशासनहीनता मान रहा था और इसीलिए उसने निर्णय लिया कि इन हड़तालियों को जबरदस्ती खिलाकर हड़ताल तोड़ी जाए। 17 मई को जब महावीर सिंह को जबरन दूध पिलाने की कोशिश की गई तो दूध फेफड़ों में चला गया और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। मोहन किशोर नामदास इस घटना के बाद भी पीछे नहीं हटे। क्रांतिकारियों ने अब पानी पीना भी छोड़ दिया क्योंकि हड़ताल तुड़वाने के लिए घड़ों में पानी के स्थान पर दूध रख दिया गया था। मोहन किशोर नामदास की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। जेल के डॉक्टरों ने उन्हें जबरन खिलाने का प्रयास किया। रबर की नली को उनके नाक के माध्यम से डाला गया। संघर्ष में ये नली उनके श्वसन तंत्र में चली गई। फेफड़ों में दूध चले जाने से उन्हें निमोनिया हो गया और 26 मई सन 1933 को वो शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को पत्थर से भरे बोरों से बांधकर आधी रात को समुद्र में फेंक दिया गया। मोहित मोइत्रा भी 2 दिन बाद शहीद हो गए। इन 3 क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। सरकार को झुकना पड़ा। क्रांतिकारियों की अधिकांश मांगें मान ली गईं। इस तरह वो तीनों अपना जीवन पुष्प मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर गए। नमन ऐसी महान विभूतियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई अहम मुद्दों पर राज्यों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ शौचालय बनाने तक ना रहे बल्कि कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों में भी तेजी लाई जाए। श्री मोदी ने छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने सार्थक PDS फेज 2 के लिए 25,530 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में AI और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज़्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने बकरीद पर कुर्बानी तय जगहों पर करने को कहा है। इसके अलावा कुर्बानी के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार करेंगे। भोपाल की तुषा शर्मा मृत्यु मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। साथ ही निचली अदालत पर भी सवाल उठाए कि उसने केस डायरी और साक्ष्यों की सही जांच नहीं की। अब CBI गिरिबाला सिंह को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। और IPL एलिमिनेटर में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब कल राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। जीतने वाली टीम अहमदाबाद में रविवार को फाइनल मुकाबले में RCB से भिड़ेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं पहला गीत फिल्म लव से। स्वर हैं SP बालासुब्रमण्यम और चित्रा के।

श्रोताओं, एक गीत आप सुन रहे हैं फिल्म पत्थर के फूल से। स्वर है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के। गीत लिखा है रविंद्र रावल ने और संगीत है राम लक्ष्मण का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म सत्या से, सुमधुर आवाज आशा भोसले और सुरेश वाटकर की, गीत रचना है गुलजार की और संगीत है विशेष

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज हम आपको सुनवाते हैं रागिनी तेलंग के गाए गीत और भजन।

सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल से। इसमें आज आप सुन रहे हैं रागिनी तेलंग के गाए गीत और भजन। लीजिए अब अंतिम प्रस्तुति रागिनी तेलंग की, भजन।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रागनी तेलंग के गाए गीत और भजन। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है नाटक डाकू बनते बनते। इस नाटक के लेखक हैं आशा शुक्ला और प्रस्तुतकर्ता हैं जगदीश अधिकारी।
1: प्रस्तुत है नाटक डाकू बनते बनते। लेखिका आशा शुक्ला, प्रस्तुतकर्ता जगदीश अधिकारी।

0: हेलो, यस, हाँ जी, आपको वर्मा सर से बात करनी है जी? क्या मैं जान सकती हूँ किस बारे में? एक्चुअली वो मीटिंग में बिजी हैं, आप 5 बजे फ़ोन करके पता कर लें। हाँ जी, ओके, थैंक यू। राजू, राजू, अंदर कॉफ़ी सर्व कर दो और लीली को भी बुला लो, और देखो जरा ढंग से काम करना। हेलो, या मिस्टर वर्माज ऑफिस? यस सर, बट सर ही इज़ वेरी बिजी टुडे। जी सर, आप कल आफ्टरनून में फ़ोन करके एंड देन यू कैन सी इफ ही इज़ फ्री देन।
1: जी माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी।
0: हाँ जी, फरमाइए।
1: जी मुझे आपके वर्मा साहब से मिलना है।
0: आपका अपॉइंटमेंट है क्या? आपका शुभ नाम?
1: नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर बेटा बहुत जरूरी काम है।
0: आई एम वेरी सॉरी सर, वर्मा सर आजकल बहुत बिजी हैं,
1: जी
0: बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिल पाते। मैं आपको परसों दोपहर 2:30 बजे का टाइम दे सकती हूँ, 10 मिनट के लिए। लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा, आपने क्या नाम बताया था अपना?
1: जी
0: अच्छा सर, आप तब तक उधर बैठ जाइए।
1: तो ऐसा करो बेटी, अपने साहब से कहो सरजू के चाचा बनवारी लाल आए हैं।
0: ओके, आप बैठिए, मैं साहब से पता करती हूँ।
1: अच्छा।
0: मिस्टर बनवारी लाल जी, अब आप अंदर जा सकते हैं। अरे अरे सर, आप अपने चैम्बर से बाहर।
2: अरे बनवारी चाचा, आप चरण चाचा,
1: खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो।
2: कैसे आना हुआ चाचा? चलिए चलिए आइए अंदर चलिए। एंड मालती,
0: यस सर,
2: आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब, नो फोन कॉल्स, कॉफी शॉफी भिजवाना।
0: ओके सर।
2: चाचा बैठिए ना, ये है चाचा मेरा चैम्बर, आप आराम से बैठिए ना। हाँ हाँ पैर ऊपर कर लीजिए प्लीज। हाँ और चाचा कैसे आना हुआ, इस नालायक की याद कैसे आ गई घर में?
1: अब कुछ मत बोल बेटा, मैं तो वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूं।
2: अरे चाचा
1: तू इतना आदर मान देकर और शर्मिंदा मत कर मुझे।
2: कोई बात नहीं चाचा।
1: अरे वो सब समय का फेर था बेटा, तेरा काम धंधा ऑफिस ये ठाट बाट देख के अभी संभल नहीं पाया हूं मैं। पर बात ये है कि मैं एक काम से आया था तेरे पास, लेकिन तू तो बहुत बिजी रहता है बेटा, वो तेरी सेक्रेटरी बता रही थी।
2: हाँ चाचा बिजी तो रहता ही हूँ। वो क्या है बनवारी चाचा, हम अपने गारमेंट्स एक्सपोर्ट करने लगे हैं।
1: अच्छा।

0: मंदी के वक्त में भी हमारे पास कई देशों के काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं।
1: अच्छा,
0: सो बिजी तो हम सब रहते ही हैं।
1: अच्छा।
0: खैर उसे छोड़िए, आप बताइए ना कैसे आना हुआ।
1: अब कैसे कहूं बेटा, गोपाल के बारे में बात करने आया था तुझसे।
0: हाँ
1: उसके लायक कोई काम वाम हो तो बता जरा।
0: अरे चाचा कैसी बात करते हैं, जरूर है, मेरे पास तो नौजवानों के लिए काम ही काम है।
1: बहुत अच्छा
0: चाचा गोपाल की क्वालिफिकेशंस वगैरह?
1: ये लो बेटा सब लिखवा कर लाया हूं। ये प्रार्थना पत्र भी है। गुड सेकंड क्लास से BCA किया है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के चक्कर काट काट कर बौखला गया है। नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि नौकरियां कम पड़ गई हैं। सरकारी नौकरी मिल जाती तो।
0: सरकारी नौकरी ही क्यों, अरे मैं तो नहीं कर रहा सरकारी नौकरी, पर कितना संतुष्ट हूं ऊपर वाले की दुआ से।
1: अब वो तो मैं देख ही रहा हूं बेटा, मैं ये प्रार्थना पत्र छोड़े जा रहा हूं। कोई भी काम दिलवा दोगे तो बड़ा पुण्य मिलेगा बेटा तुम्हें। अब जवान बेटे का घर बैठे रोटियां तोड़ना ना मुझे अच्छा लगता है ना उसे।
0: अरे अरे
1: हाँ हाँ, ये प्रार्थना पत्र रख लो, मैं अब चलूं। तुम बहुत बिजी हो ना।
0: अरे चाचा ऐसे कैसे चले जाएंगे, खाना आ रहा है।
1: अरे बेटा मैं खाना खा लूंगा ना, क्यों तकलीफ कर रहे हो।
0: आपके बहाने मैं भी कुछ खा लूंगा, फिर आपको गाड़ी से छुड़वा दूंगा। ये लो खाना भी आ गया।
1: अरे अरे अब मैं तो मना नहीं कर सकता, टाल नहीं सकता। वाह वाह वाह वाह। बेटा एक बात पूछनी थी, अगर तू बुरा ना माने तो।
0: अरे बुरा कहेगा, पूछिए चाचा क्या पूछना है।
1: राकेश बेटा, मैं जानना चाह रहा था कि तुम्हारी जिंदगी में ये काया पलट कैसे हुई। अरे मैंने तो सुना था कि तुम भी मोहल्ले के कुछ आवारा टाइप के लड़कों की संगत में पड़ गए थे।
0: सिर्फ सुना था नहीं चाचा, आप भी तो हमें आवारा ही समझते थे ना, लेकिन देखिए ना चाचा आज वही राकेश आपके सामने है।
1: लेकिन बेटा ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे हुआ ये चमत्कार,
0: जानना चाहते हैं ना आप?
1: हाँ हाँ बताओ।
0: चाचा आप मेरे दोस्तों को तो जानते ही थे ना, हम चारों बचपन से साथ पढ़े लिखे, खेले कूदे और बड़े हुए, लेकिन बड़े होते ही जैसे सब कुछ सब बदल गया। हम चारों की तलाश थी नौकरी की।
1: हाँ हाँ,
0: कैसी भी नौकरी, हमारे मिलने का अड्डा भी आपको याद ही होगा।
1: हाँ हाँ
0: वो

0: हंसो हंसो यार हंसो, अरे खूब हंसो। यहाँ पर घर जाकर तो फिर वही पड़े रहो मुंह छुपाकर और ताने सुनो बाप के।
1: हाँ यार, इन तानों से तो मैं भी तंग आ चुका हूँ। अरे औरों की तो छोड़ो, अब तो मेरी छोटी बहन भी जली कटी सुनाने लगी है।
2: अरे कौन, वो ललिता पवार? अरे उसी ने तो मेरे घर में भी तिली लगाई है। मेरी माँ से कह रही थी, अम्मा अम्मा सारे निठल्ले चाय के खोके पे बैठे रहते हैं सारा सारा दिन।
3: तो यहाँ कम से कम चैन से तो बैठ सकते हैं, घर में तो एक मिनट भी चैन नहीं। दिन भर आप भूख हंसते रहते हैं, दवा दारू का कोई जुगाड़ नहीं। मन करता है आग लगा दूं अपनी डिग्रियों में। शाम को घर लौटता हूं तो अम्मी की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं पड़ती।
1: हाँ यार, लेकिन करें भी तो क्या करें।
0: करें क्या, अरे वही जो रोज करते हैं, अरे यानी चाय पिए।
2: यही ठीक है।
0: ए रामू, ओ यार मेरे रामू, चार चाय तो मार कड़क वाली।
4: चाय नहीं मिलेगी अब तुम लोगों को।
2: क्यों भाई, क्यों नहीं मिलेगी चाय?
4: इसलिए कि तुम लोगों के खाते की रकम सुबह से शाम तक बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। चुकाते तो कुछ नहीं हो।
3: ओ ये भी कोई बात हुई, हम चाय पियेंगे।

0: तो रकम तो चढ़ेगी ही ना। हाँ, हम में से किसी की भी नौकरी लग गई तो सबसे पहले तेरा ही हिसाब करेंगे, क्या समझा उस्ताद?
1: हम तो रफीक भैया बस इतना समझते हैं कि अब हम और उधार नहीं कर सकते। क्यों, हम यहाँ बैठने से मना नहीं करते आप लोगों को, लेकिन चाय।
2: अरे रामू जी, रामनाथ भाई, एक बात तुम्हारे इस भेजे में क्यों नहीं घुसती कि जब हम लोग ऊंची ऊंची कुर्सियों वाले अफसर बन जाएंगे ना, तब तुम ही घमंड से कहोगे ये राकेश जी हमारे खोखे पर आया करते थे, हमारी चाय उन्हें बहुत पसंद थी।
1: हमें ये सब कहने का कोई शौक नहीं है, बस अब उधारी की चाय बंद सो बंद।
3: ओ मेरे बाप, अरे अब मान भी जाए यार, और चाय बना नहीं तो करो गुदगुदी।
1: ना भैया ना, गुदगुदी से हम बहुत डराते हैं।
4: ये हुई ना बात।
0: चाय तो आ जाएगी दोस्तों, लेकिन वो कब आएगी जिसका मुद्दतों से इंतजार है।
4: राकेश, ये रफीक किस छोकरी की बात कर रहा है रे?
0: अरे मैं छोकरी की बात नहीं, नौकरी की बात कर रहा हूँ।
3: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? चली नानी कब आएगी तू? चलिया चलिया।
1: लो आ गई सपनों की रानी, गरम गरम चाय।
2: वाह वाह वाह, और आज का हिसाब भाई रफीक के खाते में।
0: हाँ हाँ, अरे जब अभी चुकाना ही नहीं है तो मेरे ही खाते में लिख लो, क्या फर्क पड़ता है।
3: अरे प्यारों, चाय भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम कब खत्म होगी यार?
4: समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे कमाने लगे चार पैसे।
3: लॉटरी का टिकट खरीदें, क्या पता किस्मत ही चमक जाए।
4: ऐसी चमकदार होती किस्मत तो अब तक यूं जंग ना खा रही होती।
0: तो क्या करें, जूते पॉलिश करें स्टेशन पर बैठ के, जला दे डिग्रियों को।
3: नहीं यार, सीरियसली सब मिलकर कुछ सॉलिड सोचो, सॉलिड।
4: सोच लिया, बिल्कुल सोच लिया।
3: क्या
0: क्या,
3: क्या, क्या सोच लिया?
4: मैं डाके डालूंगा।
3: क्या
0: क्या डाके?
3: डाके?
0: अरे नाम जगजीत है ना, सो सोच रहा है कि सब कुछ जीत लेगा, जग जीत लेगा।
2: पागल हो गया है, हैं? खोपड़ी खिसक गई क्या तेरी?
3: अरे उस बेचारे ने मजाक में एक बात कही यार, और तुम लोग उसके कपड़े फाड़ने लगे।
4: मजाक नहीं, आई एम सीरियस, मैं डाकू ही बनूंगा, ना किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत और ना पैसा डूबने का डर यार।
2: क्या, और वो पुलिस जेल?
4: कहाँ की पुलिस, उसका भी हिसाब रखूंगा ना, तो फिर जेल कैसे होगी?
3: सोच ले जीते, फिर से सोच ले।
4: सोच लिया, पूरा सोच लिया, अब तो डाकू ही बनूंगा। अरे मैं तो कहता हूं तुम लोग भी मेरे प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लो, एक और एक 11 होते हैं।
0: लेकिन हम डाके डालेंगे कैसे?
4: अरे यार कुछ नहीं करना है, बस दिन में 11 बजे के बाद किसी भी घर की घंटी बजा दो। ये वो वक्त होता है जब हस्बैंड ऑफिस में होता है और स्कूल में बच्चे, और घर में होती है सिर्फ एक अकेली औरत, उसे तो चाकू दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक धमकी में मौल अपनी मुट्ठी में।
3: यार जीते, तेरा आइडिया तो ग्रेट है प्यारे। चल मैं तेरे साथ हूँ।
4: वाह,
3: क्यों हो गए ना एक और एक 11?
4: मार ताली, ये मार जोर से, ये बात, ये हुई ना मर्द वाली बात। हाँ भाई, अब आप लोगों ने सोचा कुछ? आप बनेंगे डाकू?
2: यार वो मैं सोचूंगा, कुछ वक्त तो दो यार।
0: मैं भी सोचकर बताऊंगा।
4: ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर शाम को मिलते हैं यहीं।
0: हाँ हाँ यहीं, ठीक 6 बजे।
3: ठीक है चलो।

0: हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। टैंगो तो कब का आ चुका है?
1: हैं? पर है कहाँ टैंगो?
0: वो शांति नगर का मुआयना करने गया है, कुछ घरों के बारे में पता लगा कर आएगा। अरे भाई, हम निठल्ले थोड़ी हैं, कल से काम पर जाना है।
2: ओ जीते जीते, चाय पिला चाय, तेरा 90% काम करके आया हूँ। हो, आप लोग भी आ गए, आइए आइए, वेलकम। तो मेरी जान, क्या सोचा तुम लोगों ने?
1: अरे यार, क्या बताऊँ, वो वैसे तो मैं तैयार हूँ, पर थोड़ा सा डर भी लग रहा है यार, पहले कभी किया नहीं ना ऐसा काम।
2: नहीं किया? और ये जो करता है तू, रोड इंस्पेक्टरी, ये की थी पहले कभी तूने? बात करता है,
0: ऐसे ताने सुने थे कभी तूने? अरे, डिग्रियां जलाने या आत्महत्या करने की इच्छा हुई थी कभी तेरी?
2: जीते, मैं तो साथ हूं ना तेरे, मैंने भी फुल सोच लिया है, यही करना है अब, पर ये तो पता करना कैसे है।
0: ऐसा करो, टूटी हवेली में चलते हैं, वहीं सब प्लान फाइनल करेंगे।
2: ठीक है।

0: सुनो तुम लोग
1: जी,
0: शांतिनगर में घर है।
1: अच्छा,
0: नया शादीशुदा जोड़ा है।
2: अच्छा,
0: यानी खूब माल होगा।
2: क्या बात,
0: समझ गए? मियाँ जो है वो ऑफिस चला जाता है 10:30 के आसपास।
2: अच्छा,
0: बस 11 बजे अपन धावा मारेंगे।
2: बिल्कुल।
0: सुनो संभल के, कौन जाएगा अंदर? दो लोग बाहर रहेंगे और दो लोग अंदर जाएंगे।
2: मैं मेरे को क्या करना?
0: रफीक, हाँ रफीक और राकेश तुम दोनों अंदर जाना।
1: ठीक है।
0: और मैं और चीते तुम मेरे साथ रहना बाहर।
1: ठीक है।
0: और सुनो राकेश और रफीक,
2: हाँ
0: सेंटिमेंटल नहीं होने का है।
2: बिल्कुल।
0: जितना माल हो सके लेने का है उनसे।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: शाबाश, तुम मिलते हैं कल 10:30 बजे शांतिनगर पे, थावा मारेंगे।
2: ठीक
1: ठीक बॉस।
0: चलो चलो।

0: हेलो भैया जी, चरण स्पर्श जी। हम ठीक है, आप बताइए, गांव में सब ठीक तो है ना जी? आप कल आ रहे हैं? वो भैया जी, नहीं नहीं जी, मैं पहुंच जाऊंगा बस अड्डे। जी जी प्रणाम। सुन्नी, कल भैया आ रहे हैं। अरे तुम्हारे नहीं, मेरे भैया।
1: हाय राम, अब क्या करें?
0: यही तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करें।
1: फिर वही बातें होंगी, पापा ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। देवेश, अब कि तुम साफ साफ कह देना कि जो कुछ वो दे सकते थे दे दिया। ये रोज रोज की धमकियां, रोज रोज की मांग।
0: भैया भी पापा की ट्रू कॉपी हैं, फिर हंगामा करेंगे आकर।
1: पर तुम डरना नहीं, साफ साफ बोल देना, भैया जी तो बिल्कुल लुटेरों जैसी भाषा बोलते हैं।
0: डाकू हैं सबके सब, ये नहीं देखते कि इतनी पढ़ी लिखी बहू घर में आई है, इतना कमाती है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है क्या?
1: हाँ, हम तो जैसे मुफ्त में ही पढ़ गए हों। इनका मुंह तो रोज रोज खुलता ही जाता है, सच में डाकू ही है सब।
0: अच्छा छोड़ो, मेरा लंच पैक कर दो, वैसे ही बहुत देर हो गई आज।
1: जाओगे? मैंने सोचा नहीं जाओगे। मत जाओ ना प्लीज।
0: ना जाऊं? हाय नहीं स्वीट हार्ट, जाना तो पड़ेगा ही। मैं तो आधा घंटा लेट आने का बोल के आया था, 11 तो यहीं बज गए। अरे
1: तुम्हारे बॉस कुछ कहते नहीं रोज लेट आने पर?
0: उन्हें भी पता है कि मेरी नई नई शादी हुई है, और नए नए शादीशुदा लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते हैं।
1: हटो, बेशरम कहीं के।
0: बेशर्म कहीं के। अच्छा हाय, इस बेशर्म की मलिका, अब लंच पैक कर दो तो ये बंदा

0: ऑफिस जाए।
1: लाती हूँ हुजूर, आप तब तक टाई वाई तो ठीक कर लो।
0: हाँ ठीक है, वही करता हूं। कमिंग। कहिए आप लोग, मैंने पहचाना नहीं।
2: पहचानोगे कैसे? कभी देखा हो तो पहचानोगे ना।
3: सरदार अंदर चलो।
2: हाँ चलो।
0: अंदर कहाँ, ऐसे कैसे है?
1: कौन आया है जी?
0: वो ये
2: मैडम, हम डाकू हैं, डाकू।
1: लेकिन जी, इतनी जल्दी कैसे? अभी तो फोन आया था। हाय राम, कि कल आएंगे।
2: फोन? किसका फोन आया था?
1: जी, यही कि आप आ रहे हैं।
0: ओफो सुनीता, सुनीता तुम थोड़ी देर चुप रहो।
3: उस्ताद, कोई भयानक डाकू ही आ रहा होगा। फोन कर करे आ रहा है आखिर। मुझे तो खतरा लग रहा है, निकलो यहां से।
2: निकले? कौन सा डाकू आ रहा है फोन करके?
0: नहीं, डाकू नहीं, मेरे बड़े भैया आ रहे हैं। डाकू नहीं,
1: भैया आ रहे हैं? हाय राम, तो क्या ये भैया नहीं है?
0: तुम भैया को पहचानती नहीं हो ना? ये भैया नहीं है, ये सचमुच के डाकू हैं।
1: डाकू हैं सचमुच के? ओह थैंक गॉड। हाय राम, मैं तो समझी जेठ जी आ गए हैं।
3: ए छोकरी, सब गहने उतार दे और घर में जो माल है सब ले आ।
1: गहने? डाकू जी, ये गहने तो नकली हैं, असली तो सासू जी ने रख लिए।
3: बकवास नहीं करने का, क्या निकाल सब माल।
2: हाँ निकाल।
0: रुको रुको, मैं निकालता हूं माल, अभी पुलिस को बुलाता हूं, तब पता चलेगा तुम लोगों को।
2: क्या पुलिस? अरे पुलिस बुलाओ या सीआईडी, माल तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, वरना
0: वरना वरना क्या कर लोगे, क्या कर लोगे है?
2: वरना वरना यहीं बैठकर उस डाकू उस तुम्हारे भाई का इंतजार करेंगे और उसे यहाँ की सब बातें बता देंगे।
0: देखो देखो देखो, तुम ऐसा नहीं करोगे। हाँ
1: डाकू जी,
2: डाकू जी,
1: मेरा मतलब है डाकू भैया, आप हमारा जो सामान ले जाना चाहो ले जाओ, लेकिन जेठ जी को कुछ मत बताना प्लीज।
2: जेठ जी को सब मत बताना। मेरी बात समझ में नहीं आती कि तुम लोग अपने भाई से इतना डर क्यों रहे हो।
1: डाकू भैया, जेठ जी बहुत खतरनाक आदमी है।
2: क्या?
1: हाँ, मैंने तो उनका चिल्लाना सुना है, ऐसा पूरी तरह डांटते हैं कि हाय।
3: लेकिन डांटते क्यों हैं?
0: सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपनी मर्जी से शादी की है।
2: ओ
0: और भैया के हिसाब से मेरी ससुराल वालों ने किसी को ढंग का कुछ नहीं दिया।
2: ढंग का कुछ नहीं दिया? मसलन?
0: मसलन 1.5 किलो सोना, LCD, बड़ी गाड़ी, बहनों को सोने के सेट, इत्यादि इत्यादि।
2: अच्छा, तो ये दहेज का केस है।
1: हाँ डाकू भैया। हाय राम, हम तो तंग आ गए महीने भर में ही।
2: ठीक है ठीक है, हम चलते हैं रफीक।
0: लेकिन लेकिन भाई साहब, आप तो डाका डालने आए थे, उसका क्या हुआ?
2: डाका? हाँ दो बातें, एक तो तुम्हारे यहाँ मुझसे भी बड़ा डाकू आने वाला है, दूसरी बात तुम्हारी बीवी ने हमें भैया कह दिया, तो डाका तो हम डाल ही नहीं सकते तुम्हारे यहाँ।
1: डाकू भैया,
2: क्या है?
1: एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं
2: अरे
1: मानोगे?
2: पूछो ना, पूछो जल्दी।
1: आप, मेरा मतलब है, आप डाकू तो लगते ही नहीं, भले घर के लगते हैं, फिर ये
3: फिर हम डाकू कैसे बन गए, यही ना?
1: जी जी जी हाँ। हाय राम, मैं यही तो पूछना चाहती थी।
3: बेकारी, हम कई दोस्त तो बेरोजगार हैं, बस सोचा यही धंधा किया जाए। आज बोहनी थी।
0: लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे लगते हैं।
2: अरे और क्या यार, हम सब पढ़े लिखे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, ऑल फ्रस्ट्रेटेड, नो नौकरी एट ऑल।
0: नौकरी नहीं मिलती तो कोई अपना कारोबार क्यों नहीं कर लेते?
2: कारोबार?

0: मियाँ, कारोबार के लिए पैसे कहाँ से लाए?
1: मैं दूंगा, मेरा मतलब हमारा बैंक देगा।
2: क्या? तुम्हारा बैंक?
1: हाँ हाँ।
2: वो कैसे?
1: बैंकों के पास बेरोजगार युवकों के लिए कई तरह की योजनाएं होती हैं।
2: ओ हो, वो तो सब हमें भी पता है, लेकिन वहां तो दो ही चीजों से काम चलता है, मोटी सिफारिश या मोटा पैसा।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये सब आप जैसे युवाओं की गलतफहमी है। क्या कभी किसी बैंक में आपने खुद इस बारे में पता किया है?
2: नहीं, पता तो नहीं किया, पर सुना तो यही है बैंकों के बारे में।
1: सुनी सुनाई अफवाह भूलकर अब मेरी सुनिए। देखिए, बैंक से पैसा लेकर कोई भी व्यक्ति अपना काम धंधा शुरू कर सकता है। बैंक की कुछ शर्तें पूरी करना होती है।
0: तो हमें जरा डिटेल में बताइए ना, ताकि हम भी कुछ काम शुरू कर सकें।
2: हाँ।
0: चार पैसे तो कमाएं।
2: हाँ
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कीजिए, आप लोग मेरे साथ ही चलिए। मैं दरअसल बैंक ही जा रहा था। बैंक में आपको मैं अपने मैनेजर से मिलवाऊंगा, वो आपको तमाम स्कीमों के बारे में बताएंगे। आप अपनी पसंद की स्कीम चुन लीजिएगा।
2: अरे देवेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हम चलें आपके साथ।
3: डाकू भैया, हाय राम, एक बात मुझे भी कहनी है।
0: हाँ हाँ, कहिए।
3: डाकू भैया, आप कल जरूर आइएगा हमारे घर, मेरे जेठ जी से मिलेंगे ना। हाय राम, तब आपको पता चलेगा डाकू कैसे होते हैं।
2: जरूर आएंगे दीदी। अरे हमें तो खुद उनसे बात करनी है, और हाँ, उसके बाद वो कभी आपको दहेज के लिए परेशान नहीं करेंगे।
4: हाँ पापा, ये राकेश उस्ताद एंटी डाउरी पर इतना अच्छा भाषण देते हैं कि कॉलेज में बहुत इनाम जीते हैं इनने।
3: ठीक है डाकू भैया, आई मीन भैया, कल मिलेंगे ना।
2: 100%। तो चले।

0: यानी कुल मिला के किस्सा को होता ये कि मैं और जीते बाहर खड़े इंतजार करते रहे और अंदर ये किस्सा हो गया, यानी चलने थे बनने डाकू और बन गए
1: डाकू भैया।
2: यारे कुछ बात मत करना डाकू की, हम बैंक की कई स्कीमों के बारे में समझ कर आए हैं। अब थोड़ा सीरियसली कोई बढ़िया काम के बारे में सोचो।
0: बिल्कुल
1: उस्ताद, चलो हमें भी बैंक ले चलो ना। आज
2: आज नहीं, आज तो मुझे उस दहेज के लालची डाकू की खबर लेने दिवेश जी के घर जाना है।
0: बिल्कुल, हम लोग भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे, लेकिन घर के अंदर, बाहर नहीं खड़े रहेंगे। हाँ
3: लेकिन डाका डालने को नहीं।
1: बिल्कुल

0: और चाचा, उन देवेश बाबू ने हमारी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। इन 10 वर्षों में हम कहां से कहां पहुंच गए। कई बार तो विश्वास ही नहीं होता अपनी किस्मत पर।
1: सिर्फ किस्मत नहीं बेटा, सही मार्गदर्शन, मेहनत और लगन से बदली हैं तुम्हारी हाथ की रेखाएं। हाँ
0: हाँ चाचा, अरे आज कौन मानेगा कि हम चारों वही हैं जो बेकारी से घबराकर डाकू बनने चले थे, और डाकू बनते बनते किस्मत हमें कैसी हसीन मंजिल पर ले आई।
2: बिल्कुल।
0: लेकिन चाचा, आप तो गोपाल के लिए आए थे ना।
1: हाँ हाँ,
0: उसे काम जरूर मिलेगा।
1: हाँ,
0: क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बेरोजगारी से परेशान कोई भी युवा कभी भी कोई गलत राह चुने।
1: वाह।
0: अरे चाचा चलो, मैं आपको रफीक, जगजीत और टैंगो से भी तो मिलवा दूं।
1: अच्छा हाँ हाँ, चलो चलो। हाँ चलो।

0: टेंगा अशोक बुलानी, देवेश उदय शाहनी, राकेश अरशद इकबाल, रफीक डॉक्टर दिलीप बेहरे, वनवारी डॉक्टर अरविंद सोरी, जगजीत कमल जैन, रामू प्रेम शरण खेमरिया, पीए प्रिया चंदनानी और सुनीता थी प्रमिला दिवाकर। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे जगदीश अधिकारी।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे नाटक डाकू बनते बनते। इस नाटक के लेखक थे आशा शुक्ला और प्रस्तुतकर्ता थे जगदीश अधिकारी। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए गुना जिले की चिट्ठी। आलेख है रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर नवनीत चौबे के।

अभी आप सुन रहे थे आशा शुक्ला का लिखा नाटक डाकू बनते बनते। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है।

गुना जिले की चिट्ठी में बात सबसे पहले विकास और उद्योगों की। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। करीब 1060 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फैक्ट्री से 1500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग बढ़ेंगे तो युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा और इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी गुना क्षेत्र में सड़क अधोसंरचना और विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। रोजगार की दिशा में युवा संगम कार्यक्रम भी खास रहा। जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेले में 850 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 529 युवाओं का अलग अलग निजी कंपनियों में शुरुआती चयन हुआ और मौके पर ही ऑफर लेटर भी दिए गए। इसके अलावा कार्यक्रम में 3136 हितग्राहियों को 21,30,00,000 रुपये से ज्यादा के हितलाभ बांटे गए। अब बात पानी और पर्यावरण की। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशहरा पर भुजरिया तालाब में विशेष कार्यक्रम हुआ। लोगों ने सामूहिक गंगा आरती की, जल संरक्षण की शपथ ली और पानी बचाने का संदेश दिया। वहीं कंजा गांव में कूनो नदी के उद्गम स्थल पर भी बड़ा आयोजन हुआ। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और श्रमदान कर लोगों को जल संरक्षण का महत्व समझाया। प्रशासन का कहना है कि कूनो नदी संरक्षण और स्टॉप डैम निर्माण से आने वाले समय में सिंचाई और पर्यटन दोनों को फायदा मिलेगा। खेती किसानी की बात करें तो खरीफ 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिले भर में किसान चौपालें लगाई जा रही है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। गांव-गांव कृषि रथ भी पहुंच रहे हैं जो किसानों को नई योजनाओं और खेती के नए तरीकों से अवगत करा रहे हैं। दूसरी तरफ खाद की उपलब्धता को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। किसानों को ई विकास प्रणाली के जरिए खाद वितरण किया जा रहा है। किसान सुबह 7 बजे से ई टोकन बुक कर अपनी जरूरत के अनुसार खाद ले सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से डीएपी के बजाय एनपीके और नैनो उर्वरकों के उपयोग की अपील भी की है। गेहूं खरीदी का काम भी अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। जिले में अब तक 67,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी की जा चुकी है। किसानों के लिए 176 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मंजूर हुई है और अधिकांश भुगतान सीधे खातों में पहुंच चुका है। अब बात स्वास्थ्य की। जिले में 25 से 31 मई तक विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां और शपथ अभियान चल रहे हैं। लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर बीनागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डेंगू के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी। इस दौरान लोगों से साफ सफाई रखने और पानी जमा नहीं होने देने की अपील भी की गई। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने पर लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने, ज्यादा पानी पीने और सिर ढककर बाहर जाने की सलाह दी गई है। पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान चला रहा है। जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रोज योग शिविर लगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन लाइव योग सत्रों के जरिए भी लोगों को योग से जोड़ा जा रहा है। विशेष जनजाति समूहों यानी PVTG परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं पात्र लोगों तक पहुंचाई जा रही है। गुना जिला अब अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने में जुट गया है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत जिले की पुरानी पांडुलिपियों और दुर्लभ हस्तलिखित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 70 साल से ज्यादा पुराने दस्तावेजों को मोबाइल ऐप के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो नेशनल लोक अदालत में जिले भर के 1382 मामलों का आपसी समझौते से निपटारा हुआ। इसमें

0: करीब 2800 लोगों को फायदा मिला और वर्षों पुराने विवाद खत्म हुए। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी पहल हुई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग ने उत्कृष्ट छात्रावासों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग शुरू करने की तैयारी की है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। इसी तरह आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इन योजनाओं के जरिए युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, कानून और सामाजिक कार्य से जुड़े अनुभवी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। गुना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुना जिले की चिट्ठी। आलेख था रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे की। ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए अब प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम गीत सागर।

गीत सागर कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को सरिता का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही खूबसूरत और पवित्र है। सभी श्रोताओं को ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। श्रोताओं, ये त्यौहार त्याग, समर्पण, आपसी भाईचारे और नेकी की राह पर चलने का संदेश देता है।

तरह आता है। ये सिखाता है कि कड़े इम्तिहान के बाद मिलने वाली खुशी कितनी खूबसूरत होती है। ईद का चांद बहुत बारीक और छोटा होता है, लेकिन वो पूरी दुनिया के करोड़ों चेहरों पर मुस्कान ला देता है और इस बात का प्रतीक है कि छोटी और सादगी भरी चीज़ें भी जीवन में कितनी बड़ी खुशियाँ ला सकती हैं। ए चांद तू चमकता रहे यूं ही सदियों तक, तेरा दिखना ही तो खुशियों का पैगाम लाता है। तेरे आते ही महक उठती है फिजा सारी, तू हर दिल में ईद की सौगात लाता है।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सागर, ये आकाशवाणी भोपाल है। अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
5: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, आज का दिन एक और बात के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज यानी 28 मई 1883 को भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और लेखक विचारक विनायक दामोदर सावरकर, वीर सावरकर का जन्म हुआ था। आज उनकी जयंती है। उनका जन्म महाराष्ट्र के नासिक के पास भगूर गांव में हुआ था। श्रोताओं, में बचपन से ही बेहद साहसी थे। जब वे मात्र 12-13 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मित्र मेला नाम का एक संगठन बनाया जो आगे चलकर अभिनव भारत सोसाइटी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इसका उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना था।

श्रोताओं, वीर सावरकर जी से जुड़ी हुई बहुत सारी साहसिक घटनाएं हैं। एक बार कहा जाता है कि जब सावरकर कानून की पढ़ाई करने लंदन गए थे तो वहाँ इंडिया हाउस को उन्होंने क्रांति का केंद्र बना दिया था। अंग्रेजों को जब उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों का पता चला तो उन्हें 1910 में लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों के जहाज एसएस मोरिया से जब उन्हें भारत लाया जा रहा था तब फ्रांस के मॉर्सेल्स बंदरगाह के पास सावरकर शौचालय की खिड़की तोड़कर समुद्र के उफनते पानी में कूद गए थे। वे तैर कर फ्रांस के तट पर पहुंच गए थे। हालांकि बाद में उन्हें फिर से पकड़ लिया गया, लेकिन उनकी इस बहादुरी ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं ना कि इतने वीर और बहादुर थे हमारे वीर सावरकर जी।

श्रोताओं, एक और रोचक घटना है जो वीर सावरकर जी से जुड़ी हुई है, मैं आपको बताती हूँ। ब्रिटिश सरकार सावरकर से इस कदर खौफ खाती थी कि उन्हें एक नहीं बल्कि दो दो आजीवन कारावास यानी 50 साल की सजा सुनाई गई थी और अंडमान की सेल्यूलर जेल, काला पानी जिसे कहा जाता है, उन्हें वहाँ पे भेज दिया गया। जेल में उन्हें कोलू के बैल की तरह जोता जाता था, यानी बहुत काम करवाया जाता था उनसे, उन्हें भूखा रखा जाता था और भयंकर यातनाएं दी जाती थी, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे। जेल में भी उन्होंने बिना किसी सामान के, उनके पास कोई भी जेल में जैसे कागज़ पेन नहीं था, पर उन्होंने जेल की दीवारों पर कीलों और कोयले से 6,000 से ज़्यादा कविताएं लिखी और उन्हें याद कर लिया। बाद में जेल से छूटे कैदियों के जरिए उन कविताओं को देश तक पहुंचाया गया।

0: श्रोताओं, सावरकर जी सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे बल्कि एक ऐसे दूरदर्शी थे जिन्होंने भाषा से लेकर समाज सुधार तक में योगदान दिया। आइए हम सभी उन्हें नमन करते हैं और अब कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल लेते हैं।
1: कवि हेमंत देवलेकर,
2: आकाशवाणी की दुनिया जहां संगीत है, नाटक है, समाचार है, समाज सुधार और शिक्षा के कार्यक्रमों का प्रसारण है। हम सब रचनाकार, अलग अलग क्षेत्रों के सर्जक आकाशवाणी के प्रति हार्दिक आभारी हैं कि आकाशवाणी ने हम सबको ये मौका दिया कि हम अपनी अपनी आवाज़ें आकाशवाणी के माध्यम से देश में, समाज जनों के बीच में प्रसारित कर पाएं। आकाशवाणी आकाश की तरह अजर रहे, अमर रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं।

श्रोताओं, गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। बाहर सूरज देवता अपनी पूरी फॉर्म में है। नौतपा का असर है और पारा सातवें आसमान पर। लेकिन फिक्र मत कीजिए, आप अपना ख्याल रखिए और अपने खान पान का ध्यान रखिए। ख़ास तौर से आजकल जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो खाने में अधिक से अधिक ठंडे पेय का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ें ज़्यादा खाएं, बहुत भारी या पेट को ख़राब करने वाली चीज़ें ना खाएं और तला भुना अधिक से अधिक ना खाएं, हल्का खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फल और पेय पदार्थों को खाएं। तो इस गर्मी में आनंद लीजिए इन खूबसूरत गीतों का, ताकि गीत सुनकर आपको ठंडक लगे, आपको सुकून लगे, बस आपको ऐसा लगे कि हमारे आसपास भी कुछ ऐसा ही माहौल है।

श्रोताओं, नौतपा की गर्मी और लू से बचने के लिए कुछ ज़रूरी काम जरूर करिए। प्यास नहीं भी लगी हो तो भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। शरीर में पानी की कमी ही सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। सादी पानी के अलावा डाइट में आम पन्ना, छाछ, लस्सी, नींबू पानी, नारियल पानी और बेल का शरबत जरूर शामिल करें। ये शरीर के तापमान को बनाए रखते हैं। इस मौसम में बहुत अधिक चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचें, क्योंकि शरीर को ज़्यादा डिहाइड्रेट करते हैं।

श्रोताओं, अपनी डाइट में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी और संतरा जैसे फल ज़रूर शामिल करें। इनमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। नौतपा के चलते हुए ज़्यादा तला भुना मसालेदार हैवी खाना खाने

श्रोताओं, आयुर्वेद और घरेलू नुस्खों में लू से बचने के लिए कच्चे प्याज का सबसे अच्छा उपाय माना गया है। खाने के साथ सलाद में प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें और कपड़ों का चुनाव भी सही करें। ढीले ढाले हल्के रंग के सूती कपड़े पहने, सिंथेटिक कपड़े पसीना नहीं सोखते और शरीर को फिर ज़्यादा गर्म करते हैं। अगर दोपहर में बाहर निकलना ज़रूरी है, यानी कोई ज़रूरी काम है, आपकी मजबूरी है, तो सिर को सूती कपड़े या गमछे से ढकें और धूप का चश्मा, छाता और पानी की बोतल हमेशा अपने साथ में रखें।

श्रोताओं, गर्मियों में अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और भारत माता का ख्याल रखिए। कार्यक्रम समेटने की इजाज़त दीजिए। अपनी दोस्त सरिता को नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सागर, ये आकाशवाणी भोपाल है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: भोपाल की ट्विशा शर्मा की मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। साथ ही निचली अदालत पर भी सवाल उठाए कि उसने केस डायरी और साक्ष्यों की सही जांच नहीं की। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राज जाधव ने कल खजुराहो में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रमुख कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने, तेज़ गर्मी और लू से बचाव करने के लिए हाइड्रेटेड रहने और घर से निकलते वक्त पानी की बोतल साथ रखने को कहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सांस्कृतिक उत्सव सदा निरा समागम भोपाल स्थित भारत भवन में चल रहा है। 2 जून तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के विद्वान, पर्यावरण विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, नीति निर्माता और कलाकार सहभागिता कर रहे हैं। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। संभागायुक्त आशीष सिंह ने सभी विभागों को 7 दिन में पौधारोपण की प्लानिंग तैयार करने के निर्देश दिए हैं। ग्रीन सिंहस्थ के तहत 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए जिले से लेकर गांव तक के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनाया है। अब हर स्तर पर कोई न कोई अधिकारी सीधे जिम्मेदार होगा। और प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने बकरीद के अवसर पर कुर्बानी तय जगहों पर करने को कहा है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड ने कुर्बानी के फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करने के निर्देश भी दिए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: ये आकाशवाणी भोपाल है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: श्रोताओं नमस्ते, मैं हूँ नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूँ फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। श्रोताओं आज बातें योग की। अमूमन लोगों का सोचना होता है कि जब हम स्वस्थ हैं तो योग की क्या जरूरत है, ना हमें शारीरिक परेशानी है ना मानसिक, तो ऐसे में योग क्यों करें। यहाँ बता दें योग शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखता है। योग से आनंद की अनुभूति होती है और आनंद को सुख के ऊपर की स्थिति कहा गया है। तो चलिए आज कार्यक्रम में जानते हैं कि हमारे श्रोता योग के बारे में क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ समझते हैं वो योग से। नमस्कार।
2: नमस्ते मैम
1: जी, बात आपके गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है, आपका परिचय दीजिए।
2: मैडम मैं सतना एमपी से बोल रही हूँ।
1: जी जी, आपका नाम बता दीजिए।
2: मैडम मैं मिसेस टंडन हूँ
1: जी। आज हम जानना चाहेंगे कि योग जो है, योग के विषय में हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप योग के बारे में क्या कुछ समझती हैं, क्या अनिवार्यता है इसकी अपने जीवन में, ये बताएं।
2: मैडम योगा करने से देखिए, एक तो अपना शरीर स्वस्थ रहता है
1: जी,
2: और साथ में जितने जैसे मसल्स वगैरह वीक हो जाते हैं योगा करने से वो ठीक रहेगा, और शरीर में डिटॉक्स भी हो जाता है, अपने पूरे दिन की दिनचर्या अच्छी हो जाती है मैम
1: जी। मिसेस टंडन हम ये जानना चाहते हैं कि योगा जो है नियमित रूप से आप करती हैं।
2: हाँ मैम मैं नियमित रूप से करती हूँ, अभी यदि कभी छूट जाता है
1: हाँ।
2: तो भी मैं शाम को कर लेती हूँ, दिन में अगर मैं करती हूँ, अगर छूट जाता तो मैं शाम को करती हूँ। मेरा भी बहुत वेट बढ़ गया था
1: हाँ।
2: तो योगा करने से, और थोड़ा सा पौष्टिक भोजन करती हूँ मैं
1: हाँ।
2: रोज सुबह मैं जैसे स्प्राउट वगैरह इस तरह के खाना खाती हूँ
1: जी,
2: और घर के भी बच्चे सबको मैं कराना चाहती हूँ योगा।
1: हाँ हाँ हाँ, तो इससे आपको लाभ हुआ?
2: बहुत लाभ हुआ मैडम, मेरा वेट कम हो गया
1: हाँ।
2: मेरे को जो स्वेलिंग वगैरह थी और नसों में दर्द वगैरह होती थी
1: हाँ।
2: उससे बहुत आराम मिलता है मैडम, और जिस दिन अगर छूट जाता है
1: हाँ।
2: तो फिर मेरे को बहुत दर्द होता है मतलब, और योगा करना चाहिए सबके लिए, योगा जरूरी है। एक आप 5 मिनट का समय निकाल करिए
1: हाँ।
2: 5 मिनट के लिए अपने लिए समय निकालिए
1: हाँ।
2: और योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए जिससे माइंड फ्रेश रहता है
1: जी जी जी,
2: और शरीर स्वस्थ रहता है
1: जी,
2: आप जो पूरे दिन की दिनचर्या आपकी अच्छी रहेगी।
1: चलिए तो नियमित दिनचर्या में हम योग शामिल करें।
2: हाँ, नियमित दिनचर्या अच्छी रहेगी
1: जी जी जी। चलिए बहुत अच्छा लगा मिसेस टंडन आपसे बात करके।
2: थैंक यू मैम
1: जी, धन्यवाद आपने फोन किया।

0: नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार मैडम जी
0: जी, किससे बात कर रहे हैं हम?
1: मेरा नाम भोली शंकर साहू है, हम नरसिंहपुर जिले से बोल रहे हैं। बढ़िया है मैडम जी।
0: जी, आज बात आपके गीत हमारे में, हमने योग विषय रखा है, तो हम ये जानना चाहते हैं भोले शंकर साहू जी, योगा करने के क्या फायदे होते हैं?
1: बहुत से फायदे हैं मैडम, शरीर स्वस्थ रहता है।
0: हाँ, और हाँ, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी अच्छा रहेगा, मन से भी हम प्रसन्न रहेंगे, है ना? तो क्या योगा आप दिनचर्या में अपनाते हैं?
1: हाँ अपनाते हैं मैडम, अपनाते हैं।
0: तो योगा करने की क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे आप योगा के बारे में लोगों को?
1: हमारे ख्याल से मैडम ये है कि रोज योगा करना चाहिए सुबह शाम।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: और यदि
1: इफ्तार
0: वक्त
1: के
0: ना
1: टाइम
0: मिल
1: में
0: पाए तो?
1: नहीं, इफ्तार से निकालना चाहिए मैडम वक्त की अपन योगा कर सकें, हमने
0: जी
1: ज़्यादा नहीं, कम से कम 10 मिनट 20 मिनट कम से कम कर सकें रोज
0: जी
1: सुबह शाम,
0: चलिए,
1: करना चाहिए।
0: सही बात कही आपने भोले शंकर साहू जी, कि हमें
1: जी
0: नियमित योगा करना चाहिए, शरीर के लिए इतना वक्त तो निकालना ही चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा भोले शंकर साहू जी, नरसिंहपुर से आपने फ़ोन किया
1: जी
0: जी,
1: जी
0: बहुत
1: मैडम
0: धन्यवाद आपने फ़ोन किया।

0: जी नमस्कार।
1: मनोज विश्वकर्मा, ग्राम पनारी, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी तो क्या इस गर्मी में भी आप योगा करते हैं?
1: योगा तो नहीं कर पाते हैं,
0: क्यों नहीं?
1: नहीं कर पाते, जल्दी सो गए।
0: आप योगा नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या योगा की महत्ता को आप मानते हैं, उसके महत्व को
1: योगा की
0: समझते हैं?
1: महत्ता तो बहुत ज्यादा है, योगा से सब कुछ निरोग रहते हैं सभी लोग।
0: जी तो योगा करने की सलाह आप देना चाहेंगे लोगों को कि योग
1: बिल्कुल
0: करना
1: देना
0: चाहिए?
1: चाहेंगे, योगा करें, प्राणायाम करें, सुबह से घूमने जाएं।
0: तो योगा आप क्यों नहीं कर पाते?
1: जी मैडम, क्या है हमारा काम इस टाइप का है कि थोड़ा रात में लेट पहुंचते हैं घर पर, तो
0: जी
1: थोड़ा जल्दी नहीं उठ पाते, उस वजह से नहीं कर पाते हैं।
0: जब आप हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं तो योग के लिए भी जरूर वक्त निकालें।
1: बिल्कुल निकालेंगे, आपके कहने पर मैं कल से ही शुरू करता हूँ मैडम।
0: जी बिल्कुल। और देखिए योग जो है ये भारत से ही शुरू हुआ था, है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल,
0: तो हम भारतीय हैं और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ये विधा हमारे पास में है।
1: उसमें
0: भारत
1: शिक्षा के उसमें सब्जेक्ट भी लिया गया है।
0: हाँ, योग तो कहीं कहीं पर अनिवार्य विषय भी है, आज
1: जी
0: भी
1: जी
0: है ना?
1: जी
0: लेकिन अनिवार्य रूप से इसे हर जगह नहीं अपनाया गया है ना? तो योगा जो है वो हमारे जीवन में एक सेहत की कुंजी है वो।
1: बिल्कुल। बाकी मैं ठंड के दिनों में

0: तो प्रयास करता हूँ करने का, बाकी
1: चलिए,
0: अभी तो नहीं कर पा रहा है।
1: नहीं चलिए, जो भी संभव हो मेडिटेशन कर लीजिए, मन की शांति के लिए ही कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप योग को अपनाएंगे।
0: जी
1: जी, नमस्कार।

0: हेलो,
1: जय श्री राम।
0: जय श्री राम। बताएं, कौन बोल रहे हैं आप?
1: मैं किशन घी वाला बोल रहा हूँ,
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: दमोह से। जी
0: जी, कैसे हैं किशन जी?
1: ठीक है, गर्मी बहुत है। हाँ
0: जी, गर्मी तो वाकई में बहुत पड़ रही है किशन जी। हम जानना चाहते हैं, योग यानी होता है जोड़ना या बांधना, है ना?
1: जी,
0: और शरीर और आत्मा को साथ लाने का माध्यम है योग, क्योंकि इससे मन की शांति भी आती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप योग के बारे में? योग जीवन में आपके लिए क्या महत्व रखता है? एक मनोभाव से जोड़ करके आप बताएं, या योग को आप जीवन में किस तरीके से देखते हैं?
1: ये बहुत ही कठिन है। चलो, आपने व्यक्तिगत मुझसे पूछा है तो
0: जी
1: मैं बताना चाहता हूँ
0: जी
1: कि जीवन में तो बहुत सारी ही कठिनाइयां रहती हैं। मेरे ख्याल से पग
0: हाँ
1: पग के ऊपर कठिनाई रहती है।

0: होती है, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, कंपटीशन रहते हैं
1: जी।
0: लेकिन अपने आप को योग से जोड़ना, अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ देता हूँ
1: जी,
0: न्यूट्रल।
1: हाँ,
0: आप समझे ना, बिल्कुल बिल्कुल शून्य मान के छोड़ देता हूँ कि चलो जो होना है वो तो होना ही है, और एक बिल्कुल ही जीरो समझ के, जैसे अपन अपनी गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ देते हैं ना, जिधर जाना चली जाती है, घूमती जाती है, लुढ़कती जाती है, बस ऐसे अपने आप को छोड़ के शांत मतलब देखता हूँ, तभी मुझको लगता है कि मेरे आत्मा जो है बिल्कुल जुड़ रही है उससे, और एक विशेष शांति मिलती है। यही है मेरा।
1: तो आप जो ये शून्य पर जब आप पहुंचते हैं, तो उसे आप मतलब मेडिटेशन से जोड़ करके किस प्रकार से कहेंगे कि एक मानसिक शांति के लिए ये बहुत जरूरी है?
0: एक बहुत ही सुकून मिलता है
1: जी
0: उस समय जब
1: जी
0: हम अपने आप को बिल्कुल जीरो जीरो मान लेते हैं ना,
1: हाँ हाँ
0: अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं,
1: हाँ हाँ
0: किसी काम कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस सच माना तो बस ऐसा ऊपर ही ऊपर दिखता रहता है, आकाश आकाश शून्य दिखता रहता है, विशाल दिखता रहता है।
1: हाँ हाँ
0: यही यही एक अनुभव होता है उस समय जो आप पूछ रहे हैं।
1: योग में मेडिटेशन एक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट भाग होता है, जिससे मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना। और आज तो तनाव हर किसी के जीवन में है, किसी ना किसी प्रकार के व्यवधान जीवन में आ रहे हैं, और उसको हम छोड़ कर आगे बढ़ें, इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है।
0: और
1: जी
0: ये नहीं कि एक मुझे को, हर एक को, जितने
1: जी
0: भी
1: बिल्कुल
0: लोग हैं, जितने भी संसार में,
1: जी
0: चाहे वो मनुष्य हैं और चाहे वो प्राणी हैं,
1: हाँ
0: हर एक को मतलब पग पग के ऊपर कंपटीशन है, और एक संघर्ष सा है जीवन,
1: जी
0: एक संघर्ष सा रहता है,
1: चलिए
0: लेकिन अपने आप को शून्य कर लेना यही एक सबसे अच्छी बात है।
1: जी, बहुत अच्छा लगा किशन जी आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि आपके इस शून्य पर ले जाने के बाद मेडिटेशन वाली जो बात आपने कही है, उस पर हमारे श्रोता जो हैं वो ध्यान देंगे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। जी
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद,
1: जी
0: आपने बड़ा अच्छा विषय विषय चुना है,
1: जी जी
0: बहुत ही गंभीर विषय चुना है आपने।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम जी, मैं श्रोता हूँ मैम जी, और सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ आपके साथ।
0: जी, बहुत शुक्रिया। कौन बोल रहे हैं, आपका परिचय बता दीजिए
1: जी, मैं
0: कहाँ।
1: आपका नियमित श्रोता मैम जी, जय नरसिंहदेव, FM रेडियो ग्रुप, ग्राम करजबेल, तहसील होटेगांव, जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहार।
0: आज जो बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम है उसमें हमने विषय रखा है योग का, तो ये बताइए
1: जी
0: कि योग शरीर की ताकत, फुर्ती और लचीलेपन को बढ़ाने में सहायक होती है,
1: जी
0: तो आपको क्या लगता है योग किस प्रकार से सहायता करता है, इसके बारे में आप बताएं।
1: देखिए मैम, ये योग की बात चल पड़ी है तो मैं सबसे पहले अपनी बात रख दूं कि मैं रोज ही उठ करके जो योग के दो तीन जो होते हैं टिप्स कह सकते हैं, उन्हें अपने माध्यम से उपयोग करता हूँ। उन्हें सांस जोर जोर से लेना, छोड़ना आराम से, और शरीर को जो कह सकते हैं हाथ पैर चलाना, कमर को अपने हिसाब से कैसा रखना है, उसके जो मैम जी जो भी तीन चार चीजें करता हूँ, मैं लगभग 20-25 मिनट के लिए अपने आप को समय देता हूँ।
0: जी
1: तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई सबको करना चाहिए, ये आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, किसी भी प्रकार की बीमारी मेरे ख्याल से आपके शरीर में होना ही नहीं।
0: चलिए, ये तो रही योग में आप जो आप करते हैं, योग के लिए क्या समझाइश देंगे कि क्या लोगों के पास में समय का टोटा है, कहते हैं हमारे पास में वक्त ही नहीं मिलता, क्या कहेंगे आप।
1: ये सबके पास बहाना रहता है मैम जी, मेरे पास भी समय नहीं है लेकिन मैं समय निकालता हूँ। किसी के पास किसी प्रकार का समय नहीं, लेकिन हमें चाहिए कि हमें समय निकालना चाहिए। मोबाइल के लिए लोग समय निकाल लेते हैं, रेडियो सुनने के लिए समय निकाल लेते हैं, खाना खाने के लिए समय निकाल लेते हैं।
0: हाँ, भाई हम रेडियो के लिए तो जरूर कहेंगे कमलेश जी कि हमारा रेडियो किसी के कार्य में व्यवधान नहीं डालता है ना, आप योगा करते वक्त भी रेडियो सुन सकते हैं।
1: नहीं मैम जी, मैंने मान लो एक बात और रखी, खाना खाने
0: जी
1: के लिए समय निकाल
0: जी
1: लेते हैं,
0: जी
1: पानी पीने के लिए समय
0: जी
1: निकाल लेते हैं। हमारे शरीर को यदि चलाना है, आपको स्वस्थ रखना है, तो योग के लिए जरूर बहाना ना बनाए, समय
0: जी
1: निकालें, के लिए जरूर करना पड़ता है।
0: कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से हम भोजन या मोबाइल की बात आपने कही है, टीवी की, पढ़ाई की, है ना, अपने मनोरंजन की, हर प्रकार के लिए जब हम वक्त निर्धारित करते हैं तो अपने शरीर के लिए ज़रूर हम वक्त निर्धारित करें और उसको एक नियमित समय पर करें तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो पाता है तो जब कभी भी इस वक्त मिले हमें योगा

0: जरूर करना चाहिए, है
1: और मैम
0: ना
1: जी एक बात और रख दूं आखिरी में,
0: जी?
1: कि हम अपने आप को फ्रेश करने के लिए साल में या साल में एक दो बार जरूर कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं सा परिवार,
0: हाँ
1: तो क्यों जाते हैं बताइए? ये मेरा
0: हाँ
1: प्रश्न आपके अलावा पूरे श्रोताओं से है। तो हम अपने आप को फ्रेश रखने के लिए कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्र या कह सकते हैं पर्यटक क्षेत्र में चले जाते हैं, दो चार दिन गुजारते हैं बढ़िया, वो फ्रेश होकर जाते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं, तो एक ऊर्जा मिलती है। तो मैं
0: हाँ
1: समझता हूँ ये ऊर्जा यदि आपको कायम रखना है तो ये जरूर कीजिए और समय निकालिए।
0: चलिए, बहुत अच्छा उत्तर दिया है आपने, प्रश्न भी आपका ही था, तो बहुत अच्छा लगा कमलेश जी आपसे बात करके। तो ऊर्जावान रहने के लिए योग जरूर करें।

0: हेलो,
1: जी मैडम नमस्ते।
0: नमस्ते।
1: मैं सोमत सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से।
0: सोमत सिंह जी, हम ये जानना चाहते हैं, आज बात आपकी की थी हमारे में, कि कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना? यानी पहले से ही यदि आप चेत के रहेंगे तो बीमारी को आप दूर भगा सकते हैं,
1: हाँ
0: है ना? और इसके लिए योग अगर आप करें तो आप स्वस्थ जीवन जो है लंबे समय तक बिता सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताएं?
1: बिल्कुल बात सही है। योग निश्चित ही हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है और आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनसे हमें निश्चित ही निजात मिलती है। लेकिन मेरा मानना यह है, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने अपने खान पान का विशेष ख्याल रखते हुए और जो बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम लोग घूमने फिरने में भी और ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए मुझे आज तक कभी भी मतलब कोई समस्या नहीं हुई। आप समझिए कि मैं 45 से ऊपर हूँ इस समय, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखते हुए अगर हम चलें तो निश्चित ही हमें आने वाली समस्याओं का कहीं ना कहीं भान होता है पहले से। तो बिल्कुल योग एक ऐसी मैं समझता हूँ व्यवस्था है जो आसानी से हम लोग एक इससे जुड़ जाए तो हमारी जितनी भी फिटनेस की समस्या हो, हमारे शरीर में जो अंदरूनी बातें चीज समस्याएं होती है, जैसे कई लोगों के जो जन्म से समस्याएं होती हैं, कई लोगों को ठंड सहन नहीं होती, गर्मी सहन नहीं होती, तो इस तरह की जब अंदर की समस्याएं होती हैं उनसे भी कहीं ना कहीं जूझने में योग का निश्चित ही जो योगदान होता है वो हमारे जीवन को सुरक्षित बनाता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, योग बहुत जरूरी है। और हमारे संगीत, मैं तो संगीत से जुड़ा हूँ तो योग तो निश्चित ही संगीत के लिए वरदान साबित है। आप जितनी लंबी सांस होगी उतना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होता है, तो निश्चित ही योग करना चाहिए। और ये जरूर है कि इसको करने से पहले जो इसके शिक्षक हैं जो ज्ञान रखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें ज्ञान नहीं होता, हम अपने स्तर से इसको करना शुरू कर देते हैं तो कई बार लापरवाही कह लो या जानकारी कम होने के वजह से कई बार छोटी मोटी समस्याएं भी आती हैं सामने।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है सोमत सिंह साहब आपने, क्योंकि योग आप करेंगे यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की उम्र से जुड़ी हुई कोई परेशानी है या फिर आपके जोड़ या किसी भी अन्य प्रकार की शरीर में कोई समस्या है तो पहले डॉक्टर से आप पूछ लें, है ना?
1: हाँ
0: डॉक्टर की
1: हाँ
0: सलाह ज़रूर ले लें कि हम योग करेंगे तो क्या ये एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि उससे आपकी तकलीफ़ और बढ़ सकती है ना?
1: हालांकि एक चीज और भी है, अगर
0: जी
1: हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहते हुए अगर हम योग से जुड़ जाएं तो और इसके फायदे हैं कि और निश्चित ही जो हमारा जीवन है आगे का
0: जी
1: वो स्वस्थ ही रहकर हम आसानी से बिता सकते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या है तो उसके पहले डॉक्टर से

0: तरह लेकर ही इससे जुड़े तो निश्चित ही इसका लाभ मिलना तय है।
1: चलिए, बहुत अच्छी बात कही सोमत सिंह आपने, और बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
0: जी, किनसे बात हो रही है मेरी?
1: जी, मैं नीतिका वर्मा।
0: अच्छा जी, चलिए, अच्छा लगा, पहली बार बात हुई आपसे।
1: जी।

0: मैम, मैं ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रही हूँ। ठीक
1: कैसी हैं संगीता पटेल जी?
0: है मैम, आप कैसी हैं? हाँ
1: जी हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छी होंगी,
0: जी मैम, सही
1: है ना?
0: है।
1: और
0: हाँ
1: हमारे श्रोता जब अच्छे रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये बताइए संगीता पटेल जी, अपनी
0: जी
1: नियमित जो दिनचर्या है, आप गृहिणी हैं?
0: जी जी
1: चलिए तो दिनचर्या में आप योग के लिए कुछ वक्त निकाल लेती हैं? योगा करती हैं आप?
0: जी मैम, मैं योगा तो नहीं करती हूँ,
1: हाँ हाँ
0: वो अपने जो सुबह के काम हैं वो करती हूँ अपने खुद से। जी
1: खैर काम तो गृहिणी को करना ही होता है, लेकिन योगा जो है एक अच्छा अभ्यास होता है शरीर के लिए। हालांकि
0: जी मैम,
1: गृहिणी जो होती हैं वो घर के जो नियमित कार्य करती हैं तो उसमें काफ़ी कुछ उनका शरीर जो है लचीला सा हो ही जाता है, पर फिर भी एक नियमित अभ्यास के साथ में यदि हम योग को अपनाएं तो शरीर को जो है वो फायदे होते हैं उससे, है ना? जैसे कि जोड़ में दर्द है या किसी प्रकार से माइग्रेन वगैरह की शिकायत है ना, मानसिक तनाव है, तो मेडिटेशन करें। कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट ही दीजिए, लेकिन योग जरूर कीजिए।
0: जी मैम, अभी तो नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी कर ही नहीं पाती हूँ तो,
1: हाँ हाँ
0: और लेकिन करने की कोशिश करूंगी जरूर।
1: हम यही चाहते
0: जी
1: हैं कि आज कार्यक्रम में बात आपकी, गीत हमारे में हमने योग विषय रखा है,
0: जी
1: और तो
0: जी
1: उसको लोग भाग अपनाएं, है ना?
0: जी
1: केवल बातें नहीं
0: जी
1: करनी है, इसे अपनाना
0: हाँ
1: भी है। तो
0: जी जी
1: आपको क्या लगता है, योग करने से फायदा होगा आपको?
0: मैम, क्यों नहीं होगा, जब सबको होता है हमको क्यों नहीं होता, और क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं।
1: हाँ, और
0: जी
1: ये तो हमारे अपने भारत की विधा है ना?
0: जी मैम,
1: तो इसे हम अगर अपनाएंगे तो निश्चित
0: जी
1: ही हमें
0: जी
1: फायदे बहुत मिलेंगे।
0: मैं करने लगी हूँ।

0: मैं ग्राम भावी तहसील नारायणी जिला बांदर से बुद्धि बिलासपुर साहब बात कर रहा हूँ
1: कुशवाहा जी, आपसे जानना चाहते हैं,
0: जी।
1: योगा जो है वो हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है,
0: जी
1: तो
0: जी मैम
1: योगा करना चाहिए, इसके लिए क्या कुछ कहेंगे और योग के क्या कुछ फायदे हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं।
0: योगा से तो हर चीज निर्भर है, और शरीर का हर अंग उससे काम करता है। और योग जीवन के लिए बहुत फायदेमंद है
1: अच्छा,
0: जी। हाँ
1: तो योगा को आपने अपनाया हुआ है,
0: जी हाँ
1: योग करने से आपको क्या कुछ लाभ हुए हैं?
0: जी, उससे मानसिक तनाव भी दूर होता है, शारीरिक बीमारियां भी दूर होती हैं।
1: तो योगा करने की सलाह आप देना चाहेंगे तो मैं श्रोताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे बताएं। इसे शाम को
0: जी
1: भी किया जा सकता
0: हाँ,
1: है ना?
0: और सबसे हाँ सबसे ज्यादा फायदे में वो लोग ना करें जिन्हें ज्यादा गंभीर बीमारियां बगैर परामर्श के। जी
1: बिल्कुल सही, डॉक्टर से परामर्श जरूर लें
0: हाँ,
1: यदि आपको किसी
0: मान
1: प्रकार
0: लो
1: की,
0: जो जिनके लिए अनुकूल है वही।
1: जिनके लिए अनुकूल है वही हैं करें, और यदि आपको किसी प्रकार की तकलीफ है या बीमारी है तो आप डॉक्टर से
0: हाँ
1: परामर्श लेकर के
0: तो
1: करें।
0: हाँ, फायदे की जगह नुकसान हो मालूम, हम लगातार कर रहे हैं तो कहाँ से फायदा होगा।
1: जी बिल्कुल सही, बहुत सही बात कही आपने कुशवाहा जी,
0: जी
1: बहुत
0: जी
1: धन्यवाद आपने बात की
0: नमस्कार।
1: जी, नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, योग मानसिक विकार दूर करता है, इससे सहयोग की भावना भी बढ़ती है। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्यों ना योग को अपने जीवन की समय सारणी में स्थान दें। लेकिन साथ में ये भी कहेंगे कि योग ज़रूर अपनाएं, लेकिन यदि आपके पास में किसी प्रकार की परेशानी है शारीरिक, तो आप अपने चिकित्सक से सलाह परामर्श ज़रूर लें। योग अपनाएं ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। तो कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज हमने बात की योग पर। अब अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को, नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के अंदर किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल की ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायालय ने कहा कि ट्रिशा के शरीर पर पाए गए कुछ घाव उनकी मृत्यु से पहले के थे। न्यायालय ने कहा कि जमानत देते समय पीड़िता के परिवार के आरोपों को नज़रअंदाज किया गया। स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारियां की जा रही है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने बताया कि हर गौशाला में कम से कम 5,000 गोवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गाय होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के लिए देगी। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और आईपीएल क्रिकेट में कल शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे। इनमें से विजेता टीम 31 मई रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म याराना से, आवाज किशोर कुमार की, गीत लिखा था अनजान ने और संगीत था राजेश रोशन का। इस गीत को सुनना चाहा था आप सभी ने। महादेव घाट अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहा था नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत था आर डी बर्मन का। फिल्म थी शान। इस गीत को सुनना चाहा था घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। इसी गीत को सुनना चाहा था लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू ने।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म कुदरत से लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना थी मजरूर की और इसे संगीत में बनाया था आरडी बर्मन ने। इस गीत को पसंद किया था गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा सालिया, शुएब पोत्रा, मुश्तबा खान, रऊफ और शाहिद भाई ने। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म कर्ज से, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद किया था आप सभी ने सिंगपुर बंडा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म आशा से। स्वर लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को पसंद किया है आप सभी ने। रिंगिनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, दतरेंगी से भागवत वर्मा, आप सभी की पसंद पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से ये गीत।

इसी गीत के साथ फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं पर संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए अब मिलते हैं इस अंतराल के बाद।

0: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: अंतराल का समय समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां की दूसरी कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की दूसरी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि सारे का निकाह अपने मामा करीम के लड़के मुश्ताक से हो जाता है। सारे अपने ससुराल में खुश है। उधर सारे की अम्मी बीमार हैं और उसे याद कर रही हैं। अब आगे।

0: अरे आप,
1: वादा वादा ये ले दवा, हकीम जी से लाया हूं, खा ले, आराम आ जाएगा।
0: अब बर्दाश्त नहीं होता, नहीं बचूंगी शायद।
1: अरे ऐसा क्यों कहती हो? हकीम जी कहते थे दवा खाने और आराम करने से तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी।
0: आराम कहाँ से होगा, काम कौन करेगा?
1: तुम नाहक ही परेशान होती हो।
0: मैं ना परेशान हूं तो कौन होगा, और घर में है ही कौन? तुम तो काम पर चले जाते हो, दिन भर घर तो मुझे ही संभालना पड़ता है।
1: फाता, घर तो संभालने से ही संभलता है। तुम ठीक हो जाओ, समय पर दवा ले लेना, जिससे दवा का असर जल्द हो।
0: तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो मेरी?
1: अरे मैं ना करूं तो कौन है जो तुम्हारी फिक्र करे?
0: सारे होती तो कम से कम दो रोटियां तो सेक कर खिलाती तुम्हें।
1: अरे बेगम, सारे अपने घर में खुश है, फिर उसे क्यों तकलीफ दें? और फिर बेटी अपने घर में रहे, ये कौन सी अच्छी बात है?
0: बात अच्छे बुरे की नहीं है, समय की है। घर में 2 दिन से चूल्हा जला नहीं और तुम भी कुछ खाए नहीं हो। सारे होती तो
1: अरे बाबा, सारे हमेशा यहाँ थोड़े ही रहेगी।
0: बीमारी में भी देखने नहीं आएगी क्या? इतनी बदल गई मेरी बेटी कि माँ को देखने की भी फुर्सत नहीं उसके पास।
1: अरे ऐसा क्यों कहती हो फाता?
0: अगर ऐसा नहीं होता तो शादी के इतने दिनों में मिलने क्यों नहीं आई?
1: शादी के बाद बेटी का घर ससुराल ही होता है, और सारे कहीं रहे, खुश रहे, और क्या चाहिए हमें?
0: तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या?
1: जाऊंगा, बाजार भी जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है।

0: एक बात कहूं,
1: हाँ कहो, क्या बात है?
0: सारे को बुला लेते। आखिर बेटी है हमारी, उसका चेहरा देख लेती तो शायद मन कुछ हल्का हो जाता।
1: बाजार जा ही रहा हूं, कोई उधर मिल गया तो करीम भाई को संदेशा भिजवा दूंगा कि सारे को कुछ दिनों के लिए भेज दें।
0: करीम भाई कोई दूर तो रहते नहीं, तुम ही चले जाना।
1: देखूंगा, समय बचा तो जाऊंगा।
0: अरे नहीं जाओगे तो सारे को वे लोग नहीं आने देंगे।
1: करीम भाई कोई गैर तो नहीं कि सारे को नहीं आने देंगे? अरे तुम नाहक ही परेशान रहती हो।
0: मैं बेकार की परेशान नहीं होती। करीम भाई सारे को नहीं आने देंगे, कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे।
1: अरे उन्हें बहाना बनाने की क्या जरूरत है? सारे हमारी बेटी है, क्यों रोकेंगे उसे?
0: तुम जो कहो, मैं जानती नहीं क्या कि शादी के इतने दिनों तक ना आने दिया उसे, तो अब क्यों आने देंगे?
1: अरे बेगम, तुम तो परेशान हो जाती हो। अरे परेशान ना हो, आराम करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। मैं संदेशा भिजवा दूंगा।
0: ठीक है, जैसा बेहतर समझो।
1: अच्छा, मैं जाता हूं बाजार।

0: अरे करीम भाई, चलो अच्छा हुआ यहाँ बाजार में ही मुलाकात हो गई। सलाम करीम भाई।
1: अरे अरे हसन भाई, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हाँ भाई, सुनाइए कैसे हैं?
0: अल्लाह का रहमो करम है, सब ठीक है।
1: लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं।
0: करीम भाई, परेशानी तो जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है।
1: ओहो, अरे भाई कुछ बताएंगे भी, आखिर बात क्या है?
0: अब क्या बताऊं, फाता बीमार है 2 दिनों से, बुखार उतर ही नहीं रहा।
1: अरे अरे, ओहो, तो भाई किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं?
0: दवा लाकर दी है, हकीम जी कह रहे थे दवा जल्द असर करेगी।
1: अरे भाई, मौसम का भी असर होता है भाई, अल्लाह से दुआ करूंगा फाता बहन जल्द ठीक हो।
0: करीम भाई, वादा की इच्छा है
1: क्या
0: कि सारे कुछ दिन उसके पास आकर रहे, जिससे उसका मन कुछ हल्का हो जाए।
1: अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे भाई, मैं आज ही मुश्ताक के साथ सारे को भेज दूंगा।
0: बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
1: ओहो, कैसी बात कर रहे हैं हसन भाई। अरे भाई, सारे हमारी बहू है तो आपकी बेटी पहले है, और भाई उस पर आप लोगों का भी हक है।
0: लेकिन सारे के आने से आप लोगों को भी तकलीफ होगी।
1: अरे नहीं, ऐसी क्या बात है, भला सारे अपने घर से अपने घर ही तो जा रही है, और शादी के बाद वहां जाना भी नहीं हुआ। अब फाता बहन की इच्छा हो रही है, और भाई तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में सारे का अपनी अम्मी के पास होना तो जरूरी भी है। अच्छा, तो अब मैं चलूंगा, आपको भी देर हो रही होगी और फाता अकेली होगी।
0: अरे नहीं नहीं, अरे रुकिए, एक एक कप चाय तो पी लें, बैठिए। भाई 2 कप चाय देना।
1: हाँ भाई हसन भाई, तो अब काम कैसा चल

0: नहीं अभी।
1: बाजार तो ठीक है, लेकिन काम आए तो ठीक, मगर अभी तो बिना काम के कई कई रोज गुजर जाते हैं। इसी तरह रहा तो रोजगार ही बदलना पड़ेगा।
0: अरे अरे, ऐसी क्या बात है? और भाई, कसीदाकारी के कपड़ों की तो अच्छी मांग है बाजार में, और सरकार भी तो मदद देती है।
1: आपको क्या लगता है, जिस तरह से सरकारी माहौल बदल रहा है, हम जैसे लोग भी रोजगार चला पाएंगे क्या?
0: अभी
1: अरे पहले की बात और थी, लोग बाहर से आते थे और वही लोग हाथों के बने कपड़े खरीदते थे। अरे अब तो उनका आना भी कम हो गया है।
0: अब हम सो तो है भाई, लेकिन हाथ की कारीगरी तो उन्हीं पर टिकी है, और जब वो नहीं तो काम नहीं। सही कहते हो, पर हाँ, अब सरकार भी पहल कर रही है। देखना, कुछ समय में फिर वही पुराना जैसा माहौल आ जाएगा। और भाई, अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो वक्त जल्दी आए। हाँ,
1: आमीन।
0: अच्छा भाई, तो हसन भाई, अब मैं चलता हूँ, वक्त मिला तो मैं जरूर आऊंगा।
1: अच्छा, सारे को भेजना ना भूलिएगा।
0: अरे नहीं, बोलूंगा भाई, आज ही मुश्ताक के साथ भेजूंगा उसे। हाँ,
1: अच्छा, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।

0: सारे।
1: अरे आ गए आप?
0: हाँ।
1: मैं अभी चाय बना देती हूँ।
0: मैं जरा मुंह हाथ धो लूं।
1: चाय के साथ रोटी ला दूं?
0: नहीं, सिर्फ चाय ही दे दो, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा।
1: क्यों, तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
0: हाँ, तबीयत तो ठीक है।
1: फिर परेशान क्यों लग रहे हैं?
0: कुछ नहीं सारे, बस काम का बोझ है और कुछ नहीं।
1: तो इतना काम ही क्यों करते हो जो परेशान रहो?
0: सारे, जिंदगी में पैसे का बहुत मोल है और पैसा आराम से कभी किसी को नहीं मिलता। अब पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है।
1: वो तो ठीक है, पर पैसे से खुशी किसे मिली है भला?
0: सारे, पैसे से खुशी ना मिली हो, पर ये अच्छा तरीका तो जरूर है। और आज इसी की कीमत है, जिसके पास पैसा है वो खुशी के तमाम पल खरीद सकता है।
1: देखो जी, ऐसी खुशी मुझे तो नहीं चाहिए जिससे आप अपने आप को गला लें।
0: सारे, तुम्हें नहीं चाहिए, पर वो सारी खुशी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ।
1: अच्छा छोड़ो ये बातें, चाय पी लो और कुछ आराम कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में आप अपनी सेहत को ही भूल जाएं।
0: ठीक है सारे। अच्छा, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा।
1: अम्मी पड़ोस में गई हैं और अब्बा बाजार गए हैं, कुछ जरूरी काम था, आते ही होंगे।
0: अच्छा,
1: लो अब्बा आ गए शायद, देखो तो जरा।
0: हाँ देखता हूँ। अरे अब्बू।
2: कौन, मुश्ताक? आ गए काम से?
0: हाँ अब्बू। अब्बू आप बाजार गए थे?
2: हाँ हाँ भाई, वो कुछ जरूरी काम था। तुम्हारी अम्मी कहाँ है?
0: अब्बू, अम्मी तो पड़ोस में गई हैं, आती ही होंगी।
2: और वो सारे कहाँ हैं?
0: सारे रसोई में खाना बना रही है, आप चाय लेंगे?
2: बनी हो तो दे दो।
0: सारे, अब्बू के लिए चाय लेती आना, मैं भी यही चाय ले लूंगा।
2: हाँ, काम से कब लौटे बेटा?
0: बस अब्बू, अभी थोड़ी देर हुई है। और बाजार में क्या हुआ अब्बू?
2: भाई काम तो हो गया। और हाँ, वो सुनो, वो सारे के अब्बा मिले थे।
0: अच्छा।
2: हाँ, सारे को कुछ दिनों के लिए बुलाया है। देखो भाई, हो सके तो तुम भी साथ चले जाना।
0: नहीं अब्बू, मेरे पास समय नहीं है। और ऐसे भी क्या बात है अभी?
2: अरे अरे मुश्ताक भाई।

0: वो फाता की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, दो
1: ओ
0: दोनों से बुखार है और सारे को देखने की रट लगाए रखी है।
1: अब इस समय सारे का जाना मुमकिन है क्या? मेरे पास वक्त नहीं है।
2: मुश्ताक बेटा, कहाँ जाने की बात हो रही है?
0: अरे बेगम, वो हसन मियाँ मिले थे आज बाजार में। उन्होंने बताया कि फाता बीमार है और सारे को बुलाया है।
2: अरे तब तो सारे को जाना ही चाहिए।
0: अरे भाई, लेकिन मुश्ताक कह रहा है उसके पास वक्त नहीं है वहां जाने का।
2: वक्त नहीं है? ये क्या बात हुई भला? तो क्या बहू अकेली जाएगी यहां से? अरे लोग क्या कहेंगे, सारे है कहाँ?
1: अम्मी वो रसोई में है।
2: जा सारे को बोल तैयार हो ले, और तू भी उसके साथ चला जा, शायद किसी की जरूरत पड़े वहां।
1: ठीक है अम्मी, बेहतर है।
0: और सुनो, वो मैं गाड़ी वाले को बोल आता हूँ, दोनों को छोड़ आएगा।
2: हाँ सारे को बोल तैयार हो ले, रसोई मैं बना देती हूँ।
1: जी। सारे, सारे,
3: जी
1: जरा इधर आना।
3: आई जी, कहिए।
1: तुम्हारी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, सो हमें जाना होगा।
3: क्या क्या हुआ मेरी अम्मी को?
1: घबराने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। तुम अपने जरूरत के दो चार कपड़े ले लो, अब्बा अभी गाड़ी लाने गए हैं।
3: अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या?
1: अरे नहीं, तुम बेकार में ही इतना घबरा रही हो। तुम्हारे अब्बा बाजार में मिले थे, उन्होंने ही मेरे अब्बा से कहा है सब ठीक है। तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखना चाहती है।
3: तो अम्मी से जाने को पूछ तो लेते।
1: हाँ, बात हो गई है और मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। अब जल्दी तैयार भी हो लो, नहीं तो देर हो जाएगी। अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए तो ठीक होगा।
3: हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार हो लेती हूँ। आप भी अपने कपड़े ले लीजिए।
1: अब मेरे कपड़े रहने दो,
3: क्यों,
1: तुम्हें छोड़ मैं उसी गाड़ी से वापस आ जाऊंगा।
3: इतने दिनों बाद जाओगे तो रहोगे नहीं क्या?
1: नहीं, काम बहुत है, वैसे वहां जाने पर देखा जाएगा।
3: ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बस एक थैले में दो चार कपड़े ही तो रखने हैं।

0: देख तो कौन आया है।
1: अम्मी अम्मी
2: कौन? सारे आ बेटी बैठ मेरे पास।
1: कैसी हो अम्मी?
2: जिंदा हूँ बस, दो दिन से बुखार शरीर को तोड़े जा रहा है, अब तो लगता है उठ भी नहीं पाऊंगी।
1: ऐसा क्यों कहती हो अम्मी, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी।
2: यकीन नहीं होता।
1: यकीन करो अम्मी, तुम ठीक हो जाओगी, मामूली सा बुखार ही तो है, दवा लेने से ठीक हो जाएगा।
2: मुश्ताक भी आया है क्या?
1: हाँ अम्मी, वो भी आए हैं।
2: मुश्ताक आया है तो अभी रहेगा ना, कुछ बना ले, ऐसा कर उससे पूछ ले क्या खाएगा, वही बना लेना।
1: अम्मी मुश्ताक तो यहाँ शायद ना रहें, उनका काम बढ़ गया है और मौसम भी ठीक है, काम में ज़ाया करने से बहुत नुकसान हो जाएगा।
2: अच्छा मुश्ताक के लिए चाय बना दे।
1: जी अम्मी, अभी बना देती हूँ।
2: बेटी मैं के आती है तो आराम पाती है, पर एक मैं हूँ जो बेटी के पहले मैं के वापसी पर भी उसी से काम करा रही हूँ।
1: अम्मी ऐसा क्यों सोचती हो,

0: क्या अब ये मेरा घर नहीं रहा कि मैं यहां कुछ काम ना करूं?
1: तू माँ का दर्द नहीं समझ सकती। तू तो वहाँ भी दिन रात काम करती रहती होगी, यहाँ आई तो भी काम करना पड़ रहा है। ये अच्छा तो नहीं लगता बेटी।
0: अम्मी, तू भी क्या कहती है? पहले तू ठीक हो जा, फिर मैं आराम से कुछ दिन तेरे पास रह लूंगी।
1: मुश्ताक मानेगा क्या?
0: पहले तू ठीक तो हो जा, फिर देखूंगी।
1: अच्छा, जरा पानी तो पिला दे बिटिया।
0: हाँ, अभी देती हूँ।
1: अब तो एक गिलास पानी भी पिलाने वाला नहीं है कोई।
0: अम्मी, लो पानी।
1: दे बेटी।
0: अम्मी, तू बेकार की बात सोच सोच कर परेशान क्यों होती है? अब मैं आ गई हूं ना, अब तू जल्दी से ठीक हो जाएगी।
1: तू एक माँ की बात नहीं समझ पाएगी सारे। मेरी बच्ची अभी तो छोटी है, ये दुनियादारी की बातें तेरी समझ से दूर हैं।
0: ये क्या कह रही हो अम्मी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तू आराम कर, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ और देखती हूँ कि खाने में क्या बन सकता है।
1: अच्छा, मुश्ताक अगर अभी जाएगा तो जल्दी में जो हो सके वही बना ले।
0: ठीक है अम्मी, तुम फिक्र मत करो।
1: सारे
0: हाँ अम्मी, कहो।
1: बेटी, तू खुश तो है ना मुश्ताक के साथ?
0: तू ये क्यों पूछ रही है अम्मी? मैं खुश हूं।
1: नहीं, वैसे ही करीम और फजी कैसे व्यवहार करते हैं?
0: बहुत प्यार है उन्हें मुझसे।
1: हाँ भाई, आखिर क्यों ना हो। तू सुबह से रात तक मजदूर की तरह कमर तोड़ मेहनत जो करती है, कोई मजदूर भी इतनी मेहनत ना करे। और तू?
0: अम्मी, तू भी कैसी बातें करती है? वो मेरा घर है और मैं काम ना करूंगी तो भला कौन करेगा?
1: तू तो कुछ समझती ही नहीं। वे लोग तुम्हें नौकरानी बना कर रखे हुए हैं और तू खुश हो रही है कि वो तेरा अपना घर है।
0: अम्मी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, तू नाहक ही परेशान हुए जा रही है।
1: अरे सारे, तू ना उस घर गई होती तो क्या मुश्ताक कभी इतना कमा पाता? अरे वो तो तेरी किस्मत है कि तेरी दुआ से मुश्ताक कमा रहा है, और जिसके आमदनी पर तुम्हारा हक होना चाहिए उस पर करीम और फजी राज कर रहे हैं, और तुम नौकरानी की तरह दिन रात मेहनत करती हो।
0: अम्मी, ऐसा क्यों कह रही हो? करीम और फजी कोई गैर तो नहीं कि वो मुश्ताक के पैसे को खर्च ना कर सके? आखिर वो मुश्ताक के माँ बाप हैं।
1: अरे तू ठहरी भोली भाली, पर करीम और फजी को तो शर्म मानी चाहिए जो बेटे के पैसों से ऐश करते हैं और बहू को नौकरानी बनाकर रखा है, और तू उन्हीं लोगों की तरफदारी किए जा रही है।
0: अम्मी, ऐसा ना कहा करो। अब तो वही मेरा घर है और मुश्ताक मेरा शौहर है। वो जैसी भी रखेगा, मैं वैसी ही रह लूंगी अम्मी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि करीम और फजी मेरे साथ गलत सुलूक कर रहे हैं।
1: अरे बिटिया, सारे तुम जो भी कहो, पर मैं तेरी माँ हूँ और मैं तेरे भले की कहती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो शादी के बाद करीम व फजी ने क्या एक बार भी तुम्हें आने ना दिया होता? क्योंकि वो चाहते हैं कि तू अपने माँ बाप को भूल जा और उनके घर नौकरानी बनकर रह।
0: अम्मी,
1: मुश्ताक कमाता है, पर आज तक तुम्हें क्या दिया?

0: काम करो तो दो रोटी कोई भी दे दे, पर क्या परिवार ऐसा होता है? जरा सोचो, आज अगर तुम यहां होती या मुश्ताक के साथ अलग होती बिटिया, तो क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा ना होते? तुम्हारे पास ऐशो आराम होता और तुम खुश होती। मुश्ताक भी तुम्हें प्यार नहीं करता। अगर ऐसा होता तो तुम्हें उस नरक से निकाल कर अलग कहीं रखता जहां तुम खुश होती।
1: अम्मी, अम्मी, मुश्ताक मुझसे प्यार करता है, तू ऐसा मुझसे ना कहा कर अम्मी। और मुश्ताक का घर कोई नरक तो नहीं जो मैं वहां खुश नहीं हूं?
0: अरे जाने दे, सारे हर मर्द एक जैसा तो होता नहीं, पर होता तो मर्द ही है। और औरत को हमेशा से दूसरे दर्जे का ही मानता रहा है, और मुश्ताक भी तो एक मर्द ही है। अगर वो ऐसा ना होता और तुमसे प्यार करता होता तो वह तुम्हें उस नरक से बाहर कहीं और घर लेकर रखता जहां तुम रानी की तरह रहती। सारे मेरी बात मान तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुश्ताक को कहो कि वो अलग मकान लेकर रहे या यहीं आ जाए, यहां घर की कमी तो नहीं?
1: नहीं अम्मी, मैं मुश्ताक के साथ ठीक हूँ, खुश हूँ। और अलग मकान लेकर रहने की क्या बात हुई भला? यहाँ आकर रहने की तो मैं सोच भी नहीं सकती। और मुश्ताक को भी ये गवाह।
2: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिंसकिया की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब पेश है इस घंटे की खास खबरें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल की ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। न्यायालय ने कहा कि जमानत देते समय सत्र न्यायालय ने पीड़िता के परिवार के आरोपों को नजरअंदाज किया। ट्विशा के शरीर पर पाए गए कुछ घाव उनकी मृत्यु के पहले से थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 अथवा नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव 29 मई तक भेज सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के अंदर किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारियां की जा रही है। हर गौशाला में कम से कम 5000 गौवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गायें होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के लिए देगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। ग्रीन सिंहस्थ के तहत 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और IPL क्रिकेट में कल शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इनमें से विजेता टीम 31 मई रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेलेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के योगदान से है।

महिला सभा सुनने वाली हमारी सभी सखियों का स्वागत अभिनंदन उनके अपने महिला सभा कार्यक्रम में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी सखी रुबीना। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश का इतिहास बहुत समृद्धशाली और गौरवपूर्ण रहा है, जिसमें अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें आज भी याद किया जाए तो हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे अनेक आदर्श व्यक्तित्व हमारे देश में हुए हैं जिनकी चर्चा हमें आज भी रोमांचित कर देती है। ऐसे ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे वीर सावरकर, जिनका असली नाम था विनायक दामोदर सावरकर। वे क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, कवि, ओजस्वी वक्ता थे। उनके वीरतापूर्ण कृत्यों की वजह से ही उन्हें उनके समर्थकों द्वारा वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 28 मई 1883 में ब्रिटिश भारत के बम्बई प्रेसिडेंसी में नासिक जिले के भागपुर गांव में हुआ था। जब वे 9 वर्ष के हुए तो उनकी माता और 16 वर्ष के हुए तो उनकी पिता का देहांत हो गया। दुख और कठिनाई के बीच उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और युवावस्था के साथ एक क्रांतिकारी के रूप में उभर कर आए। बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में, जहां वे पढ़ाई भी करते थे, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे और पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होते थे, जिसमें उन्होंने प्रमाण सहित यह सिद्ध किया कि 1857 का संग्राम गदर नहीं बल्कि भारत की आज़ादी का प्रथम संग्राम था। इन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना की। लंदन में वकालत की पढ़ाई करने के दौरान वहीं लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। उनके क्रांतिकारी कृत्यों के कारण उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और जब उन्हें जहाज के रास्ते भारत लाया जा रहा था तो वे सीवर होल के रास्ते भाग निकले। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और काला पानी की सजा मिलने पर सेलुलर जेल भेजा गया। यहाँ भी उनका आक्रोश उनकी कविताओं और लेख में स्पष्ट दिखाई देता रहा। सखियों, वीर सावरकर दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला था और 10 वर्ष के बाद वे जेल से रिहा हुए। उन्होंने जाति भेद, छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध किया और समाज सुधारक के रूप में उनका व्यक्तित्व सामने आया। देश प्रेम और भक्ति की भावना उनके द्वारा मराठी भाषा में लिखे साहित्य के 10,000 पन्नों में और अंग्रेजी भाषा के 1500 से अधिक लिखे पन्नों में स्पष्ट दिखाई देती है। सखियों, आपने एक पुरानी फिल्म काला पानी का नाम तो सुना ही होगा। वह फिल्म वीर सावरकर के व्यक्तित्व पर ही बनी थी। पोर्ट ब्लेयर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी वीर सावरकर के नाम पर ही रखा गया है। आज भी सावरकर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं। आज़ाद भारत में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनकर कार्य करते रहे। उनका मानना था कि जब किसी व्यक्ति के जीवन का मिशन पूरा हो जाए और वह समाज के लिए और योगदान ना दे सके तो उसे अपनी शर्तों पर जीवन त्याग देना चाहिए। इसे उन्होंने आत्मार्पण का नाम दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1 फरवरी 1966 से उपवास शुरू कर दिया। 26 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के कारण धीरे धीरे उनका शरीर पूरी तरह कमजोर हो गया और 26 फरवरी 1966 को उनका देहांत हो गया। ऐसे साहस

0: AR रहमान की आवाज़ में हमने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था स्वदेश। ऐसा कहा जाता है सखियों कि अच्छे पड़ोसी किस्मत से मिलते हैं। बात भी सही है, पड़ोस अच्छा हो तो जीवन की आधी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो क्यों ना पड़ोसी से सद्व्यवहार बना कर रखा जाए। आइए इसी बात पर सुनते हैं विधि गौतम से यह वार्ता। विषय है पड़ोसी से सद्व्यवहार बनाए रखें।
1: नमस्कार, आज की वार्ता का विषय है पड़ोसी से सद्व्यवहार बनाए रखें। आज के समय में एकल परिवार बहुतायत से मिलता है, किंतु कुछ समय पूर्व संयुक्त परिवार हुआ करते थे। उस समय पड़ोसियों की परिभाषा भिन्न हुआ करती थी। इस संबंध में मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगी। आज से लगभग 4 दशक पूर्व जनसंख्या का आंकड़ा इतना विस्फोटक नहीं हुआ था तथा संयुक्त परिवारों का चलन थोड़ा बहुत बाकी था। उस समय के लोगों के पास जमीन जायदाद के रूप में बड़े बड़े मकान हुआ करते थे। अधिकांशतः बड़े संयुक्त परिवारों के विभाजन में इन्हीं बड़े बड़े मकानों के बंटवारे हुआ करते थे और पड़ोसी के रूप में प्रायः पारिवारिक लोग और रिश्तेदार ही हुआ करते थे। उस समय के लोगों के पड़ोसी धर्म के रूप में पारिवारिक तथा सामाजिक मर्यादाएँ जुड़ी रहती थी। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ सामाजिक मान्यताएं तथा परंपराएं भी बदलने लगी। स्थानीय उद्योग व्यापार तथा खेती किसानी के सीमित साधनों के चलते लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी अथवा व्यवसाय हेतु अन्यंत्र जाने लगे और किराए के आवास में रहने के कारण ऐसे लोगों के पड़ोस बदले, पड़ोसी बदले और उनके पड़ोसी धर्म में भी बदलाव आया। यही बदलता पड़ोसी धर्म सांस्कृतिक बदलाव का कारक भी बना। बढ़ती जनसंख्या ने ही छोटे बड़े शहरों में आवासीय समस्या के समाधान की दिशा में अपार्टमेंट कल्चर को जन्म दिया। इस बदले अपार्टमेंट कल्चर में पड़ोस और पड़ोसी धर्म की धारणाएं तथा मर्यादाएं भी बदल गईं। इस अपार्टमेंट कल्चर में पड़ोसियों से सद्व्यवहार जीवन को खुशनुमा और दुर्व्यवहार जिंदगी को खौफजदा बना देता है। अपार्टमेंट कल्चर में साफ सफाई, पानी तथा सुरक्षा हेतु चौकीदार आदि की व्यवस्थाएं सामूहिक रहती हैं। इसीलिए अपार्टमेंट के रहवासियों को चाहिए कि वे उदार मना सहयोगी और सहिष्णुता से पड़ोसियों से आपसी तालमेल बनाकर रहें, क्योंकि हर सुख दुख एवं विपत्ति के समय आपके दरवाजे पर पड़ोसी ही सबसे पहले खड़ा होने वाला रहता है। ऐसे समय आपका सद्व्यवहार ही काम आता है। सामान्यतः पड़ोस में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई नौकरी पेशा तो कोई व्यापारी अथवा उद्यमी। सभी की प्राथमिकताएं और अपेक्षाएं अलग अलग रहती हैं। इनमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी तरह के लोग होते हैं, जिनके स्वभाव में भिन्नता भी रहती है। इन सभी लोगों के साथ सद्व्यवहार का स्वरूप भी कमोवेश बदल ही जाता है। जहां बच्चे पड़ोसियों से प्यार भरा व्यवहार चाहते हैं, तो बड़े और बुजुर्ग आदर भाव और सम्मान भरा व्यवहार चाहते हैं। यह कहावत भी सही है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटने को मिलेगा। कहने का

0: तात्पर्य, जैसा व्यवहार आपका दूसरे लोगों से होगा, वैसा ही व्यवहार आप उनसे पाएंगे। अब प्रश्न उठता है, सद्व्यवहार क्या होता है? इस पर भी विचार करना जरूरी है, जो सभी वर्ग और समुदाय पर लागू हो। सभी से संतुलित तथा मीठे बोल बोलना, किसी के भी प्रति विद्वेष अथवा नीचा दिखाने की भावना का न होना, पड़ोसियों के प्रति उचित सहयोग के लिए तत्पर रहना, किसी को भी अनुचित तथा अवैध एवं दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों से दूरी बनाए रखना, ये सभी सद्व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। आपका पड़ोसी आपका मित्र भी हो सकता है या फिर संबंधी, यदि नहीं तो मित्रवत अथवा संबंधी सदृश संबंध बनाए जा सकते हैं, जो कि औपचारिक संबंधों से ऊपर उठकर होते हैं, जिनमें गहराई रहती है। ऐसे संबंध उत्कृष्ट सद्व्यवहार की कोटि के माने जाते हैं। इस तरह के संबंधों में जरा सी चूक विग्रह का कारण बन सकती है, इस बात को सदैव ध्यान रखना आवश्यक है। छोटी छोटी सी भूल चूक की नज़रअंदाज करने में कोई कटुता की गुंजाइश नहीं रहती। इस तरह की बातें भी सद्व्यवहार की ही परिधि में आते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके सहकर्मी जो आपके अगल बगल या आमने सामने बैठकर कार्य करते हैं, वे भी एक तरह से पड़ोसी ही कहलाते हैं, क्योंकि उनके बीच में आपका 8 से 10 घंटे का समय बीतता है। इसीलिए उनसे भी सद्व्यवहार करना आवश्यक है। सहकर्मियों के साथ सद्व्यवहार आपके कार्यस्थल के वातावरण को शांतिमय बनाता है। सहकर्मियों के बीच में सद्व्यवहार बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि कार्यस्थल की वांछनीय गोपनीयता बनाए रखना, एक दूसरे सहकर्मी की शिकायत या चापलूसी करने से बचना, दूसरे के कामों में अनावश्यक दखल न देना, ये सभी बातें सहकर्मियों से सद्व्यवहार बनाए रखने में मददगार होती हैं और स्वयं तनाव मुक्त रह सकते हैं तथा अपना कार्य निष्पादन निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अब बात आती है जब पड़ोसी पारिवारिक या रिश्तेदार हो। ऐसे पड़ोसियों की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही होती हैं और संबंध भी संवेदनशील रहते हैं। ऐसे पड़ोसियों से सतर्क रहने की जरूरत है और उलझन भरे मामलों से दूरी बनाकर रहने में ही भलाई रहती है। किंतु रिश्तेदारी वाले पड़ोसियों से मान सम्मान वाले बर्ताव का निर्वहन भी जरूरी है। अब बात आती है जब पड़ोसी किसी और धर्म के अनुयायी हो। ऐसे पड़ोसियों से संबंध बेहतर रहें और उसके लिए चाहिए कि आप स्वयं अपने धर्म के आडंबर और हठ धर्मिता को स्थान न दें और पर धर्म अर्थात पड़ोसी के धर्म का सम्मान करें, साथ ही उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं पूरी करने दें और उनके धार्मिक उत्सवों पर अपनी शुभकामनाएं अवश्य दें, जिससे पड़ोसियों से धार्मिक सद्भाव सदा बना रहे। पड़ोसियों से कभी कभार पैसों का लेन देन भी करना पड़ता है, यह एक संवेदनशील मामला है, इसीलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसा पड़ोसी कैसा है, पैसों के लेन देन के मामले में पाक साफ है या नहीं। ऐसा पूरी तरह सोच विचार कर ही इस तरह के लेन देन को एक सीमा तक ही करना चाहिए। वैसे भी अपने आसपास के पड़ोसियों की पूरी जानकारी आपको रहना चाहिए कि आपका पड़ोसी कैसा है। यह जानकारी आप परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उनको इस बात की भनक नहीं लगना चाहिए कि आप उनके संबंध में पूरी जानकारी ले रहे हैं। पड़ोसी के विषय में जानकारी रहने पर आपको उससे कैसा बर्ताव करना है, इसमें मदद मिलेगी। आपके पड़ोसी सभी तरह के हो सकते हैं, किंतु सद्व्यवहार एक सामान्य सी भाषा है जिसमें संतुलित एवं मीठे बोल सम्मान की भाषा के साथ बोले जाएं। यदि आपने यह मूल मंत्र अपने जेहन में उतार लिया है तो पड़ोसी आपके सद्व्यवहार के कायल तो रहेंगे ही, आप उनसे भी उचित सम्मान और सद्व्यवहार पाएंगे। धन्यवाद।
1: पड़ोसी से सद्व्यवहार बनाए रहें।

रखें। इस विषय पर हमने सुनी विधि गौतम से यह वार्ता। और आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में टशन फिल्म का ये गीत।

0: उम्मीद करते हैं सखियों आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, और अब दीजिए इजाजत अपनी सखी रुबीना को। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
2: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता, भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है, है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।

0: Gen Z भी है, है also Gen old, नहीं पुरानी, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds, best of both the worlds.
1: Download Waves OTT app now and watch for free.
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब प्रस्तुत किया जा रहा है कार्यक्रम लोक संगीत. आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के भेंट है. आज इसमें आप सुनेंगे रेवाराम मेहरा के गाए लोकगीत. कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लोक भजन से.

रेवा राम मेहरा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये बारामासी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की भेंट था। आकाशवाणी का ये मध्य प्रदेश प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे जबलपुर केंद्र के योगदान से सुनुति महेश्वरी के स्वर में भजन। सबसे पहले सुनते हैं देशगान।

0: सुनीति महेश्वरी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे भजन। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरें, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज़ में उमराव जान फिल्म की ये गज़ल।

आशा भोसले की ही आवाज में आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है जीने की राह। इस गीत में आशा भोसले के साथ आप सुनेंगे उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाज़।

0: जीने की राह फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। यह अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौद्गल्यायन से संबंधित है। इन अवशेषों को आज भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली लाया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कल इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। केंद्र सरकार द्वारा सार्थक पीडीएस फेज

0: 2 के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि
1: कहने के लिए नहीं, कह देश के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे रहे। 140 करोड़ का देश हमारा आज दुनिया पर डिपेंड नहीं रह सकता, और वो खाद्यान्न के भंडार भरने का, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व हमारे किसान भाइयों और बहनों का है। और इसलिए मैं कहता हूं अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और हम उनको सहयोग करने वाले। अभी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने आपके सामने प्रेजेंटेशन किया, 2 दिन का ये कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और देश की जनता का सपना पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। दोनों शहरों में आज भी तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग और रोजगार विभाग द्वारा कल युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया। और गुना में दिव्यांगजन जागरूकता, संवेदनशीलता एवं समावेशी अभिषण योजना विषयक 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में PV सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में CBSE अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। CBSE कक्षा 12वीं की परीक्षा के

0: मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
1: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही, इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन आईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
3: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लो को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं। इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई

0: विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जनसंबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के दो व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
2: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्यौहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही मस्जिदों और ईदगाहों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई। राजधानी भोपाल की ऐतिहासिक ताजुल मस्जिद में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। इंदौर से एक खूबसूरत तस्वीर भी सामने आई। यहां 50 साल पुरानी परंपरा के मुताबिक एक हिंदू परिवार ने शहर काजी को फूलों का हार पहनाकर बग्घी में ईदगाह तक पहुंचाया। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कुर्बानी केवल तय जगहों पर ही की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
3: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखोदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्मीर नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहां हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
4: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेख

0: की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनके जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, आपके पत्रों द्वारा भेजी गई फरमाइश को पूरी करने का वक्त आ गया है और इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं मृत्युदंड फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत आनंद मिलिंद का है। इस गीत को सुनना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश। आप हैं दिल्ली से हमारे श्रोता कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ये हमें फरमाइश मिली है ओम प्रकाश नेमा, श्रीमती किरण नेमा, आकाश, विकास, नंदनी, शिवांश और समस्त नेवा परिवार की। और साथ ही साथ इस गीत की पसंद में हम शामिल कर रहे हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा का ये पत्र। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं मृत्युदंड फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अमृत फिल्म से मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और इस गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ये हमारे श्रोता है अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता, सिद्धांत, प्रिंस एकांश सुखी और विश्वकर्मा नगर नागपुर।

से शैलेश गवाड़कर, वैशाली, श्वेता, सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर। साथ ही साथ इसकी फरमाइश हमें मिली है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा, और इसी गीत को पसंद किया है। ग्राम धुरा बांधा पाठा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, डेविड साहू, रुस्तम साहू, नेतराम साहू और भूपेंद्र साहू ने।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंतर्गत, उसके लिए हमें फरमाइश मिली है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साविर राही महराज जहां, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता प्रिंस सिद्धांत, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश सुमित और ध्वनि, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा, और इसी गीत को पसंद किया है धमनी छत्तीसगढ़ से समयलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल गोविंद, ममता और मुन्नी धीवर ने। आप सभी सुनना चाहते हैं अवतार फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में, जिसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं प्यासा सावन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। इसी गीत को पसंद किया है प्रमिलागंज आलोट जिला मध्य प्रदेश, रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। साथ ही साथ ये खत हमें मिला है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। और इसी गीत को पसंद किया है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुजदाबा खान और राउफ भाई, शाहिद भाई। इन सभी की पसंद पर प्यासा सावन फिल्म का गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में प्यासा सावन फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। ये अवशेष भगवान बुद्ध के दो शिष्यों सारिपुत्र और मौद गल्यायन से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एफआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडिया व्यू पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडियम वे पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की भेंट है। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 5:33 पर, 6:30 पर, 8:15 पर और रात 9:30 पर। शाम 6 बजे सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम और 7:21 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 10 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन। राग होगा गोरख कल्याण। ये थी जानकारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स, DTH के ऑडियो चैनल

और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:30 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए, इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। श्रोताओं, आपका स्वागत है। और कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे रेवा राम मेहरा के गाए लोक भजन बारामासी और दुजनिया। सबसे पहले सुनते हैं ये लोक भजन।

रेवाराम मेहरा के गाए इस लोक भजन के साथ ही अब आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए सुनीति माहेश्वरी की आवाज़ में कुछ भजन।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप विनीता माहेश्वरी की गाई कुछ भजन और देशगान सुन रहे थे। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। सबसे पहले सुनते हैं सांवरिया फिल्म का गीत शान की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और संगीत दिया है मोंटी ने।

ताल फिल्म का गीत आइए अब सुनते हैं, अनुराधा श्रीराम सुजाता सोनू निगम और एआर रहमान की आवाज़ों में। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और तर्ज एआर रहमान की है।

AR रहमान और चिन्मयी की आवाज़ों में आइए अब सुनते हैं गुलजार के लिखे बोल। गुरु फिल्म के लिए इसे सुरों से सजाया है AR रहमान ने।

तुची रैना और रेखा भारद्वाज की आवाज़ में अब आपको सुनवाते हैं ये जवानी है दीवानी फिल्म का गीत। प्रीतम के संगीत निर्देशन में इस गीत की रचना की है अमिताभ भट्टाचार्य ने।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में अभी आपने अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा ये गीत सुना, जिसे गाया था तुची राय और रेखा भारद्वाज।

0: राज ने। और इस गीत को हमने लिया था ये जवानी है दीवानी से। इसी के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त करते हैं। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आज राजभवन में राज्यपाल की अनुपस्थिति में उनके सचिव को अपना इस्तीफा सौंपा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारों, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार किया। मशहूर शायर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। शायर जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी साझा की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों को नियुक्त करेगा। इस पहल के माध्यम से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की तैयारियों को बेहतर बनाया जा सके। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काका मिघारा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: DTH के ऑडियो चैनल पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए सुनिए नाटक डाकू बनते बनते। लेखक आशा शुक्ला, प्रस्तुतकर्ता जगदीश अधिकारी।
2: प्रस्तुत है नाटक डाकू बनते बनते। लेखिका आशा शुक्ला, प्रस्तुतकर्ता जगदीश अधिकारी।

0: हेलो, यस, हाँ जी, आपको वर्मा सर से बात करनी है। जी, क्या मैं जान सकती हूँ किस बारे में? एक्चुअली वो मीटिंग में बिजी हैं, आप 5 बजे फ़ोन करके पता कर लें। हाँ जी, ओके, थैंक यू। राजू, राजू, अंदर कॉफ़ी सर्व कर दो और लीली को भी बुला लो, और देखो जरा ढंग से काम करना। हेलो, या मिस्टर वर्माज ऑफिस? यस सर, बट सर ही इज़ वेरी बिजी टुडे। जी सर, आप कल आफ्टरनून में फ़ोन करके एंड देन यू कैन सी इफ ही इज़ फ्री देन।
1: जी माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी।
0: हाँ जी, फरमाइए।
1: जी मुझे आपके वर्मा साहब से मिलना है।
0: आपका अपॉइंटमेंट है क्या? आपका शुभ नाम?
1: नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं है, पर बेटा बहुत जरूरी काम है।
0: आई एम वेरी सॉरी सर, वर्मा सर आजकल बहुत बिजी हैं,
1: जी
0: बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिल पाते। मैं आपको परसों दोपहर 2:30 बजे का टाइम दे सकती हूँ, 10 मिनट के लिए। लेकिन मुझे पूछना पड़ेगा, आपने क्या नाम बताया था अपना?
1: जी

0: अच्छा सर, आप तब तक उधर बैठ जाइए।
1: तो ऐसा करो बेटी, अपने साहब से कहो सरजू के चाचा बनवारी लाल आए हैं।
0: ओके, आप बैठिए, मैं साहब से पता करती हूँ।
1: अच्छा।
0: मिस्टर बनवारी लाल जी, अब आप अंदर जा सकते हैं। अरे अरे सर, आप अपने चैम्बर से बाहर।
2: अरे बनवारी चाचा, आप चरण चाचा।
1: खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो।
2: कैसे आना हुआ चाचा? चलिए चलिए, आइए अंदर चलिए। एंड मालती,
0: यस सर।
2: आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब। नो फोन कॉल्स, कॉफी शॉफी भिजवाना।
0: ओके सर।
2: चाचा बैठिए ना, ये है चाचा मेरा चैम्बर, आप आराम से बैठिए ना। हाँ हाँ, पैर ऊपर कर लीजिए प्लीज। हाँ, और चाचा कैसे आना हुआ? इस नालायक की याद कैसे आ गई घर में?
1: अब कुछ मत बोल बेटा, मैं तो वैसे ही बहुत शर्मिंदा हूं।
2: अरे चाचा
1: तू इतना आदर मान देकर और शर्मिंदा मत कर मुझे।
2: कोई बात नहीं चाचा।
1: अरे वो सब समय का फेर था बेटा। तेरा काम धंधा, ऑफिस, ये ठाट बाट देख के अभी संभल नहीं पाया हूं मैं। पर बात ये है कि मैं एक काम से आया था तेरे पास, लेकिन तू तो बहुत बिजी रहता है बेटा। वो तेरी सेक्रेटरी बता रही थी।
2: हाँ चाचा, बिजी तो रहता ही हूं। वो क्या है बनवारी चाचा, हम अपने गारमेंट्स एक्सपोर्ट करने लगे हैं।
1: अच्छा
2: इस मंदी के वक्त में भी हमारे पास कई देशों के काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं।
1: अच्छा
2: सो बिजी तो हम सब रहते ही हैं।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा
2: खैर उसे छोड़िए, आप बताइए ना कैसे आना हुआ।
1: अब कैसे कहूं बेटा, गोपाल के बारे में बात करने आया था तुझसे।
2: हाँ
1: उसके लायक कोई काम वाम हो तो बता जरा।
2: अरे चाचा कैसी बात करते हैं, जरूर है, मेरे पास तो नौजवानों के लिए काम ही काम है।
1: बहुत अच्छा,
2: चाचा गोपाल की क्वालिफिकेशंस वगैरह?
1: ये लो बेटा, ये लो बेटा, सब लिखवा कर लाया हूं। ये प्रार्थना पत्र भी है। गुड सेकंड क्लास से BCA किया है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के चक्कर काट काट कर बौखला गया है। नौकरी के लिए मारा मारा फिरता है। जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि नौकरियां कम पड़ गई हैं। सरकारी नौकरी मिल जाती तो।
2: सरकारी नौकरी ही क्यों? अरे मैं तो नहीं कर रहा सरकारी नौकरी, पर कितना संतुष्ट हूं ऊपर वाले की दुआ से।
1: अब वो तो मैं देख ही रहा हूं बेटा, मैं ये प्रार्थना पत्र छोड़े जा रहा हूं। कोई भी काम दिलवा दोगे तो बड़ा पुण्य मिलेगा बेटा तुम्हें। अब जवान बेटे का घर बैठे रोटियां तोड़ना ना मुझे अच्छा लगता है ना उसे।
2: अरे अरे
1: हाँ, ये प्रार्थना पत्र रख लो, मैं अब चलूं। तुम बहुत बिजी हो ना।
2: अरे चाचा, ऐसे कैसे चले जाएंगे, खाना आ रहा है।
1: अरे बेटा, मैं खाना खा लूंगा ना, क्यों तकलीफ कर रहे हो।
2: आपके बहाने मैं भी कुछ खा लूंगा, फिर आपको गाड़ी से छुड़वा दूंगा। ये लो खाना भी आ ही गया।
1: अरे अरे, अब मैं तो मना नहीं कर सकता, टाल नहीं सकता। अरे वाह वाह वाह वाह, बेटा एक बात पूछनी थी, अगर तू बुरा ना माने तो।
2: अरे बुरा कहेगा, पूछिए चाचा क्या पूछना है।
1: राकेश बेटा, मैं जानना चाह रहा था कि तुम्हारी जिंदगी में ये काया पलट कैसे हुई। अरे मैंने तो सुना था कि तुम भी मोहल्ले के कुछ आवारा टाइप के लड़कों की संगत में पड़ गए थे।
2: सिर्फ सुना था नहीं चाचा, आप भी तो हमें आवारा ही समझते थे ना। लेकिन देखिए ना चाचा, आज वही राकेश आपके सामने है।
1: लेकिन बेटा ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे हुआ ये चमत्कार।
2: जानना चाहते हैं ना आप?
1: हाँ, बताओ।
2: चाचा आप मेरे दोस्तों को तो जानते ही थे ना, हम चारों बचपन से साथ पढ़े लिखे, खेले कूदे और बड़े हुए। लेकिन बड़े होते ही जैसे सब कुछ सब बदल गया। हम चारों की तलाश थी नौकरी की,
1: हाँ,
2: कैसी भी नौकरी। हमारे मिलने का अड्डा भी आपको याद ही होगा,
1: हाँ
2: वो

0: chato.
1: हंसो यार हंसो। अरे खूब हंसो यहाँ पर। घर जाकर तो फिर वही पड़े रहो मुंह छुपाकर और ताने सुनो बाप के।
2: हाँ यार, इन तानों से तो मैं भी तंग आ चुका हूँ। अरे औरों की तो छोड़ो, अब तो मेरी छोटी बहन भी जली कटी सुनाने लगी है।
3: अरे कौन? वो ललिता पवार? अरे उसी ने तो मेरे घर में भी तिली लगाई है। मेरी माँ से कह रही थी, अम्मा अम्मा सारे निठल्ले चाय के खोके पे बैठे रहते सारा सारा दिन।
4: तो यहाँ कम से कम चैन से तो बैठ सकते हैं, घर में तो एक मिनट भी चैन नहीं। दिन भर आप भूख हंसते रहते हैं, दवा दारू का कोई जुगाड़ नहीं। मन करता है आग लगा दूं अपनी डिग्रियों में। शाम को घर लौटता हूं तो अम्मी की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं पड़ती।
2: हाँ यार, लेकिन करें भी तो क्या करें।
1: करें क्या? अरे वही जो रोज करते हैं। अरे यानी चाय पिए।
3: यही ठीक है।
1: ए रामू, ओ यार मेरे रामू, चार चाय तो मार कड़क वाली।
5: चाय नहीं मिलेगी अब तुम लोगों को।
3: क्यों भाई, क्यों नहीं मिलेगी चाय?
5: इसलिए कि तुम लोगों के खाते की रकम सुबह से शाम तक बढ़ती ही जाती है, चुकाते तो कुछ नहीं हो।
4: ओए ये भी कोई बात हुई? हम चाय पियेंगे तो रकम तो चढ़ेगी ही ना। हाँ, हम में से किसी की भी नौकरी लग गई तो सबसे पहले तेरा ही हिसाब करेंगे। क्या समझा उस्ताद?
5: हम तो रफीक भैया बस इतना समझते हैं कि अब हम और उधार नहीं कर सकते। क्यों हम यहाँ बैठने से मना नहीं करते आप लोगों को, लेकिन चाय।
2: अरे रामू जी, रामनाथ भाई, एक बात तुम्हारे इस भेजे में क्यों नहीं घुसती कि जब हम लोग ऊंची ऊंची कुर्सियों वाले अफसर बन जाएंगे ना, तब तुम ही घमंड से कहोगे, ये राकेश जी हमारे खोखे पर आया करते थे, हमारी चाय उन्हें बहुत पसंद थी।
5: हमें ये सब कहने का कोई शौक नहीं है, बस अब उधारी की चाय बंद सो बंद।
1: ओ मेरे बाप, अरे अब मान भी चाय यार, वो चाय बना नहीं तो करूं गुदगुदी।
5: ना ना ना ना भैया ना, गुदगुदी से हम बहुत डराते हैं।
3: ये हुई ना बात।
4: चाय तो आ जाएगी दोस्तों, लेकिन वो कब आएगी जिसका मुद्दतों से इंतजार है।
3: राकेश, ये रफीक किस छोकरी की बात कर रहा है रे?
4: अरे मैं छोकरी की बात नहीं, नौकरी की बात कर रहा हूँ।
1: मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? चली आएगी तू, आएगी तू, चली आएगी।
5: लो आ गई सपनों की रानी, गरम गरम चाय।
2: वाह वाह वाह, और आज का हिसाब भाई रफीक के खाते में।
4: हाँ हाँ, अरे जब अभी चुकाना ही नहीं है तो मेरे ही खाते में लिख लो। हाँ। क्या फर्क पड़ता है?
1: अरे प्यारों, चाय भी खत्म हो जाएगी, लेकिन हमारी प्रॉब्लम कब खत्म होगी यार?
3: समझ में नहीं आता क्या करें, कैसे कमाने लगे चार पैसे।
1: लॉटरी का टिकट खरीदें, क्या पता किस्मत ही चमक जाए।
2: ऐसी चमकदार होती किस्मत तो अब तक यूं जंग ना खा रही होती।
4: तो क्या करें, जूते पॉलिश करें स्टेशन पर बैठ के, जला दे डिग्रियों को।
1: नहीं यार, सीरियसली सब मिलकर कुछ सॉलिड सोचो। सॉलिड
3: सोच लिया, बिल्कुल सोच लिया।
1: क्या
4: क्या,
1: क्या सोच लिया?
3: मैं डाके डालूंगा।
1: क्या
4: क्या डाके?
1: डाके?
4: अरे नाम जगजीत है ना, सो सोच रहा है कि सब कुछ जीत लेगा, जग जीत लेगा।
2: पागल हो गया है? खोपड़ी खिसक गई क्या तेरी?
1: अरे उस बेचारे ने मजाक में एक बात कही यार, और तुम लोग उसके कपड़े फाड़ने लगे।
3: मजाक नहीं, आई एम सीरियस, मैं डाकू ही बनूंगा। ना किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत और ना पैसा डूबने का डर यार।
2: क्या? और वो पुलिस जेल?
3: कहाँ की पुलिस, उसका भी हिसाब रखूंगा ना, तो फिर जेल कैसे होगी?
1: सोच ले जीते, फिर से सोच ले।
3: सोच लिया।

0: पूरा सोच लिया, अब तो डाकू ही बनूंगा। अरे मैं तो कहता हूं तुम लोग भी मेरे प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर लो, एक और एक 11 होते हैं।
1: लेकिन हम डाके डालेंगे कैसे?
0: अरे यार कुछ नहीं करना है, बस दिन में 11 बजे के बाद किसी भी घर की घंटी बजा दो। ये वो वक्त होता है जब हस्बैंड ऑफिस में होता है और स्कूल में बच्चे, और घर में होती है सिर्फ एक अकेली औरत, उसे तो चाकू दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक धमकी में मौल अपनी मुट्ठी में।
2: यार जीते, तेरा आइडिया तो ग्रेट है प्यारे। चल मैं तेरे साथ हूँ।
0: वाह
2: क्यों हो गए ना, एक और एक 11।
0: मार ताली, ये मार जोर से, ये बात ये हुई ना मर्द वाली बात। हाँ भाई, अब आप लोगों ने सोचा कुछ? आप बनेंगे डाकू?
3: यार वो मैं सोचूंगा, कुछ वक्त तो दो यार।
1: मैं भी सोच कर बताऊंगा।
0: ठीक है तो फिर शाम को मिलते हैं यहीं।
1: हाँ यहीं, ठीक 6 बजे।
2: ठीक है चलो।

0: आइए रफीक मियाँ और राकेश सर, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। टैंगो तो कब का आ चुका है?
1: हैं? पर है कहाँ टैंगो?
0: वो शांति नगर का मुआयना करने गया है, कुछ घरों के बारे में पता लगा कर आएगा। अरे भाई, हम निठल्ले थोड़े ही हैं, कल से काम पर जाना है।
2: ओ जीते जीते, चाय पिला चाय, तेरा 90% काम करके आया हूँ। हो, आप लोग भी आ गए, आइए आइए, वेलकम। तो मेरी जान, क्या सोचा तुम लोगों ने?
1: अरे यार, क्या बताऊँ, वो वैसे तो मैं तैयार हूँ, पर थोड़ा सा डर भी लग रहा है यार, पहले कभी किया नहीं ना ऐसा काम।
2: नहीं किया? और ये जो करता है तू, रोड इंस्पेक्टरी, ये की थी पहले कभी तूने? बात करता है,
0: ऐसे ताने सुने थे कभी तूने? अरे, डिग्रियां जलाने या आत्महत्या करने की इच्छा हुई थी कभी तेरी?
2: जीते, मैं तो साथ हूं ना तेरे, मैंने भी फुल सोच लिया है, यही करना है अब। पर ये तो पता करना कैसे है?
0: ऐसा करो, टूटी हवेली में चलते हैं, वहीं सब प्लान फाइनल करेंगे।
2: ठीक है।

0: सुनो तुम लोग
1: जी।
0: शांति नगर में घर है।
1: अच्छा।
0: नया शादीशुदा जोड़ा है।
2: अच्छा।
0: यानी खूब माल होगा।
2: क्या बात है।
0: समझ गए। मियाँ जो है वो ऑफिस चला जाता है।
2: अच्छा।
0: 10:30 के आसपास।
2: अच्छा।
0: बस 11 बजे अपन धावा मारेंगे।
2: बिल्कुल।
0: सुनो संभल के। कौन जाएगा अंदर? दो लोग बाहर रहेंगे और दो लोग अंदर जाएंगे।
2: मैं मेरे को क्या करना?
0: रफीक। हाँ रफीक और राकेश तुम दोनों अंदर जाना।
1: ठीक है।
0: और मैं और जीते तुम मेरे साथ रहना बाहर।
1: ठीक है।
0: और सुनो राकेश और रफीक।
2: हाँ।
0: सेंटिमेंटल नहीं होने का है।
2: बिल्कुल।
0: जितना माल हो सके लेने का है उनसे।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: शाबाश। तुम मिलते हैं कल 10:30 बजे शांति नगर पे। थावा मारेंगे।
2: ठीक
1: ठीक बॉस।
0: चलो चलो।

0: हेलो भैया जी, चरण स्पर्श जी। हम ठीक है, आप बताइए, गांव में सब ठीक तो है ना जी? आप कल आ रहे हैं? वो भैया जी, नहीं नहीं जी, मैं पहुंच जाऊंगा बस अड्डे। जी जी प्रणाम। सुन्नी, कल भैया आ रहे हैं। अरे तुम्हारे नहीं, मेरे भैया।
1: हाय राम, अब क्या करें?
0: यही तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करें।
1: फिर वही बातें होंगी।

0: पापा ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। देवेश, अब कि तुम साफ साफ कह देना कि जो कुछ वो दे सकते थे दे दिया। ये रोज रोज की धमकियां, रोज रोज की मांग।
1: भैया भी पापा की ट्रू कॉपी हैं, फिर हंगामा करेंगे आकर।
0: पर तुम डरना नहीं, साफ साफ बोल देना। भैया जी तो बिल्कुल लुटेरों जैसी भाषा बोलते हैं।
1: डाकू हैं सबके सब, ये नहीं देखते कि इतनी पढ़ी लिखी बहू घर में आई है, इतना कमाती है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है क्या?
0: हाँ, हम तो जैसे मुफ्त में ही पढ़ गए हों। इनका मुंह तो रोज रोज खुलता ही जाता है। सच में डाकू ही है सब।
1: अच्छा छोड़ो, मेरा लंच पैक कर दो, वैसे ही बहुत देर हो गई आज।
0: जाओगे? मैंने सोचा नहीं जाओगे। मत जाओ ना प्लीज।
1: ना जाऊं? हाय नहीं स्वीट हार्ट, जाना तो पड़ेगा ही। मैं तो आधा घंटा लेट आने का बोल के आया था, 11 तो यहीं बच गए।
0: तुम्हारे बॉस कुछ कहते नहीं रोज लेट आने पर?
1: अरे उन्हें भी पता है कि मेरी नई नई शादी हुई है, और नए नए शादीशुदा लोग सुबह जल्दी उठ नहीं पाते। हाँ
0: हटो, बेशरम कहीं के।
1: बेशर्म कहीं के। अच्छा हाय इस बेशर्म की मलिका, अब लंच पैक कर दो तो ये बंदा ऑफिस जाए।
0: लाती हूँ हुजूर, आप तब तक टाई वाई तो ठीक कर लो।
1: हाँ ठीक है, वही करता हूँ। कमिंग। कहिए आप लोग, मैंने पहचाना नहीं।
2: पहचानोगे कैसे? कभी देखा हो तो पहचानोगे ना।
3: सरदार अंदर चलो।
2: हाँ चलो।
1: अंदर कहाँ, ऐसे कैसे
4: है? कौन आया है जी?
1: वो ये
2: मैडम, हम डाकू हैं, डाकू।
4: लेकिन जी इतनी जल्दी कैसे? अभी तो फोन आया था। हाय राम, कि कल आएंगे।
2: फोन? किसका फोन आया था?
4: जी यही कि आप आ रहे हैं।
1: ओ सुनीता सुनीता, तुम थोड़ी देर चुप रहो।
3: उस्ताद कोई भयानक डाकू ही आ रहा होगा। हाँ। फोन कर करे आ रहा है आखिर, मुझे तो खतरा लग रहा है, निकलो यहाँ से।
2: निकले? कौन सा डाकू आ रहा है फोन करके?
1: नहीं नहीं डाकू नहीं, मेरे बड़े भैया आ रहे हैं। डाकू नहीं,
4: भैया आ रहे हैं। हाय राम, तो क्या ये भैया नहीं है?
1: तुम भैया को पहचानती नहीं हो ना, ये भैया नहीं है, ये सचमुच के डाकू हैं।
4: डाकू है सचमुच के? ओह थैंक गॉड। हाय राम, मैं तो समझी जेठ जी आ गए हैं।
3: ए छोकरे, सब गहने उतार दे।
2: हाँ।
3: और घर में जो माल है सब ले आ।
2: हाँ।
4: गहने? डाकू जी ये गहने तो नकली हैं, असली तो सासू जी ने रख लिए।
3: बकवास नहीं करने का, क्या निकाल सब माल।
2: हाँ निकाल।
1: रुको रुको, मैं निकालता हूँ माल, अभी पुलिस को बुलाता हूँ, तब पता चलेगा तुम लोगों को।
2: क्या पुलिस? अरे पुलिस बुलाओ या CID, माल तो तुम्हें निकालना ही पड़ेगा, वरना
1: वरना वरना क्या कर लोगे, क्या कर लोगे?
2: वरना वरना यहीं बैठकर उस डाकू और तुम्हारे भाई का इंतजार करेंगे और उसे यहाँ की सब बातें बता देंगे।
1: देखो देखो देखो, तुम ऐसा नहीं करोगे। हाँ
4: डाकू जी,
2: डाकू जी
4: मेरा मतलब है डाकू भैया, आप हमारा जो सामान ले जाना चाहो ले जाओ, लेकिन जेठ जी को कुछ मत बताना प्लीज।
2: जेठ जी को सब मत बताना? मेरी बात समझ में नहीं आती कि तुम लोग अपने भाई से इतना डर क्यों रहे हो।
4: डाकू भैया, जेठ जी बहुत खतरनाक आदमी है।
2: क्या?
4: हाँ, मैंने तो उनका चिल्लाना सुना है, ऐसा

0: बुरी तरह डांटते हैं कि हाय।
1: लेकिन डांटते क्यों हैं?
2: सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने अपनी मर्जी से शादी की है।
1: ओह।
2: और भैया के हिसाब से मेरी ससुराल वालों ने किसी को ढंग का कुछ नहीं दिया।
1: ढंग का कुछ नहीं दिया? मसलन?
2: मसलन 1.5 किलो सोना, LCD, बड़ी गाड़ी, बहनों को सोने के सेट इत्यादि इत्यादि।
1: अच्छा अच्छा, तो ये दहेज का केस है?
0: हाँ डाकू भैया। हाय राम, हम तो तंग आ गए महीने भर में ही।
1: ठीक है ठीक है, हम चलते हैं रफीक।
2: लेकिन लेकिन भाई साहब, आप तो डाका डालने आए थे, उसका क्या हुआ?
1: डाका? हाँ, दो बातें। एक तो तुम्हारे यहाँ मुझसे भी बड़ा डाकू आने वाला है, दूसरी बात तुम्हारी बीवी ने हमें भैया कह दिया, तो डाका तो हम डाल ही नहीं सकते तुम्हारे यहाँ।
0: डाकू भैया,
1: क्या है?
0: एक बात पूछो, आप बुरा तो नहीं मानोगे?
1: अरे पूछो ना, पूछो जल्दी।
0: आप, मेरा मतलब है, आप डाकू तो लगते ही नहीं, भले घर के लगते हैं, फिर ये
3: फिर हम डाकू कैसे बन गए, यही ना?
0: जी जी जी हाँ। हाय राम, मैं यही तो पूछना चाहती थी।
3: बेकारी, हम कई दोस्त बेरोजगार हैं, बस सोचा यही धंधा किया जाए। आज बोहनी थी।
2: लेकिन आप लोग तो पढ़े लिखे लगते हैं।
1: अरे और क्या यार, हम सब पढ़े लिखे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ, ऑल फ्रस्ट्रेटेड, नो नौकरी एट ऑल।
2: नौकरी नहीं मिलती तो कोई अपना कारोबार क्यों नहीं कर लेते?
1: कारोबार
3: मियां, कारोबार के लिए पैसे कहां से लाए?
2: मैं दूंगा, मेरा मतलब हमारा बैंक देगा।
1: क्या? तुम्हारा बैंक?
2: हाँ हाँ।
1: वो कैसे?
2: बैंकों के पास बेरोजगार युवकों के लिए कई तरह की योजनाएं होती हैं।
1: ओह, वो तो सब हमें भी पता है, लेकिन वहां तो दो ही चीजों से काम चलता है, मोटी सिफारिश या मोटा पैसा।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आप जैसे युवाओं की गलतफहमी है। क्या कभी किसी बैंक में आपने खुद इस बारे में पता किया है?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं पता तो नहीं किया, पर सुना तो यही है बैंकों के बारे में।
2: सुनी सुनाई अफवाह भूलकर अब मेरी सुनिए। देखिए, बैंक से पैसा लेकर कोई भी व्यक्ति अपना काम धंधा शुरू कर सकता है, बैंक की कुछ शर्तें पूरी करना होती है।
3: तो हमें जरा डिटेल में बताइए ना, ताकि हम भी कुछ काम शुरू कर सकें।
1: हाँ।
3: चार पैसे तो कमाएं।
1: हाँ
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं। ऐसा कीजिए, आप लोग मेरे साथ ही चलिए, मैं दरअसल बैंक ही जा रहा था। बैंक में आपको मैं अपने मैनेजर से मिलवाऊंगा, वो आपको तमाम स्कीमों के बारे में बताएंगे, आप अपनी पसंद की स्कीम चुन लीजिएगा।
1: अरे देवेश भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, तो चलिए हम चले आपके साथ।
0: डाकू भैया, हाय राम, एक बात मुझे भी कहनी है।
3: हाँ हाँ कहिए।
0: डाकू भैया, आप कल जरूर आइएगा हमारे घर, मेरे जेठ जी से मिलेंगे ना। हाय राम, तब आपको पता चलेगा डाकू कैसे होते हैं।
1: जरूर आएंगे दीदी, अरे हमें तो खुद उनसे बात करनी है, और हाँ उसके बाद वो कभी आपको दहेज के लिए परेशान नहीं करेंगे।
3: हाँ पापा, ये राकेश उस्ताद एंटी डाउरी पर इतना अच्छा भाषण देते हैं कि कॉलेज में बहुत इनाम जीते हैं इनने।
0: ठीक है डाकू भैया, आई मीन भैया, कल मिलेंगे ना?
1: 100%। तो चले।

0: यानी कुल मिला के किस्सा को होता ये कि मैं और जीते बाहर खड़े इंतजार करते रहे और अंदर ये किस्सा हो गया, यानी चले थे बनने डाकू और बन गए
1: डाकू भैया।
2: यारे कुछ बात मत करना डाकू की, हम बैंक की कई स्कीमों के बारे में समझ कर आए हैं। अब थोड़ा सीरियसली कोई बढ़िया काम के बारे में सोचो।
0: बिल्कुल
1: उस्ताद, चलो हमें भी बैंक ले चलो ना। आज
2: आज नहीं, आज तो मुझे उस दहेज के लालची डाकू की खबर लेने दिवेश जी के घर जाना है।
0: बिल्कुल, हम लोग भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे, लेकिन घर के अंदर, बाहर नहीं खड़े रहेंगे। हाँ
3: लेकिन डाका डालने को नहीं।
1: बिल्कुल ठीक डाकू भैया।

0: अभी आप सुन रहे थे आशा शुक्ला का लिखा नाटक डाकू बनते बनते। भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। टेंगा अशोक बुलानी, देवेश उदय शाहणी, राकेश अरशद इकबाल, रफीक डॉक्टर दिलीप बेहरे, वनवारी डॉक्टर अरविंद सोरी, जगजीत कमल जैन, रामू प्रेम शरण खेमरिया, पीए प्रिया चंदनानी और सुनीता थी प्रमिला दिवाकर। इस नाटक के प्रस्तुतकर्ता थे जगदीश अधिकारी।
1: अभी आप सुन रहे थे नाटक डाकू बनते बनते। लेखक आशा शुक्ला, प्रस्तुतकर्ता जगदीश अधिकारी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए अब सुनिए संग्रहालय से। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। आज सुनते हैं इसकी दूसरी कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

0: वादा, ये ले दवा, हकीम जी से लाया हूँ, खा ले, आराम आ जाएगा।
1: अब बर्दाश्त नहीं होता, नहीं बचूंगी शायद।
0: अरे ऐसा क्यों कहती हो? हकीम जी कहते थे दवा खाने और आराम करने से तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी।
1: आराम कहाँ से होगा, काम कौन करेगा?
0: तुम नाहक ही परेशान होती हो।
1: मैं ना परेशान हूं तो कौन होगा? और घर में है ही कौन? तुम तो काम पर चले जाते हो, दिन भर घर तो मुझे ही संभालना पड़ता है।
0: फाता, घर तो संभालने से ही संभलता है, तुम ठीक हो जाओ, समय पर दवा ले लेना, जिससे दवा का असर जल्द हो।
1: तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो मेरी?
0: अरे मैं ना करूं तो कौन है जो तुम्हारी फिक्र करे?
1: सारे होती तो कम से कम दो रोटियां तो सेक कर खिलाती तुम्हें।
0: अरे बेगम, सारे अपने घर में खुश है, फिर उसे क्यों तकलीफ दें? और फिर बेटी अपने घर में रहे, ये कौन सी अच्छी बात है?
1: बात अच्छे बुरे की नहीं है, समय की है। घर में 2 दिन से चूल्हा जला नहीं और तुम भी कुछ खाए नहीं हो। सारे होती तो।
0: अरे बाबा, सारे हमेशा यहाँ थोड़े ही रहेगी।
1: बीमारी में भी देखने नहीं आएगी क्या? इतनी बदल गई मेरी बेटी कि माँ को देखने की भी फुर्सत नहीं उसके पास।
0: अरे ऐसा क्यों कहती हो फाता?
1: अगर ऐसा नहीं होता तो शादी के इतने दिनों में मिलने क्यों नहीं आई?
0: शादी के बाद बेटी का घर ससुराल ही होता है, और सारे कहीं रहे, खुश रहे, और क्या चाहिए हमें?
1: तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या?
0: जाऊंगा, बाजार भी जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है।
1: एक बात कहूं?
0: हाँ कहो, क्या बात है?
1: सारे को बुला लेते, आखिर बेटी है हमारी, उसका चेहरा देख लेती तो शायद मन कुछ हल्का हो जाता।
0: बाजार जा ही रहा हूँ, कोई उधर मिल गया तो करीम भाई को संदेशा भिजवा दूंगा कि सारे को कुछ दिनों के लिए भेज दें।
1: करीम भाई कोई दूर तो रहते नहीं, तुम ही चले जाना।
0: देखूंगा, समय बचा तो जाऊंगा।
1: अरे नहीं जाओगे तो सारे को वे लोग नहीं आने देंगे।
0: करीम भाई कोई गैर तो नहीं कि सारे को नहीं आने देंगे? अरे तुम नाहक ही परेशान रहती हो।
1: मैं बेकार की परेशान नहीं होती। करीम भाई सारे को नहीं आने देंगे, कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे।
0: अरे उन्हें बहाना बनाने की क्या जरूरत है? सारे हमारी बेटी है, क्यों रोकेंगे उसे?
1: तुम जो कहो, मैं जानती नहीं क्या कि शादी के इतने दिनों तक ना आने दिया उसे, तो अब क्यों आने देंगे?
0: अरे बेगम, तुम तो परेशान हो जाती हो। अरे परेशान ना हो, आराम करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की दूसरी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि सारे का निकाह अपने मामा करीम के लड़के मुश्ताक से हो जाता है। सारे अपने ससुराल में खुश है। उधर सारे की अम्मी बीमार हैं और उसे याद कर रही हैं। अब आगे।

0: मैं संदेशा भिजवा दूंगा।
1: ठीक है, जैसा बेहतर समझो।
0: अच्छा, मैं जाता हूँ बाजार।

0: अरे करीम भाई, चलो अच्छा हुआ यहाँ बाजार में ही मुलाकात हो गई। सलाम करीम भाई।
1: अरे अरे हसन भाई, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, सुनाइए कैसे हैं?
0: अल्लाह का रहमो करम है, सब ठीक है।
1: लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं।
0: करीम भाई, परेशानी तो जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है।
1: ओहो, अरे भाई कुछ बताएंगे भी, आखिर बात क्या है?
0: अब क्या बताऊं, फाता बीमार है 2 दिनों से, बुखार उतर ही नहीं रहा।
1: अरे अरे, ओहो, तो भाई किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं?
0: दवा लाकर दी है, हकीम जी कह रहे थे दवा जल्द असर करेगी।
1: अरे भाई, मौसम का भी असर होता है भाई, अल्लाह से दुआ करूंगा फाता बहन जल्द ठीक हो।
0: करीम भाई, वादा की इच्छा है
1: क्या
0: कि सारे कुछ दिन उसके पास आकर रहे, जिससे उसका मन कुछ हल्का हो जाए।
1: अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे भाई, मैं आज ही मुश्ताक के साथ सारे को भेज दूंगा।
0: बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
1: ओहो, कैसी बात कर रहे हैं हसन भाई। अरे भाई, सारे हमारी बहू है तो आपकी बेटी पहले है, और भाई उस पर आप लोगों का भी हक है।
0: लेकिन सारे के आने से आप लोगों को भी तकलीफ होगी।
1: अरे नहीं, ऐसी क्या बात है, भला सारे अपने घर से अपने घर ही तो जा रही है, और शादी के बाद वहां जाना भी नहीं हुआ। अब फाता बहन की इच्छा हो रही है, और भाई तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में सारे का अपनी अम्मी के पास होना तो जरूरी भी है। अच्छा, तो अब मैं चलूंगा, आपको भी देर हो रही होगी और फाता अकेली होगी।
0: अरे नहीं नहीं, अरे रुकिए, एक एक कप चाय तो पी लें, बैठिए। भाई 2 कप चाय देना।
1: हाँ भाई हसन भाई, तो अब काम कैसा चल रहा है अभी?
0: बाजार तो ठीक है, लेकिन काम आए तो ठीक, मगर अभी तो बिना काम के कई कई रोज गुजर जाते हैं। इसी तरह रहा तो रोजगार ही बदलना पड़ेगा।
1: अरे अरे, ऐसी क्या बात है? और भाई, कसीदाकारी के कपड़ों की तो अच्छी मांग है बाजार में, और सरकार भी तो मदद देती है।
0: आपको क्या लगता है, जिस तरह से सरकारी माहौल बदल रहा है, हम जैसे लोग भी रोजगार चला पाएंगे क्या?
1: आप भी
0: अरे पहले की बात और थी, लोग बाहर से आते थे और वही लोग हाथों के बने कपड़े खरीदते थे। अरे अब तो उनका आना भी कम हो गया है।
1: अब हम सो तो है भाई, लेकिन हाथ की कारीगरी तो उन्हीं पर टिकी है, और जब वो नहीं तो काम नहीं। सही कहते हो, पर हाँ, अब सरकार भी पहल कर रही है, देखना कुछ समय में फिर वही पुराना जैसा माहौल आ जाएगा। और भाई, अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो वक्त जल्दी आए। हाँ,
0: आमीन।
1: अच्छा भाई, तो हसन भाई अब मैं चलता हूँ, वक्त मिला तो मैं जरूर आऊंगा।
0: अच्छा, सारे को भेजना ना भूलिएगा।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, भूलूंगा भाई, आज ही मुश्ताक के साथ भेजूंगा उसे। हाँ
0: अच्छा, खुदा हाफिज।
1: खुदा हाफिज।

0: सारे।
1: अरे आ गए आप?
0: हाँ।
1: मैं अभी चाय बना देती हूँ।
0: मैं जरा मुंह हाथ धो लूँ।
1: चाय के साथ रोटी ला दूँ?
0: नहीं, सिर्फ चाय ही दे दो, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा।
1: क्यों, तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
0: हाँ, तबीयत तो ठीक है।
1: फिर परेशान क्यों लग रहे हैं?
0: कुछ नहीं सारे, बस काम का बोझ है और कुछ नहीं।
1: तो इतना काम ही क्यों करते हो जो परेशान रहो?
0: सारे, जिंदगी में पैसे का बहुत मोल है और पैसा आराम से कभी किसी को नहीं मिलता। अब पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है।
1: वो तो ठीक है, पर पैसे से खुशी किसे मिली है भला?
0: सारे, पैसे से खुशी ना मिली हो पर यह अच्छा तरीका तो जरूर है, और आज इसी की कीमत है। जिसके पास पैसा है वो खुशी के तमाम पल खरीद सकता है।
1: देखो जी, ऐसी खुशी मुझे तो नहीं चाहिए जिससे आप अपने आप को गला लें।
0: सारे, तुम्हें नहीं चाहिए पर वो सारी खुशी मैं तुम्हें देना चाहता हूं।
1: अच्छा छोड़ो ये बातें, चाय पी लो और कुछ आराम कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में आप अपनी सेहत को ही भूल जाएं।
0: ठीक है सारे। अच्छा, अम्मी अब्बू कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं दे रहा।
1: अम्मी पड़ोस में गई हैं और अब्बा बाजार गए हैं, कुछ जरूरी काम था, आते ही होंगे।
0: अच्छा,
1: लो अब्बा आ गए शायद, देखो तो जरा।
0: हाँ देखता हूँ। अरे अब्बू।
2: कौन? मुश्ताक, आ गए काम से?
0: हाँ अब्बू। अब्बू आप बाजार गए थे?
2: हाँ हाँ भाई, वो कुछ जरूरी काम था। तुम्हारी अम्मी कहाँ है?
0: अब्बू, अम्मी तो पड़ोस में गई हैं, आती ही होंगी।
2: और वो सारे कहाँ हैं?
0: सारे रसोई में खाना बना रही है, आप चाय लेंगे?
2: बनी हो तो दे दो।
0: सारे, अब्बू के लिए चाय लेती आना, मैं भी यही चाय ले लूंगा।
2: हाँ, काम से कब लौटे बेटा?
0: बस अब्बू, अभी थोड़ी देर हुई है। और बाजार में क्या हुआ अब्बू?
2: काम तो हो गया। और हाँ, वो सुनो, वो सारे के अब्बा मिले थे।
0: अच्छा।
2: हाँ, सारे को कुछ दिनों के लिए बुलाया है। देखो भाई, हो सके तो तुम भी साथ चले जाना।
0: नहीं अब्बू, मेरे पास समय नहीं है। और ऐसी भी क्या बात है अभी?
2: अरे अरे मुश्ताक भाई, वो फाता की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, दो दिनों से बुखार है और सारे को देखने की रट लगाए रखी है।
0: अब्बू, इस समय सारे का जाना मुमकिन है क्या? मेरे पास वक्त नहीं है।
1: मुश्ताक बेटा, कहाँ जाने की बात हो रही है?
2: अरे बेगम, वो हसन मियाँ मिले थे आज बाजार में। उन्होंने बताया कि फाता बीमार है और सारे को बुलाया है।
1: अरे तब तो सारे को जाना ही चाहिए।
2: अरे भाई, लेकिन मुश्ताक कह रहा है उसके पास वक्त नहीं है वहां जाने का।
1: वक्त नहीं है? ये क्या बात हुई भला? तो क्या बहू अकेली जाएगी यहाँ से? अरे लोग क्या कहेंगे, सारे है कहाँ?
0: अम्मी वो रसोई में है।
1: जा सारे को बोल तैयार हो ले, और तू भी उसके साथ चला जा, शायद किसी की जरूरत पड़े वहां।
0: ठीक है अम्मी, बेहतर है।
2: और सुनो, वो मैं गाड़ी वाले को बोल आता हूँ, दोनों को छोड़ आएगा।
1: हाँ, सारे को बोल तैयार हो ले, रसोई मैं बना देती हूँ।
0: जी। सारे, सारे।
3: जी।
0: जरा इधर आना।
3: आई। जी कहिए।
0: तुम्हारी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, सो हमें जाना होगा।
3: क्या क्या हुआ मेरी अम्मी को?
0: घबराने की कोई बात नहीं,

0: बस थोड़ा सा बुखार है। तुम अपने ज़रूरत के दो चार कपड़े ले लो, अब्बा अभी गाड़ी लाने गए हैं।
1: अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या?
0: अरे नहीं, तुम बेकार में ही इतना घबरा रही हो। तुम्हारे अब्बा बाजार में मिले थे, उन्होंने ही मेरे अब्बा से कहा है सब ठीक है, तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखना चाहती है।
1: तो अम्मी से जाने को पूछ तो लेते।
0: हाँ, बात हो गई है और मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। अब जल्दी तैयार भी हो लो, नहीं तो देर हो जाएगी। अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए तो ठीक होगा।
1: हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार हो लेती हूँ। आप भी अपने कपड़े ले लीजिए।
0: अब मेरे कपड़े रहने दो,
1: क्यों,
0: तुम्हें छोड़ मैं उसी गाड़ी से वापस आ जाऊंगा।
1: इतने दिनों बाद जाओगे तो रहोगे नहीं क्या?
0: नहीं, काम बहुत है, वैसे वहां जाने पर देखा जाएगा।
1: ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बस एक थैले में दो चार कपड़े ही तो रखने हैं।

0: देख तो कौन आया है।
1: अम्मी अम्मी
2: कौन? सारे आ बेटी बैठ मेरे पास।
1: कैसी हो अम्मी?
2: जिंदा हूँ बस, दो दिन से बुखार शरीर को तोड़े जा रहा है, अब तो लगता है उठ भी नहीं पाऊंगी।
1: ऐसा क्यों कहती हो अम्मी? तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी।
2: यकीन नहीं होता।
1: यकीन करो अम्मी, तुम ठीक हो जाओगी। मामूली सा बुखार ही तो है, दवा लेने से ठीक हो जाएगा।
2: मुश्ताक भी आया है क्या?
1: हाँ अम्मी, वो भी आए हैं।
2: मुश्ताक आया है तो अभी रहेगा ना? कुछ बना ले, ऐसा कर उससे पूछ ले क्या खाएगा, वही बना लेना।
1: अम्मी मुश्ताक तो यहाँ शायद ना रहें, उनका काम बढ़ गया है और मौसम भी ठीक है, काम में जाया करने से बहुत नुकसान हो जाएगा।
2: अच्छा, मुश्ताक के लिए चाय बना दे।
1: जी अम्मी, अभी बना देती हूँ।
2: बेटी मैं के आती है तो आराम पाती है, पर एक मैं हूँ जो बेटी के पहले मैं के वापसी पर भी उसी से काम करा रही हूँ।
1: अम्मी ऐसा क्यों सोचती हो? क्या अब ये मेरा घर नहीं रहा कि मैं यहाँ कुछ काम ना करूं?
2: तू माँ का दर्द नहीं समझ सकती, तू तो वहाँ भी दिन रात काम करती रहती होगी, यहाँ आई तो भी काम करना पड़ रहा है, ये अच्छा तो नहीं लगता बेटी।
1: अम्मी तू भी क्या कहती है, पहले तू ठीक हो जा, फिर मैं आराम से कुछ दिन तेरे पास रह लूंगी।
2: मुश्ताक मानेगा क्या?
1: पहले तू ठीक तो हो जा, फिर देखूंगी।
2: अच्छा, जरा पानी तो पिला दे बिटिया।
1: हाँ अभी देती हूँ।
2: अब तो एक गिलास पानी भी पिलाने वाला नहीं है कोई।
1: अम्मी लो पानी।
2: दे बेटी।
1: अम्मी तू बेकार की बात सोच सोच कर परेशान क्यों होती है? अब मैं आ गई हूं ना, अब तू जल्दी से ठीक हो जाएगी।
2: तू एक माँ की बात नहीं समझ पाएगी सारे, मेरी बच्ची अभी तो छोटी है, ये दुनियादारी की बातें तेरी समझ से दूर हैं।
1: ये क्या कह रही हो अम्मी, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तू आराम कर, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ और देखती हूँ कि खाने में क्या बन सकता है।
2: अच्छा, मुश्ताक अगर अभी जाएगा तो जल्दी में जो हो सके वही बना ले।
1: ठीक है अम्मी, तुम फिक्र मत करो।
2: सारे?
1: हाँ अम्मी कहो।

0: बेटी तो खुश तो है ना मुश्ताक के साथ?
1: तू ये क्यों पूछ रही है अम्मी? मैं खुश हूं।
0: नहीं, वैसे ही करीम और फजी कैसे व्यवहार करते हैं?
1: बहुत प्यार है उन्हें मुझसे।
0: हाँ भाई, आखिर क्यों ना हो। तू सुबह से रात तक मजदूर की तरह कमर तोड़ मेहनत जो करती है, कोई मजदूर भी इतनी मेहनत ना करे। और तू?
1: अम्मी, तू भी कैसी बातें करती है? वो मेरा घर है और मैं काम ना करूंगी तो भला कौन करेगा?
0: तू तो कुछ समझती ही नहीं। वे लोग तुम्हें नौकरानी बना कर रखे हुए हैं और तू खुश हो रही है कि वो तेरा अपना घर है।
1: अम्मी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, तू नाहक ही परेशान हुए जा रही है।
0: अरे सारे, तू ना उस घर गई होती तो क्या मुश्ताक कभी इतना कमा पाता? अरे वो तो तेरी किस्मत है कि तेरी दुआ से मुश्ताक कमा रहा है, और जिसके आमदनी पर तुम्हारा हक होना चाहिए उस पर करीम और फजी राज कर रहे हैं,
1: वो
0: और तुम नौकरानी की तरह दिन रात मेहनत करती हो।
1: अम्मी, ऐसा क्यों कह रही हो? करीम और फजी कोई गैर तो नहीं कि वो मुश्ताक के पैसे को खर्च ना कर सके? आखिर वो मुश्ताक के माँ बाप हैं।
0: अरे तू ठहरी भोली भाली, पर करीम और फजी को तो शर्म मानी चाहिए जो बेटे के पैसों से ऐश करते हैं और बहू को नौकरानी बनाकर रखा है, और तू उन्हीं लोगों की तरफदारी किए जा रही है।
1: अम्मी, ऐसा ना कहा करो। अब तो वही मेरा घर है और मुश्ताक मेरा शौहर है। वो जैसी भी रखेगा, मैं वैसी ही रह लूंगी अम्मी। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि करीम और फजी मेरे साथ गलत सुलूक कर रहे हैं।
0: अरे बिटिया, सारे तुम जो भी कहो, पर मैं तेरी माँ हूँ और मैं तेरे भले की कहती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो शादी के बाद करीम व फजी ने क्या एक बार भी तुम्हें आने ना दिया होता? क्योंकि वो चाहते हैं कि तू अपने माँ बाप को भूल जा और उनके घर नौकरानी बनकर रह।
1: अम्मी,
0: मुश्ताक कमाता है, पर आज तक तुम्हें क्या दिया? काम करो तो दो रोटी कोई भी दे दे, पर क्या परिवार ऐसा होता है? जरा सोचो, आज अगर तुम यहां होती या मुश्ताक के साथ अलग होती बिटिया, तो क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा ना होते? तुम्हारे पास ऐशो आराम होता और तुम खुश होती। मुश्ताक भी तुम्हें प्यार नहीं करता। अगर ऐसा होता तो तुम्हें उस नरक से निकाल कर अलग कहीं रखता जहां तुम खुश होती।
1: अम्मी, अम्मी, मुश्ताक मुझसे प्यार करता है। तू ऐसा मुझसे ना कहा कर अम्मी। और मुश्ताक का घर कोई नरक तो नहीं जो मैं वहां खुश नहीं हूं?
0: अरे जाने दे, सारे हर मर्द एक जैसा तो होता नहीं, पर होता तो मर्द ही है, और औरत को हमेशा से दूसरे दर्जे का ही मानता रहा है, और मुश्ताक भी तो एक मर्द ही है। अगर वो ऐसा ना होता और तुमसे प्यार करता होता।
2: संग्रहालय के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक सिसकियां की दूसरी कड़ी। डीटीएच पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी भोपाल। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 88.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। ये आकाशवाणी भोपाल है। 5 बजने वाले हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5 बज चुके हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारों, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार करेंगे। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों को नियुक्त करेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयाँ दी। और भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काका मेघारा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। युवा श्रोता सुने उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: मिलती है। मैं हूँ आयुषी द्विवेदी
1: और मैं हूँ आद्या नायक। हम आपका दिल से स्वागत करती हैं इस खास प्रस्तुति में, जहाँ हर चर्चा होगी ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और युवाओं के लिए बेहद खास।
0: दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के दो प्रश्न पूछकर, जिनके उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत में देंगे। आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहला एल्गी ट्री कहाँ लगाया गया है?
1: और आज का दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति को मंजूरी दी थी? दोस्तों, सुनते हैं कार्यक्रम के पहले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म अंग्रेजी मीडियम से और जिसे गाया है विशाल डादलानी और सचिन जिगर ने।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, जहां युवाओं की सोच, समाज की बात और नए विचारों की आवाज

0: दोस्तों, आज का दौर सूचना और अभिव्यक्ति का दौर है। हर तस्वीर अपने भीतर एक कहानी छुपाए रहती है और उन्हीं कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने का काम करता है फोटो जर्नलिज्म।
1: जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी पहली चर्चा का विषय है फोटो जर्नलिज्म, तस्वीरों के माध्यम से सच और समाज की अभिव्यक्ति। तो आयुषी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताते हैं कि आखिर फोटो जर्नलिज्म है क्या।
0: बिल्कुल आद्या, फोटो जर्नलिज्म पत्रकारिता की वह विधा है जिसमें तस्वीरों के माध्यम से समाचार, घटनाएं और भावनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। एक प्रभावशाली तस्वीर कई बार हजार शब्दों से ज्यादा असर छोड़ देती है।
1: सही कहा आयुषी, कई बार हमने देखा है कि किसी प्राकृतिक आपदा, युद्ध, खेल या सामाजिक घटना की तस्वीरें लोगों के दिलों को सीधे छू जाती हैं।
0: जी हाँ, क्योंकि तस्वीरें केवल दृश्य नहीं दिखाती बल्कि उस समय की भावना और सच्चाई को भी सामने लाती है। इसी वजह से फोटो जर्नलिस्ट समाज की आंखों और आवाज माने जाते हैं।
1: लेकिन आयुषी, फोटो जर्नलिज्म की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है ना?
0: बिल्कुल आद्या, एक फोटो जर्नलिस्ट को सच्चाई, संवेदनशीलता और नैतिकता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तस्वीरों को इस तरह प्रस्तुत करना चाहिए कि वे सही संदेश और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं।
1: आयुषी, आज सोशल मीडिया के दौर में हर व्यक्ति मोबाइल से तस्वीरें ले सकता है, ऐसे में प्रोफेशनल फोटो जर्नलिज्म की क्या खासियत रह जाती है?
0: आद्या, प्रोफेशनल फोटो जर्नलिस्ट केवल तस्वीर नहीं लेते बल्कि सही समय, सही एंगल

0: और घटना की सच्चाई को समझकर प्रस्तुत करते हैं। उनकी तस्वीरें समाज को जागरूक करने और सोच बदलने की ताकत रखती है।
1: वाकई फोटो जर्नलिज्म केवल कैमरे का काम नहीं बल्कि संवेदनशील सोच और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भी माध्यम है।
0: दोस्तों अब सुनते हैं कार्यक्रम के दूसरे गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म धड़क 2 से और जिसके गायक हैं दर्शन रावल, जोनिता गांधी और रोचक कोहली।

0: दोस्तों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब समय है एक विशेष वार्ता का, जिसका विषय है भारत में युवा और सतत विकास। आज के दौर में युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों और अवसरों को भी सुरक्षित रखे। तो आइए, इन्हीं महत्वपूर्ण विचारों पर प्रकाश डालने के लिए सुनते हैं ये वार्ता, भारत में युवा और सतत विकास। और वार्ताकार है कौशलेंद्र चंद्र जैन।
2: प्रिय श्रोताओं, नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारत में युवा और सतत विकास। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि यह भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमारे युवा केवल रोजगार की तलाश में हैं या वे देश और पृथ्वी के भविष्य को भी सुरक्षित करने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं? यहीं से शुरू होती है सतत विकास, यानी सच

सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। सतत विकास क्या है? सतत विकास का सरल अर्थ है ऐसा विकास जो आज की जरूरतों को पूरा करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न करे। यह शब्द पहली बार वैश्विक स्तर पर 1987 में चर्चित हुआ जब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इसे स्पष्ट किया गया। आज पूरी दुनिया 2030 तक के लिए सतत विकास लक्ष्य पर काम कर रही है। भारत भी इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के युवा एक जनसांख्यिकीय शक्ति। भारत में आज करोड़ों युवा हैं, गांवों में, शहरों में, कॉलेजों में, स्टार्टअप में, खेती में और तकनीक में। अगर यही युवा सही दिशा में काम करें तो भारत न केवल आर्थिक शक्ति बन सकता है बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी एक उदाहरण बन सकता है। जैसा कि एक प्रसिद्ध कथन है, युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका। आज भारत जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनमें शामिल है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जंगलों की कटाई, प्लास्टिक कचरा और जलवायु परिवर्तन। यह समस्याएं केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। युवा क्या कर सकते हैं? पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, केवल पौधारोपण नहीं बल्कि उसे बड़ा होने तक संभालना, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार, कपड़े के बैग, स्टील की बोतलें, पर्यावरण मित्र का उत्पादन करना, जल संरक्षण, घर में टपकते नल ठीक करना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना और साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग, इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। जल संरक्षण युवाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी। भारत के कई हिस्सों में जल संकट गंभीर होता जा रहा है। कई युवा समूह गांवों में तालाबों की सफाई, वर्षा जल संचयन और जल जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अगर युवा आगे आए तो गांव आत्मनिर्भर बन सकते हैं, खेती सुधर सकती है, पलायन कम हो सकता है। जल बचाना केवल पर्यावरण नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है। कचरा प्रबंधन और स्वच्छता। भारत में रोजाना हजारों टन कचरा निकलता है। अगर युवा आगे बढ़ें और गीले और सूखे कचरे को अलग करें, घरों में कंपोस्ट बनाएं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें तो शहर और गांव दोनों स्वच्छ हो सकते हैं। स्वच्छता केवल सफाई नहीं है, यह स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ी हुई है। नवीकरण ऊर्जा और स्टार्टअप संस्कृति। भारत में आज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित तकनीक के क्षेत्र में बड़े अवसर हैं। कई युवा सौर पैनल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिक वाहन, बायोगैस प्लांट जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। इससे तीन लाभ होते हैं, रोजगार सृजन, प्रदूषण में कमी, ऊर्जा आत्मनिर्भरता। सतत कृषि और ग्रामीण युवा। भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। अगर ग्रामीण युवा जैविक खेती अपनाएं, कम रसायनों का उपयोग करें और जल संरक्षण तकनीक अपनाएं तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। भारत कृषि भविष्य की आवश्यकता है। तकनीक और डिजिटल जागरूकता। आज का युवा डिजिटल है। सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरण अभियान चलाए जा सकते हैं, जागरूकता फैलाई जा सकती है, गलत जानकारी का विरोध किया जा सकता है। तकनीक अगर सही दिशा में उपयोग हो तो वह परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। शिक्षा और मूल्य आधारित सोच। सतत विकास केवल तकनीक से नहीं आएगा बल्कि सोच से आएगा। स्कूल और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा, नैतिक मूल्य, सामुदायिक सेवा, इनका समावेश जरूरी है। भारत की वैश्विक भूमिका और युवा। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है लेकिन केवल सरकार के प्रयास काफी नहीं है। जब भारत का हर युवा यह सोच ले कि मैं पृथ्वी का संरक्षक हूं तभी वास्तविक परिवर्तन आएगा। व्यक्तिगत जीवन में छोटे बदलाव। सतत विकास बड़े भाषणों से नहीं छोटे कदमों से शुरू होता है, जैसे बिजली बचाना, पानी बचाना, स्थानीय उत्पाद खरीदना,

0: भोजन की बर्बादी रोकना, पेड़ लगाना इत्यादि। हर युवा अगर अपने जीवन में 5 बदलाव करे तो देश बदल सकता है। इन सभी के लिए युवाओं का स्वस्थ होना आवश्यक है, अतः उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। स्वस्थ युवा ही राष्ट्र निर्माण कर सकता है। योग, व्यायाम, नशा मुक्त जीवन, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। स्वास्थ्य ही धन है। यदि शरीर स्वस्थ है तो समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा। एक सुंदर पंक्ति है, धरती हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। यही सतत विकास का मूल संदेश है। प्रिय श्रोताओं, भारत का भविष्य केवल सरकार की योजनाओं से नहीं बनेगा, भारत का भविष्य बनेगा जागरूक श्रोताओं से, जिम्मेदार नागरिकों से, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज से। आज का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला व्यक्ति नहीं है, वह परिवर्तन का वाहक है, वह समाधान का निर्माता है। अगर भारत का युवा सतत विकास को अपना लक्ष्य बना ले तो 2047 तक, जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे, तब भारत केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं बल्कि पर्यावरणीय महाशक्ति भी होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें, मैं सतत जीवन जीऊंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे वार्ता भारत में युवा और सतत विकास, और वार्ताकार थे कौशलेंद्र चंद्र जैन।
2: साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म केदारनाथ से और जिसे गाया है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने।

0: दोस्तों, हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियाँ और परंपराएं मिलकर हमारी पहचान बनाती हैं। यही विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ दोस्तों, और हमारी अगली चर्चा का विषय है अल्पसंख्यक कल्याण में युवाओं की भूमिका।
1: आद्या, कई बार समाज के कुछ वर्ग, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय, शिक्षा, रोजगार और संसाधनों की कमी के कारण मुख्य धारा से पीछे रह जाते हैं। ऐसे में युवाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
0: आज का युवा जागरूक है, शिक्षित है और तकनीक से जुड़ा हुआ है। अगर युवा चाहे तो ये समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल आद्या, युवा शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर सकते हैं। जरूरतमंद बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं, डिजिटल साक्षरता फैला सकते हैं और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर सकते हैं।
0: सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे छात्रवृत्ति योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार योजनाएं और शिक्षा सहायता कार्यक्रम।
1: लेकिन जानकारी की कमी के कारण बहुत से लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में हम युवा एक माध्यम बन सकते हैं जो सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाए।
0: और आज सोशल मीडिया का दौर है और अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो ये समाज में सकारात्मक सोच और भाईचारे का संदेश फैलाने का सबसे मजबूत माध्यम बन सकता है।
1: बिल्कुल आद्या, युवाओं को चाहिए कि वे नफरत और भेदभाव फैलाने वाली बातों से दूर रहें और एकता, समानता और सद्भाव का संदेश दें।
0: जब समाज का हर वर्ग आगे बढ़ेगा तभी देश मजबूत बनेगा।
1: और इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है हम युवा, क्योंकि युवाओं में नई सोच है, नई ऊर्जा है और समाज को बदलने का जज्बा है।
0: तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम शिक्षा, समान अवसर और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देंगे।
1: दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम के अगले गीत का, जिसे हमने लिया है फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और जिसे आवाज दी है सचिन जिकर, राघव चैतन्य और वरुण जैन ने।

0: दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने का। आज का पहला प्रश्न था, भारत में पहला एल्गी ट्री कहाँ लगाया गया है? इसका सही उत्तर है भोपाल।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि जनवरी 2026 में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति को मंजूरी दी है? जिसका सही उत्तर है राजस्थान। तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त आद्या नायक
0: और आयुषी द्विवेदी को। फिर मिलेंगे नए विषय और नई प्रेरणा के साथ। नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी, या आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
6: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
5: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5:33 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, पहला गीत बरसात की एक रात फिल्म का, आवाज़ लता मंगेशकर की, साहिर का गीत और रोशन का संगीत।

और अब सुनिए अलग अलग फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और यशदास की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का गीत और आर डी वर्मन का संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अगला गीत दाता एक ग्राम फिल्म से हरिओम शरण की आवाज़ में, गीत हरिओम शरण का और मुरली मनोहर स्वरूप का संगीत।

और अब सुनिए मिलन फिल्म का ये नगमा मुकेश की आवाज़ में, आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: इस नगमे के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 5:55 हुए हैं, वक्त है अंतराल का।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथि

0: परीक्षाएं और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारों, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार किया। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों को नियुक्त करेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। और भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामेघारा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत 29 मई को कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जो हमें छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी ने भेजा है। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
3: वाह, बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो हमें पहला संदेश मिला है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव जी का।
2: गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, श्रीमती सरिता शर्मा, गौरव और गरिमा शर्मा।
2: ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा।
3: और जीएल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और सतीश अनेजा जी का।
2: धन्यवाद श्रोताओं आप सबका संदेश भेजने के लिए।
3: और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी विश्व प्रसिद्ध सुंदर फूल ट्यूलिप की, और जाना था इसकी रोचक बातों को
2: जी।
3: खास तौर से ये जाना था कि ट्यूलिप नाम कहाँ से आया, और ये भी कि ट्यूलिप के फूल अक्सर गंधहीन होते हैं।
2: आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे फूल की जिसकी सुगंध का जवाब नहीं है। ये भी विश्व प्रसिद्ध फूल है जिसे अंग्रेजी में ट्यूबरोज कहा जाता है। अजीत जी, इस फूल का नाम हिंदी में भी बहुत सुंदर है।
3: क्या नाम है भला?
2: रजनीगंधा।
3: रजनीगंधा बहुत ही खूबसूरत नाम है विमलेश जी, लेकिन जरा इस शब्द पर विचार तो कर लें। रजनीगंधा ये दो शब्दों के संयोग से बना है ना, रजनी और गंधा।
2: जी चलिए श्रोताओं, इसे और गहराई से समझते हैं। रजनी यानी रात और रात्रि, और गंधा यानी सुगंधित। इस फूल की रोचक बात यह है कि रात में सबसे अधिक महकता है।
3: जी, दिन की तुलना में इसकी खुशबू रात को कई गुना बढ़ जाती है।
2: जी,
3: इसलिए इस फूल को क्वीन ऑफ द नाइट फ्रेग्रेंस भी कहा जाता है। देश विदेश में विशेष अवसरों पर, जैसे
2: विवाह, सजावट, पूजा और स्वागत समारोह में इसकी मालाएं और पुष्प गुच्छ यानी बुके बहुत अधिक प्रचलित हैं। अजीत जी, अब जरा ये तो बताइए कि मूल रूप से ये फूल कहाँ का है, यानी इसकी व्युत्पत्ति किस देश की मानी जाती है?
3: विमलेश जी, जहाँ तक इसकी व्युत्पत्ति का प्रश्न है, इस व्युत्पत्ति मेक्सिको की मानी जाती है, जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है।
2: जी, मूल रूप से मेक्सिको का फूल माना जाता है, लेकिन आज ये भारत सहित दुनिया के अनेक देशों में उगाया जाता है। भारत में इसकी खेती पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में की जाती है। बता दें कि रजनीगंधा फूल भी ट्यूलिप की तरह बीज से नहीं लेकिन कंद से उगाया जाता है। वैसे बीज बन सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक खेती के लिए कंद का ही उपयोग किया जाता है।
3: लेकिन विमलेश जी, मेरे मन में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और वो

0: ये है कि रजनीगंधा फूल की सुगंध रात में ही क्यों अधिक होती है? कोई वैज्ञानिक कारण तो होगा?
1: अजीत जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने।
0: जी,
1: बात यह है कि प्रकृति ने इस फूल को रात्रि परागण या नाइट पॉलिनेशन के लिए विशेष रूप से बनाया है, इसलिए रात के समय इसका सुगंधित तेल अधिक मात्रा में निकलता है। इसका उद्देश्य है रात में सक्रिय रहने वाले कीटों और पतंगों को आकर्षित करना।
0: वाह, ये तो बड़ी रोचक बात है।
1: इतना ही नहीं, एक कारण और भी है। अपने सफेद रंग के कारण ये अंधेरे में भी चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण रात्रि के कीट इसे आसानी से पहचान लेते हैं। एक बात और है।
0: भला वो और क्या बात है?
1: दिन की गर्मी से सुगंध जल्दी उड़ जाती है, लेकिन रात की ठंडी और नम हवा खुशबू को दूर तक फैलाती है।
0: जी, ये बात तो है।
1: इसकी तेज खुशबू रात में परागण करने वाले कीटों को आकर्षित करती है।
0: बड़ी सुंदर जानकारी दी आपने विमलेश जी। कई संस्कृतियों में श्रोताओं, इसे शांति और प्रेम का प्रतीक भी माना गया है।
1: जी
0: विमलेश जी, एक और सुंदर जानकारी श्रोताओं से साझा करना चाहता हूँ कि इत्र या परफ्यूम उद्योग में रजनीगंधा फूल का बड़ा महत्व है।
1: जी।
0: इसके तेल से अत्यंत महंगा परफ्यूम तैयार किया जाता है। रजनीगंधा परफ्यूम अंतर्राष्ट्रीय इत्र उद्योग में बहुत लोकप्रिय है।
1: जी जी जी, रजनीगंधा की खुशबू इतनी प्रभावशाली होती है कि कुछ लोग इसे मन के तनाव को कम करने वाला प्राकृतिक सुगंध स्रोत भी मानते हैं।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी खुशबू से वातावरण को महकाने वाले फूल रजनीगंधा की। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: रजनीगंधा फूल रात में अधिक खुशबू क्यों देता है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है दिस इज माई टाउन।
1: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत प्रस्तुतिकरण है, जिसमें पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: जादुई पिटारा, है ना मजेदार साथियों? जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह।
2: इस कार्यक्रम में परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह की वीर गाथा को विस्तार से बताया गया है। भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने असाधारण शौर्य का प्रदर्शन किया था।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। यह कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रकाशित परम वीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित पुस्तक वीर गाथा पर आधारित है।
1: अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। साथियों, ये पंक्तियां महाकवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं, जो भारत भूमि के महात्मय को बड़ी सजीवता से उजागर करती हैं।
2: सच है कि भारत की मधुमय माटी ने ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है, जिनकी वीरता की चर्चा जितनी की जाए कम है। आज हम एक ऐसे ही वीर सैनिक की चर्चा करेंगे, जिसने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान अद्वितीय शौर्य का प्रदर्शन किया और इस युद्ध में भारत की विजय का मार्ग प्रशस्त कर दिया।
1: भारत माता के वो शूरवीर हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। जिन्हें भारत पाकिस्तान के मध्य लड़े जा रहे

0: कारगिल युद्ध में भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: कहते हैं कि योद्धा इतिहास को नहीं चुनते, लेकिन स्वयं इतिहास योद्धाओं का चयन करता है और उन्हें अपने स्वर्णिम पन्नों में गौरवशाली स्थान देता है। योगेंद्र सिंह यादव एक ऐसे ही इतिहास द्वारा चुने हुए पात्र हैं, जिन पर देश को हमेशा गर्व रहेगा।
0: योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के औरंगाबाद अहीर गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक स्कूल में पूरी की और आगे की पढ़ाई सन्नोटा श्री कृष्ण कॉलेज बुलंदशहर से पूरी की।
1: उनके पिता रामकरण सिंह 11 कुमाऊं रेजिमेंट में सिपाही थे और 1965 व 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उन्होंने बड़ी सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो अपने पिता से बहुत प्रभावित थे और प्रतीक्षा करते थे कि कब पिताजी छुट्टी पर घर आएं और वो उनसे भारतीय सेना की वीरता की कहानियां सुने।
0: एक दिन की बात है, वो घर पर ही थे। उनके बड़े भाई किसी काम से बाहर गए हुए थे और माता घर पर ही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई।
2: बेटा योगेंद्र, जरा देखो तो कौन आया है। अरे कौन है?
3: बहन जी, डाकिया।
2: अच्छा, खोलते हैं भैया।
4: जी कहिए। आपके भाई के नाम एक जरूरी चिट्ठी आई है रजिस्ट्री से। वो घर में है क्या?
5: नहीं, वो तो भैया तो अभी घर पर नहीं है।
4: तो कोई बड़ा है घर में?
5: हाँ, घर पर माता जी है ना।
4: जी बुलाइए।
6: माँ।
2: हाँ।
6: भैया के नाम से रजिस्ट्री आई है।
2: अच्छा, आ रही हूँ। जी कहिए।
4: ये जरूरी सरकारी चिट्ठी आई है आपके बेटे जितेंद्र के नाम। ये लीजिए और यहाँ पे साइन कर दीजिए।
2: अरे ये चिट्ठी तो फौज के दफ्तर से आई है, जरा देखूं तो।
6: माँ, माँ।
7: लो माँ, मैं आ गया। आपने जो काम दिया था ना, वो भी हो गया।
2: अच्छा क्या बेटा, तू आ गया। ले बेटा देख तो जरा, तेरे नाम ये चिट्ठी आई है।
7: चिट्ठी? अरे वाह, ये तो सेना के दफ्तर से आई हुई लगती है माँ, जरा देखूं तो।
2: हाँ।
7: माँ, माँ, माँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ, सेना में मेरा चयन हो गया है। मुझे कहा गया है कि मैं 1 महीने के अंदर क्षेत्रीय सेना कार्यालय में रिपोर्ट करूं।
5: अरे वाह,
2: बधाई हो बेटा, बधाई हो।
5: ऐसे नहीं,
6: बधाई हो भैया, बधाई हो भैया।
7: अरे योगेंद्र।
2: अरे बेटा, अब तो ये घर फौजी का नहीं, फौजियों का हो गया है। फौजियों का। तुम्हारे पिता फौज में हैं और अब तुम भी फौज में।
5: और माँ, इन दोनों के बाद मैं भी फौज में ही जाऊंगा। इस गांव में एक ही घर से 3-3 फौजी होंगे।
2: हाँ हाँ, जरूर बेटा जरूर, ये तो बड़े गर्व की बात होगी हमारे लिए।
5: ऐसे नहीं, आज तो घर में गुलाब जामुन बनेगा, रसगुल्ला बनेगा, बर्फी मिलेगी खाने को।
1: तो साथियों, बालक योगेंद्र जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, उनके मन में सेना में जाने का चाव बढ़ता जा रहा था। पढ़ाई खत्म करने के बाद उन्होंने सेना में अर्जी दी और पहले प्रयास में ही महज 16 वर्ष की आयु में उन्हें ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट की एक महत्वपूर्ण प्लाटून में शामिल कर लिया गया। इस प्लाटून का नाम था घातक प्लाटून।
0: फिर आया 1999 का साल। कश्मीर के कारगिल में स्थितियां बिगड़ने लगी। मई महीने में एक स्थानीय चरवाहे द्वारा भारतीय सेना को सूचना दी गई कि कारगिल और आसपास के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तानी सेना ने कब्जा कर लिया है।

0: सेना ने जब इस सूचना की जांच की तो पता चला कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा को लांघकर 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनका उद्देश्य था सियाचिन और कारगिल क्षेत्र से गुजरने वाले श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर कब्जा करके शेष भारत को कश्मीर के इस महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र से काट देना।
1: अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया था। 3 जुलाई को भारतीय सेना ने युद्ध की घोषणा की और बड़े पैमाने पर सैन्य कार्यवाही आरंभ कर दी। भारतीय सेना का मकसद था कारगिल, मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों से पाकिस्तानी चौकियों को हटाना। भारतीय वायुसेना को भी चौकस कर दिया गया कि वो हवाई हमलों को अंजाम दे सकें।
0: सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी क्योंकि उनकी चौकियां पहाड़ों की चोटियों पर थीं। उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार, मिसाइल, रॉकेट और विमान भेदी तोपें थीं। इतना ही नहीं, उन्होंने हर जगह बारूदी सुरंगें बिछा रखी थीं।
1: इसके विपरीत भारतीय सेना की स्थिति घाटियों में होने की वजह से कमजोर थी क्योंकि ऊंची जगहों से पाकिस्तानी भारतीय सेना को बड़ी आसानी से निशाना बना सकते थे। भारतीय सेना के लिए ऐसी स्थिति में युद्ध करना बहुत कठिन था, इसलिए पाकिस्तानी सेना पर आक्रमण करने के लिए अधिकांश हमलों में रात का समय चुना गया, जिस समय तापमान 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है।
0: ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, कुमाऊं रेजिमेंट की घातक के नाम से जानी जाने वाली कमांडो प्लाटून का हिस्सा थे। दिनांक 4 जुलाई 1999। उनकी कमांडो प्लाटून को टाइगर हिल पर मोर्चा बांधे हुए दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। टाइगर हिल पर दुश्मनों की चौकियां लगभग 1000 फुट की ऊंचाई पर थीं।
1: चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़। दुश्मन के बंकरों तक पहुंचने के लिए उनके पास रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। उनकी प्लाटून ने धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू किया।
2: साथियों, बहुत संभल के, अभी भी सूरज की रोशनी थोड़ी बहुत है, इसलिए हम दुश्मनों द्वारा देखे जा सकते हैं। कहीं उन्हें पता चल गया तो हम सीधे उनके निशाने पर आ सकते हैं।
3: जी साहब, जी साहब।
2: चलो हम पहाड़ी ढाल की दूसरी तरफ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं।
3: चलो साथियों।
1: वो धीरे धीरे बर्फ की खड़ी ढाल पर चढ़ ही रहे थे कि तभी दुर्भाग्यवश शत्रु ने उन्हें देख लिया और प्लाटून पर रॉकेट और मशीन गनों से उन पर आक्रमण कर दिया।

0: हमला इतना जबरदस्त था कि कमांडर और दो सैनिक उसी समय शहीद हो गए।
1: ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को भी गले और कंधे में 3 गोलियां लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गए। अभी भी 60 फुट की चढ़ाई बाकी थी। अब उन्हें आभास हो गया था कि यही समय है देश के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण की भावना को प्रकट करने का। यही समय है मातृभूमि के प्रति अपना कर्ज और फर्ज अदा करने का। दृढ़ निश्चय के साथ वो ऊपर चढ़ते चले गए।
0: शेष 60 फुट चढ़कर वो टाइगर हिल के शीर्ष पर पहुंचे और रेंगते हुए पहले बंकर में घुस गए और हथगोला फेंककर तुरंत 4 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत

0: के घाट उतार दिया।
1: कालिका माता की जय।
2: दुश्मन इस आकस्मिक आक्रमण से स्तब्ध रह गया। अब वो दूसरे बंकर की ओर बढ़े और सीधे बंकर में घुस गए। यहां हाथ से हाथ का आमने सामने का युद्ध हुआ। यहां भी राइफल की बट और हाथ गोलों से उन्होंने चार और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया।
0: घुटने में ग्रेनेड लगने से घायल और कुल मिलाकर अपने शरीर में 15 गोलियां लगने के बाद भी, यहां तक कि वो खड़े होने की स्थिति में भी नहीं थे। इस हालत में भी ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने हिम्मत नहीं हारी और दुश्मनों से अपूर्व शौर्य के साथ लड़ते रहे।

0: इतने में ग्रेनेडियर योगेंद्र के साथी भी शिखर पर पहुंच गए थे। फिर तो जैसे वहां तांडव नृत्य होने लगा। घंटे भर के भीषण युद्ध के बाद प्लाटून टाइगर हिल पर कब्जा करने में सफल रही और वहां भारत का परचम लहरा दिया।
1: भारत माता की जय!
2: भारत माता की जय!
0: ये शानदार विजय ग्रेनेडियर योगेंद्र के बिना संभव नहीं थी। इस तरह से ऑपरेशन टाइगर हिल समाप्त हुआ। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह को टाइगर ऑफ टाइगर हिल की संज्ञा दी गई।
3: उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित करने की घोषणा हुई, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बाद में पता चला कि वो जीवित हैं और सेना के एक अस्पताल में जख्मों के भरने और स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल टाइगर हिल अभियान में एक और सैनिक शहीद हुए थे। उनका भी नाम योगेंद्र सिंह यादव था। इन शहीद योगेंद्र सिंह यादव को सेना मेडल से सम्मानित किया गया।
0: बाद में तत्कालीन सेना अध्यक्ष वेद प्रकाश मलिक ने आर्मी अस्पताल का दौरा करके ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव से मुलाकात की और उन्हें देश के सबसे बड़े सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने की सूचना दी। मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर यादव सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ।
3: योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सर्वोच्च सम्मान यश भारती से भी सम्मानित किया है। देश की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस असीम शौर्य के दृढ़ निश्चयी समर नायक ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव को कृतज्ञ राष्ट्र नमन करता है।
4: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आरएस रघु। ध्वन्यांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम। निर्माण सहयोग जगबंधु जाना। आलेख अजीत होरो। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी।

0: यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए एक विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आज दोपहर मशहूर शायर बद्र साहब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे संग्रहालय से प्राप्त रिकॉर्डिंग के माध्यम से आज हम आपको सुनवा रहे हैं काफी समय पूर्व शायर बद्र साहब से ली गई एक भेंट वार्ता।
4: डॉक्टर साहब, बीते हुए वर्ष में जो कुछ आपने महसूस किया है, हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगा जो कुछ सपने संजोए थे बीते वर्ष के लिए, क्या फलित हुए?
5: कुल मिला करके तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा पॉजिटिव और होपफुल दुनिया नज़र आती है और पहले से ज़्यादा खूबसूरत और रहने लायक होती जा रही है। लेकिन फिराक साहब का एक शेर है कि देख रफ्तार इनकलाब फिराक कितनी आहिस्ता और कितनी तेज़। तो दुनिया जिस तरह से खूबसूरत हो रही है, बन रही है, और हर शख्स को बर्बादी का, तासुब का जो एहसास है कि उसको ख़त्म किया जाए, वो इतना अंदरूनी ज़रूर है, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे से कहा जाए कि 99 अच्छा था कि 2000 अच्छा था, 2000 जितना अच्छा था उतना 2001 अच्छा है। और मेरा ख़्याल है कि मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी खुदा का शुक्र है। तो मेरी खुद अपनी एक लाइन है कि शायरी की कि समंदरों में ये तूफ़ान रोज़ आते हैं, उठो। और मतलब दूसरी लाइन में ज़रा फर्शनाए डिक्शन में है कि कार गहे ज़िंदगी के काम उठा। तो समंदरों में जो तूफ़ान आते हैं, उस लिहाज से बज़ाहिर आप कोई आदमी कह सकता है कि मेरी एज भी बढ़ रही है, लेकिन बिलीव नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ जो है वो जैसे ज़िंदगी खूबसूरत हो रही है तो लम्हा लम्हा, लेकिन वही यही कि आप उसे बहुत दो दो चार की तरह ना देखें। तो मुसीबतें तो और इम्तिहान स्ट्रगल सब आते हैं, लेकिन वो अगर शायद मेरी आँख से देखा जाए तो उस जो इम्तिहान आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, वो इतनी नेचुरल हैं कि उनसे प्यार करने को जी चाहता है। कई बहुत बड़े बुरे हादसे हमारे यहाँ हुए, लेकिन अगर आप उसे सोचें कि अगर वो कामयाब हो जाते, जैसे हमारे पार्लियामेंट पर जो हमला था, वो कितने कम नुकसान में कितना बड़ा एक्सपीरियंस हुआ, इस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। इस तरह और बहुत सी बातें हुई। मैं हिंदुस्तान से बाहर 2 बार गया, मिडिल ईस्ट रहा, अभी 2 महीने में अमेरिका रहा। वहाँ छोटी छोटी हरकतें दूसरे दोस्तों की, आपका इशारा, जैसे उर्दू तो जानते हैं आप, हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में है, तो उस लिहाज से कुल मिला के मुझे बज़ाहिर तो वहाँ लगा कि कहीं स्ट्रगल है, लेकिन कुल मिला करके मुझे लगा कि हमारी हैसियत, मेरी हैसियत, और अभी तक मेरा ज़ाती में तो अपनी ज़ाती ज़िंदगी से पूरा हिंदुस्तान देखता हूँ, वो धीरे धीरे जो चावल चावल ग्रो कर रहा है, वो खूबसूरत हो रहा है, उस पर मुझे तो कोई ज़िंदगी से शिकवा नहीं न वक्त से।
4: आने वाले वर्ष में आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए, देखिए, क्या होना चाहिए?
5: हाँ देखिए, मेरे साथ एकदम बिल्कुल मुझे अच्छा ये मौका है ये कहने का कि मुझे आज से 30-40 साल पहले जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया गया था कि संस्कृत की सबसे आखिरी शक्ल उर्दू है और वो उर्दू लिपि में आप लिखें तो उर्दू है,

अदरवाइज वो मतलब खड़ी बोली का ये नया रूप है। तो मैंने बहुत चौंक करके क्लास में अपने प्रोफेसरों से 30 बरस पहले अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सुना था और कि क्या कह रहे हैं ये, क्योंकि एक कामन आदमी की हैसियत से मुझे कभी इतनी बड़ी विरासत मिलने की खबर नहीं थी कि संस्कृत का सबसे नई शक्ल का मैं वारिस हूँ और मैं शायर हूँ और धीरे धीरे। तो अब और मैंने जब अपने वसीले से देखा तो जैसे मुझे गालिब और मीर लगे, तो मुझे वाकई लगा कि जितनी विरासत की हिफाजत जिसने की, चाहे जान के की और चाहे अपनी चालाकी में की, मैं तो अपनी चालाकी में करता हूँ, मतलब मैं शायरी करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि हज़ारों इंसानों के दिल की के राज को मैं अपना अपना अपना राज बना लूँ, अपना प्यार बना लूँ। तो मुझे पता चला कि मुझसे ज़्यादा ही शायरी में हिंदी जानने वाला कोई नहीं है, लिखने में मुझसे ज़्यादा जाहिल कोई नहीं है, और इसी तरह से उर्दू में मैं बहुत अच्छी उर्दू लिख लेता हूँ लेकिन उतनी अच्छी मुझे उर्दू नहीं आती। तो उसके लगा कि किताब से ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो सच्ची है और एक कंटिन्यूएशन में है, एक सिलसिले में है। तो ये बहुत खुशगवार मुझे एक्सपीरियंस हुआ और उसका रिज़ल्ट भी बगैर किसी प्लानिंग के, देखिए प्लानिंग तो मेरी बचपन से है कि मेरी उर्दू में किताब छपे और पाकिस्तान में भी छपी हैं, तो 6 छपी हैं और 20 मैं अब यहीं से हिंदुस्तान से हिंदी लिपि में ख़रीद के लाता हूँ, और मामूली आदमियों के नहीं, ज़्यादातर वाणी प्रकाशन के होते हैं। और वाणी प्रकाशन का एक दुश्मन और है, वो जो राजपाल है, जो ये छाप दे तो वो नहीं छापता, तो उसने तो चुरा को छीन के, ये चुरा का लफ्ज़ बड़ा प्यार है मेरे तरफ से, कि उसने मेरे पर कितना बड़ा एहसान किया कि मतलब मैं वाणी के साथ एक तरह से कमिटेड हूँ, और लेकिन उन्होंने जो चुरा के छापा उससे बड़ा एहसान मेरे लिए को। तो इन चीज़ों को जो एक्सपीरियंस हो रहे हैं उसको आप देखें कि मैं, इससे लगता है कि मैं बिल्कुल सही सिमत में नेचर मेरा मुझे ग्रो करा रही है, और जाहिर है कि जब मैं इसका खानों में नहीं बढ़ना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि 4-5 मेरी किताबें अनजान लोगों ने चुरा के हिंदी लिपि में छापी, जैसे धूप की पत्ती और हरा रिबन का आज तक मुझे पब्लिशर नहीं मिला, कौन है। अच्छा, बाकी राजपाल साहब ने जो मेरी किताब छाई, उनमें मेरे दोस्त कन्हैयालाल नंदन को पकड़ लिया, उन्होंने 20-25 सफ़े का मेरे पर प्रीफेटरी नोट लिखा, और मेरा सारा बकौल हमारे जो दोस्त हैं अरुण महेश्वरी के, यार वो तेरी तो सब उसका सोना सोना तो उसने छाट लिया, तुमने दे दिया। मैंने कहा दिया तो मैंने जबानी तो नहीं दिया है, लेकिन ये हुआ है तो ये नेचर का फैसला, इसको कबूल करो यार। अच्छा हुआ कि कन्हैयालाल लंदन भी एक आध रोज नाराज रहे, क्योंकि मैं परमिशन नहीं दे रहा था। मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो कमिटेड हूँ अपने, लेकिन अंदर से मैं वाकई यही चाहता था, हर आर्टिस्ट ये चाहता है कि उसकी पैसा वैसा कहाँ मिलता, हम लोगों को मिले भी तो क्या करेंगे हम। अब इस नतीजे यहाँ तक भी खुदा का शुक्र हम पहुँच गए कि हम सोचने लगे कि पैसा हमारा क्या कर लेगा, मिलेगा तो क्या मेरा कर लेगा और नहीं मिलेगा तो मेरा क्या कर लेगा। तो मुझे बहुत ही एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी किताबें 5-6 चुरा के लोगों ने छापी, जो मेरी बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई लड़की को खूबसूरत लोग छेड़ें और वो कह के नहीं नहीं मुझे तो बिला छेड़ा जा रहा, मेरी किताब में छपी, मेरे जो जिनसे मैं कमिटेड हूँ वानी, उन्होंने मेरी खूब किताबें छापी, और जिनसे मैं चाहता था कि काश कभी, मुझे याद है साहब एक दफ़ा मैं ले करके बचपन में पूरा गया था ये राजपाल वालों के पास, इन्होंने रखा रहे 4-6 महीने, फिर मैं एक दफ़ा गया कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, आप मेरी किताब छाप दीजिए, तो उनका ही लेते जाइए, अभी जब तक आप 4 दफ़ा कनाडा हो आएंगे इनके बाप वगैरह ने किया होगा, भाई गढ़ नहीं छापा था। और उन्हीं ने जब इस तरह से चुरा करके 3 किताबें छापी, एक उसकी पाकिस्तान वाला जो है अहमद फराज की, एक 2 हम लोगों की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह लग रहा है कि सब कुछ कांटे के दरमियान से गुजर रहे हैं और फूल महफूज है, तो इससे बड़ी और क्या बात है। तो वो तो कांटे तो लाइफ है, वो तो उसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं। तो बार बार याद आता है कि हमारे साथ ये हुआ, हम संसद पे हमला हुआ, फला हुआ, ये मर गया, इसको चोट आई। तो अगर और हर साल से मुकाबला करें तो कुछ बेहतरी हो रहा है, कम से कम मेरे हैसियत में, मेरे साथ तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ अभी भी। मैं रहा, मैंने मुझे बहुत ज़्यादा आप अपना पर्सनल बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन कई दफ़ा मुझे लगा कि जो लोगों ने मेरे

0: खुली खुली होती जा रही है। ये जो खाने में हम बंद करके जकड़ करके दरवाज़ा बंद करके थोड़ी सी हवा में 50 आदमी सांस लेके घुटन में जीते थे, वो मैंने कहा नहीं, मेरी बातों में तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वही साहित्य का और अदब का होगा, तो गज़ल का आदमी। तो आप गज़ल की ज़बान ही में जितने भी 150 साल में शब्द हिंदुस्तान में ज़िंदा हैं वो सब मेरे हैं। अंग्रेज़ी में बिल्कुल नहीं है, हिंदी में बिल्कुल नहीं है, उर्दू में बिल्कुल नहीं है, वो तो सब मेरी गज़ल के हैं और मेरी ज़िंदगी के हैं और मेरे शहर के हों, मेरे गाँव के।
1: चलते चलते एक आखिर में एक बात जानना चाहते हैं कि अदब और गज़ल से जुड़े आदमी के अलावा
0: जी,
1: जो बहुत बेहद सामान्य आदमी, बेहद हाँ, आम आदमी है
0: हाँ,
1: वो अपने स्तर पर बेहतरी के लिए
0: बहुत अच्छा हो रहा है पहले से। देखिए आप ये मत समझिए कि मेरा कोई इरादा वरादा कहीं कुछ और कोई चीज़ पाने का है, आप ये समझ लीजिए कि जिन चीज़ों का ख्वाब पहले बादशाह देखते थे उससे ज़्यादा हमारा ड्राइवर इंजॉय करता ज़िंदगी को। लेकिन ये तो इन आल चूँकि, और ये खुशी की बात है कि ये इन आल तब्दीली आई है, पूरे में आई है। तो जो बादशाहों को पहले फैसिलिटीज सिर्फ मिलती थी उससे ज़्यादा आज एक कामन आदमी को मिलती है। लेकिन दुनिया पूरी ने इतनी तरक्की की, खाली हिंदुस्तान नहीं की, और दुनिया से अलग हमारा हिंदुस्तान नहीं है एक बात, और दूसरे ये भी है कि हिंदुस्तान के बगैर दुनिया है क्या, ये भी एक लहजे से सोच लेने दीजिए। अगर मैं कहूँ कि दुनिया के बगैर हिंदुस्तान क्या, तो आप यकीन जानिए कि इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा साहित्य का, इतना बड़ा शायरी का, इतना बड़ा आर्ट का, इतनी दफ़ा हमारी लड़कियाँ मिस वर्ल्ड हुई हैं, तो हमारे माइनस करने के बाद दुनिया तो बहुत ही अधूरी अधूरी सी हो जाएगी, चाहे शायरी हो, चाहे हुस्न की बात हो, चाहे बदन की बात हो, चाहे क्या कहते हैं ये हमारे जो वो हो गए प्राइम मिनिस्टर साहब, यहाँ कह रहे थे हम शायरी करते थे तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी उनसे कहने की कि जो तो आप कर रहे थे इससे पहले मतलब साइंटिफिक वो भी शायरी ही थी, तो जो कर रहे हैं वही आप करते रहिए। खैर अगर आप गज़ल वज़ल कहो तो हम भी बम बनाने लगेंगे और मिटाने लगेंगे, तो दुनिया अच्छी हो रही है, मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ।
1: डॉक्टर साहब आपने इतनी बात की, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही आत्मीय बात रही, आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया। क्या कहा सर मैंने उनका?
1: प्रेसिडेंट फिर से बोल दीजिए जो शायरी के सिलसिले में।
0: यहाँ आप अभी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब तशरीफ़ लाए थे तो सवेरे बिल्कुल उन्होंने चाय पी थी हमारे गवर्नर साहब के यहाँ, तो हम तो दूर बैठे हुए थे, लेकिन दोनों जब दोनों ये दोनों एक ही मेज़ पे थे तो गवर्नर साहब ने कुछ कहा तो उन्होंने कहा बुलाइए, तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही बुलाया जैसे कहा वजीर यहाँ हो, ज़रा यहाँ आओ, तो कहा कि तो इसके माने वो बता चुके थे कि मैं ठीक शायर हूँ, तो वो उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं ये और मैं भी शायरी करता हूँ लेकिन तमिल में करता हूँ, तो मैंने कहा तो दे दीजिए फिर और मैं उसे गज़ल बना दूँगा। ये हुई थी बात हमारे जब प्रेसिडेंट साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे।
1: कुछ शेर हम
0: जी जी मैंने इधर मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने एक डेढ़ या पौने दो महीने में अमरीका में रहा हूँ और मुझे खुशी है कि मेरी जो गज़ल की थ्योरी है वो बिल्कुल ये है कि वो शेर जो होते ही ये दावा करने लगे कि मैं बहुत दिन जीऊँगा और लाखों इंसान का हो करके उस आदमी का भी रहूँगा जिसने मुझे कहा है, उस मियार पर मैं आपको तीन शेर सुनाना चाहता हूँ। ये मैंने पौने तीन शेर जो थे वो दो महीने या डेढ़ महीने में हिंदुस्तान से बाहर अमरीका में कहे हैं और आपको लग ही जाएगा कि वही है, लेकिन यहाँ मैंने इसको फिनिश किया है। पहला तो एक शेर ये है कि आपका शहर खूबसूरत है, ये मैंने अमरीका ही कहा था, आपका शहर खूबसूरत है, क्या यहाँ आदमी नहीं रहते। और दूसरा शेर था कि मुराजा कीजिए कि रात पर्दे पे थी उदास गज़ल,
1: रात पर्दे पे थी,
0: रात पर्दे पे थी, पर्दे पे थी उदास गज़ल, मैंने टीवी के होंठ चूम लिए।
1: क्या बात,
0: रात पर्दे पे थी उदास गज़ल, मैंने टीवी पे के होंठ चूम लिए। ये दोनों तो शेर बिल्कुल ऐसे लगता है कि नई जिंदगी से पहले नहीं हो सकते थे, लेकिन एक चीज़ है जो पहले दिन की

0: सच है, वो भी देखिए कपड़े बदल के आता है। शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि पहला खत ऐसा लगता था तितली ने फूलों को चूमा, पहला खत ऐसा लगता था तितली ने फूलों को चूमा, पलकों पलकों मोती झलके झिलमिल झिलमिल रात हुई।
1: क्या बात।
0: तो ये शेर अगर अमीर खुसरो के ज़माने में भी इसी भाषा में कहा जा सकता था। देखिए मरता कुछ नहीं, और ये मगर हाँ कि आपका शहर खूबसूरत है, क्या यहाँ आदमी नहीं रहते, बगैर अमेरिका जाए नहीं हो सकता था। फिर मैं अपना शेर सुना दूँ जो अमीर खुसरो के तलवे की धूल है। कि पहला खत ऐसा लगता था तितली ने फूलों को चूमा, पहला खत ऐसा लगता था तितली ने फूलों को चूमा, पलकों पलकों मोती झलके झिलमिल झिलमिल रात हुई।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मशहूर शायर बद्र साहब की से ली गई एक पुरानी भेंट वार्ता। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर, और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है, तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 7 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नामित मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारमैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री डी के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबोरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबोरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड़ी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांचा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की

0: सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज की इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8 सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे 7:15 और 9:30। आपकी फरमाइश, ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा 10:00। 10:30 शास्त्रीय संगीत की कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन। राग होगा गौरख कल्याण। आज शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे अनीता सक्सेना से ली गई भेंटवार्ता। विषय है लोक कला मांडना। ये थे आज के कुछ मुख्य कार्यक्रम और अब जानकारी देते हैं आपको कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। पहले सुनिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कल सुबह 11 से होगा, जिसमें 11 आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 12:30, 2:30 और 10:00। 12:30 संग्रहालय के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक सिसकियां की तीसरी कड़ी। कल दोपहर 1 महिला कार्यक्रम, 1:30 लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये चारों ही कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 2:00, शाम 5:33 पर, 6:30, 7:15 और 10:15।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 6 बजे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल रात 8 बजे। कल रात 9:30 बजे खेल जगत कार्यक्रम में सुनिएगा मोहम्मद सोहेब की वार्ता। विषय है कौन बनेगा आईपीएल 2026 का विजेता। कल रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन सुन सकेंगे। राग होगा भाव कोस। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। और अब एक नज़र डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकेंगे कल सुबह 8:30। कल सुबह 9:15 सुनिएगा गांधी चर्चा। 9:30 फिल्म संगीत और 10:00 प्रसारित की जाएगी जिले की चिट्ठी। कल सुबह 10:05 पर महिला संसार कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। कल सुबह 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में हम आपको सुनवाएंगे पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन राग होगा चारुकेशी। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती।

आपकी फिल्मी गीत। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भगवान बुद्ध के परम शिष्यों के अस्थि कलश आज भोपाल से दिल्ली भेजे गए, सांची में दिया गया गॉड ऑफ ऑनर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, देश के हर राज्य का कृषि रोड मैप बनेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्सव और उमंग के साथ मनाई गई और प्रदेश में भीषण गर्मी जारी, आज 46 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्यों अरिहंत सारिपुत्र और महामोदयान के पवित्र अस्थि कलश आज विशेष विमान से दिल्ली भेजे गए। रायसेन जिला मुख्यालय स्थित विश्व धरोहर बौद्ध तीर्थ सांची में इन अस्थि कलश को सशस्त्र सुरक्षा बलों ने गॉड ऑफ ऑनर दिया। पवित्र अवशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। रायसेन जिले के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि
1: आज मॉर्निंग में ही जो भगवान शिष्य थे उनकी पवित्र जो अस्थियां हैं दर्शन के लिए मंगोलिया ले जाने के संबंध में आज भारत सरकार के प्रतिनिधि भी और साथ में ही जो हमारे यहाँ सोसाइटी है महाबोधि सोसाइटी उनके प्रतिनिधि सभी उपस्थित थे और उनकी सबकी उपस्थिति में आज पवित्र अस्थियों को इसको बाहर निकाला गया डबल लॉक से। और एक जो परंपरा यहाँ है, जब भी पवित्र अस्थियां बाहर निकाली जाती हैं, रिलिक्स बाहर आते हैं, तो सबसे पहले जो स्थानीय स्तर पर दर्शन के लिए श्रद्धालु रहते हैं वो दर्शन करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना के बाद एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
2: हर एक राज्य का हमें कृषि रोड मैप बनाना है। हर एक राज्य, हम पूरा सहयोग करेंगे। यहां आपके कृषि का रोड मैप बनाइए, आपकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए, माटी माटी में उपस्थित तत्वों को ध्यान में रखते हुए कौन सी फसल आपके लिए उपयुक्त है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन सी उपयुक्त है, और उसके साथ साथ फसलवार भी रोड मैप बनेंगे। खेत बचाओ अभियान के बारे में आज आपको गंभीरतापूर्वक सोचना है। प्रधानमंत्री जी विजनरी लीडर है, उनको धरती के स्वास्थ्य की भी चिंता है, भारत की जनता के लिए

0: की हर सांस चलती है, किसानों के भी हित ऐसी है। लगातार खेत बचाओ अभियान पे जोर दे रहे हैं, उस पर कल प्राकृतिक खेती पर भी चर्चा होगी, संतुलित फर्टिलाइजर के उपयोग पर बात करना है। जैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान में हम लोग जुटे थे, सारे हमारे वैज्ञानिक जाएं।
1: केंद्रीय कृषि मंत्री अमित शाह ने देश के हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सरकार सीमाओं की सुरक्षा और देश में अवैध अप्रवासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी है। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र जी के निधन पर गहन दुख जताया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बद्र ने अपनी शायरी के माध्यम से मानवता के साथ जीने का संदेश दिया। समाचारों में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में ईद उल अजहा का पर्व अकीदत, भाईचारे और सौहार्द के वातावरण में मनाया गया। सुबह से ही लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। देवास जिले में ईद का पर्व हर्षोल्लास, भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। धार में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि CBSE की कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। श्री प्रधान ने बताया कि लगभग 4 करोड़ स्कैन किए गए प्रश्नों का मूल्यांकन पहली बार CBSE द्वारा OSM प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। NTA ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया है कि
2: अभी आगे आने वाले मौसम की बात की जाए तो फिलहाल अभी 2 दिनों के अंदर जो है वो सीवियर हीट वेव का रेड अलर्ट जो है वो डे 1 के लिए निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जैसे जिलों के अंदर दिया गया है। साथ ही दतिया और भिंड जैसे जिलों के अंदर डे 1 के अंदर ऑरेंज हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। डे 2 के अंदर भी हीट वेव जो है वो प्रदेश के जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट से हैं उसके ऊपर देखने को फिलहाल अभी मिलेगी। लेकिन साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी हमारे उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने जा रहा है कल से, तो उसके होते हुए जो है वर्षा की गतिविधि हमारे प्रदेश के संभागों के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो काफ़ी बढ़ेगी। और कल जो ऑरेंज अलर्ट जो है वो शिवपुर, मुरैना जैसे जिलों के अंदर हेल स्टॉर्म का भी, थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म का 50-60 KMPA के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामेघारा

में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पूल ए में रखा गया है। पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी, ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें सम्मिलित हैं। भारत कल कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इसके बाद 31 मई को जापान, 1 जून को कोरिया और 3 जून को चीनी ताइपे के खिलाफ मैच होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल की ट्विसर शर्मा मौत मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा रिटायर्ड जज गिरीवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद सीबीआई ने उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान 109 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रदेश शासन द्वारा बच्चों की रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समर कैंप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में मध्यप्रदेश को शत प्रतिशत साक्षर बनाने के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कटनी द्वारा नगरवासियों को नियमित एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। यह आकाशवाणी भोपाल है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी।

ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम सुनबे बारे सभी ग्राम लक्ष्मियन को रीता बहन की दो हाथ जोड़ के राम राम। संग में ईद उल अजहा बकरीद की बहुत बहुत बधाई। आज पूरे देश में ईद त्यौहार को बड़े उत्साह के संगे मनाओ जा रहा है। जो त्यौहार इस्लाम धर्म को एक प्रमुख और पवित्र त्यौहार होते जिए कुर्बानी के पर्व के रूप में मनाओ जाते हैं। और बिना हरो अब गर्मी के मौसम में पड़वे वाली गर्मी की बात कर लेते हैं। अभी देखो नौतपा चल रहे हैं और संग में भीषण गर्मी भी हो रही है। ऐसे मौसम में हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखवो बहुत ही जरूरी होते। जैसो कि आप और जानत हो कि हमारे देश में अप्रैल से लेके जून के बीच में कई क्षेत्रन में 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो जाते। ऐसे में शरीर से पसीने के संगे पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से निकल जाते जिसे कि थकान चक्कर डिहाइड्रेशन और पाचन से जुड़ी भई कई समस्याएं पैदा हो जाते हैं। एक इलाने गर्मी के मौसम में खान पान को विशेष ध्यान देवो बहुत ही जरूरी होते। गर्मी के मौसम में बिना हरो शरीर को हाइड्रेट रखवे के लाने केवल पानी पीवो ही काफ़ी नहीं होते। संग में तरबूज खीरा नारियल पानी संतरा दही लस्सी और छाछ जैसे खाद्य पदार्थ अपने आहार में शामिल करवो बहुत ही जरूरी है जिसे के शरीर में तरल पदार्थों को संतुलन प्रभावी और प्राकृतिक तरीके से बनो रहे। ताजे फल और सब्जियों को अपने आहार में शामिल कर वो जरूरी है। ऐसे खाद्य पदार्थ को सेवन करें जो स्वाद के संगे संगे पौष्टिकता से भरपूर होएं और जो कि हमें गर्मी से बचाएं। गर्मी में पाचन धीमो हो जाते है। एक इलाने तलो भुनो चाय कॉफी और गरिष्ठ भोजन करवे से बचने चाहिए। एक बार भोजन करवे के बजाय हर 2-3 घंटे में छोटे छोटे अंतराल पे खाने चाहिए। पौष्टिक भोजन जैसे कि अंकुरित अनाज खीरा नट्स मखाना संतुलित भोजन हमें लेने चाहिए। चाय कॉफी बासी खाना खावे से बचने चाहिए। बिना हरो अपने दैनिक आहार में साधारण सो बदलाव करके हम गर्मियों को अधिक आराम और सुगम बना सकते हैं। और अब सुन लेते हैं देवी गीत जे गाँव है बुंदेल सिंह लोधी और साथियों ने।

0: बिना हरो समय हो चलो है बुंदेली समाचारन को सुसुनत है आकाशवाणी भोपाल से बुंदेली समाचार।
1: बुंदेली समाचार।
0: भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्य अरिहंत सारिपुत्र और महामोदलायन के पवित्र अस्थि कलश आज विशेष विमान से दिल्ली भेजे गए हैं। रायसेन जिला मुख्यालय स्थित विश्व धरोहर बौद्ध तीर्थ सांची में ई अस्थि कलश को सशस्त्र सुरक्षा बलों ने गार्ड ऑफ ऑनर दो है। पवित्र अवशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पे मंगोलिया भेजे गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तारीखें और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षा अब 31 मई 6 और 7 जून को आयोजित करी जे है। आज होवे वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण फिर से निर्धारित करी गई है। NTA ने बताओ है कि रविवार को परीक्षा देवे वाले उम्मीदवारन के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं और उन्हें NTA की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड करो जा सकत है। 6 और 7 जून को परीक्षा देवे वाले शेष उम्मीदवारन के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी करे जे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही है कि CBSE की कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कछु कमियां आवे के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू करी जे है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री प्रधान ने कही है कि अधिकारी सुनिश्चित करें के सभी विद्यार्थियों की शिकायत को समाधान करो जा सके और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित करी जाए। श्री प्रधान ने बताओ है कि लगभग 4 करोड़ स्कैन करे गए पृष्ठों के मूल्यांकन पहली बार CBSE द्वारा OSM प्रक्रिया के माध्यम से करे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगन के संगे अपने विचार साझा कर हैं। जे कार्यक्रम ई मासिक रेडियो कार्यक्रम के 134वां एपिसोड हुई है। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लाने सुझाव 29 मई तक स्वीकार करे जे हैं। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर भद्र को आज भोपाल में निधन हो गया है। उनने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर व्याप्त है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लाने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित करो गया है। तो हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्हें पोस्ट करो है कि आज हमारी जवान उर्दू थोड़ी और गरीब हो गई है।

मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र जी के निधन पे गहरो दुख जताओ है और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री ने कही है कि डॉक्टर बद्र ने अपनी शायरी के माध्यम से मानवता के साथ जीने के संदेश को दो है। देश के संगे संगे प्रदेश के विभिन्न शहरों में ईद उल अजहा बकरी ईद को पर्व अकीदत भाईचारे और सौहार्द के वातावरण के संगे मनाओ जा रहा है। सवेरे से ही लोग विशेष नमाज अदा करके देश में अमन चैन और तरक्की की दुआ मांगे हैं। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगा के ईद की मुबारकबाद दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। देवास जिले में ईद को त्यौहार हर्षोल्लास भाईचारे और सौहार्द के संगे मनाओ गो। धार नमाज अदा करवे के बाद लोगन ने एक दूसरे के गले मिलके ईद की मुबारकबाद दी है। प्रदेश में नौतपा के समय गर्मी के संगे आंधी और बारिश को मिलो जुलो असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिन से कई जिलों में बारिश दर्ज करी गई, इसके बावजूद लू और तेज गर्मी

उल्लास भाईचारे और सौहार्द के संगे मनाओ गो। धार नमाज अदा करवे के बाद लोगन ने एक दूसरे के गले मिलके ईद की मुबारकबाद दई है। प्रदेश में नौतपा के समय गर्मी के संगे आंधी और बारिश को मिलोजुलो असर देखवे को मिल रहो है। पिछले 3 दिना से कई जिलन में बारिश दर्ज करी गई, ई के बावजूद लू और तेज गर्मी को असर कम नहीं भव है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 46 जिलन में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी करी है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10वें दिना प्रदेश के सबसे गर्म शहर में गिने जा रहे हैं। दोनों जगह आज भी तेज लू को रेड अलर्ट जारी करो गो है। समाचार समाप्त भाई।

0: बुंदेली समाचार।
1: बिनहरो हर साल 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाओ जाते। इको मनावे को मुख्य उद्देश्य महावारी के समय स्वच्छता के लाने जागरूकता फैलावो है और ई विषय से जुड़ी भई सामाजिक रूढ़िवादी सोच को दूर करवो है। जो दिवस ज्यादा महत्वपूर्ण जब होते कैसे के ई के द्वारा महिलाओं और किशोरियन को सुरक्षित और गरिमापूर्ण मासिक धर्म प्रबंधन की सही जानकारी दी जाते। खराब स्वच्छता के कारण होवे वाली गंभीर संक्रमण और बीमारियों से बचाव के उपाय बताना भी ई दिवस को मुख्य उद्देश्य होते। बिनहरो महावारी एक सामान्य जैविक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करवे के लाने समाज को जागरूक करवो बहुत ही जरूरी है। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रन के किशोरियन के लाने मासिक धर्म स्वच्छता योजना भी चलाई जा रही है, जी को लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करवो है। ई दिना विशेष शिविर कार्यशाला और अभियान के माध्यम से महिलाओं के स्वास्थ्य शिक्षा और सशक्तिकरण पे जोर दव जात है। और अब सुन लेते हैं एक लोकगीत, जी गाँव है अर्चना खरे ने।

0: बिनहरो मांडना लोक कला मध्य और पश्चिम भारत की ग्रामीण संस्कृति में गहराई से समाई है। मांडना हमारी संस्कृति और परंपराओं की कला है। आज की भेंटवार्ता एक लोक कला से संबंधित है। विषय है लोक कला मांडना और विषय की विशेषज्ञ हैं अनीता सक्सेना और भेंट कर रही हैं हमारी पुष्पा सिंह गौर बहन। सो सुनत हैं जे भेंटवार्ता।
1: बहनों, लोक कला के बारे में आप सभी भलीभांति परिचित हैं। लोक कला नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति परंपराओं और संस्कारों का प्रतीक है। आज हम लोग यहाँ पर मालवा की लोक कला मांडना पर बातचीत करेंगे अनीता सक्सेना जी के साथ, जो मालवा की लोक कला पर पिछले 30 वर्षों से काम कर रही हैं। आइए जानते हैं लोक कला के बारे में। अनीता सक्सेना जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार अनीता जी। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लोक कला आखिर क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ?
2: लोक कला यानी लोक की कला
1: जी,
2: और लोक यानी हम सब की कला है। इसका जन्म भी हम यह कह सकते हैं कि सदियों पहले जब मानव का जन्म हुआ उसके साथ ही इस कला का भी जन्म हुआ। लोक कला दरअसल मानव के मन की अभिव्यक्ति है।
1: जी बिल्कुल मैडम जी, हमारी बहनें समझ गई होंगी कि लोक कला आखिर क्या है और इसका जन्म कैसे हुआ। अब बात आती है लोक कला का प्रादुर्भाव कैसे हुआ।
2: मनुष्य अपने भावों को दो तरह से व्यक्त करता है
1: जी,
2: या तो लिखकर या बोलकर। जब मानव गुफाओं में रहता था तो वहाँ चित्र बनाता था। इन चित्रों के माध्यम से वह अपने साथियों को, अपने बच्चों को बताता था कि जंगली जानवर कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, उनका शिकार कैसे किया जाता है, हमारे देवी देवता कौन हैं, उनकी पूजा कैसे करते हैं। ऐसे अनेक चित्र हैं जो गुफाओं में देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे मानव सभ्य होता गया, पहाड़ों से उतरकर जमीन पर आता गया, वह पहले गुफाओं में रहता था तो शिकार करता था, बाद में जमीन पर आया तो खेती करने लगा, और खेती करने लगा तो गांव बसे, और जब गांव बसे तो गांव में चूंकि घर कच्ची मिट्टी के होते हैं तो वह उन पर चित्र बनाने लगा
1: जी।
2: धीरे धीरे उसके बनाए गए चित्र और सुंदर होते गए, उनमें परिपक्वता आती गई, और मनुष्य ने सिर्फ चित्र ही नहीं बनाए, उसने चित्रों के साथ गीत भी रचे, लोक कथाएं भी गढ़ी, लोक संगीत भी बनाया और वाद्य यंत्र भी बनाए। इस तरह से यह कहा जा सकता है कि ये सब लोक के द्वारा लोक के लिए बनाई गई कलाएं हैं। ये सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

0: इन्हें कोई सिखाता नहीं है। ये सभी कलाएं पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती हैं। महिलाएं काम करती हैं तो गीत गाती हैं, पूजा पाठ करती हैं तो गीत गाती हैं, और मांडना बनाती हैं तब भी गीत गाती हैं। ये उनके असीम आनंद के पल होते हैं। मांडना सिर्फ एक लोक कला ही नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों की प्रतीक है। अनगढ़ रेखाओं और बिना किसी तामझाम के एकदम साधारण तरीके से मांडना को बनाया जाता है, लेकिन बन जाने के बाद वो इतना खूबसूरत दिखता है कि साधारण होते हुए भी असाधारण बन जाता है।
1: बिल्कुल, आपका मानना है, कहना है कि ये सब लोक के द्वारा, लोक के लिए बनाई गई कलाएं हैं। ये सभी कलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और बिल्कुल, जो आपने मांडना के बारे में बताया कि मांडना बहुत खूबसूरत दिखती है, तो बिल्कुल हमारी बहनें जानना चाहेंगी कि मांडना कैसे बनाया जाता है।
0: बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि गाँव में जो आंगन होता है उसको गोबर से लीपा जाता है, और जब भी आंगन को लीपा जाता है तो सबसे पहले उसमें शगुन की 5 बिंदी गेरू से रखी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर पर देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। और बाद में उस आंगन में सफ़ेद छुई मिट्टी आती है, उससे मांडना बनाया जाता है। ये सभी मांडने खुशियों के प्रतीक होते हैं, समृद्धि के प्रतीक होते हैं।
1: जी, जैसे अभी आपने बताया कि मांडना कैसे बनाया जाता है, तो बिल्कुल हमारी बहनें हर पर्व पे, हर त्यौहार पर बनाएंगी। अब बात आती है कि इन्हें कब बनाया जाता है।
0: यदि हम हिंदू कैलेंडर को देखें तो चैत्र माह से लेकर फाल्गुन माह तक जितने भी त्यौहार आते हैं, जैसे होली, भाई दूज, अक्षय तृतीया, बट पूजा, रक्षाबंधन, नौमी, दिवाली, देव उठनी एकादशी और संक्रांति, इन सभी त्यौहारों पर मांडने बनाए जाते हैं। त्योहारों के अलावा घर में कोई पारिवारिक उत्सव हो, जैसे बच्चे का जन्म हो, लड़का या लड़की की शादी हो, उनमें भी जितनी पूजाएं होती हैं, हर पूजा में मांडने और चौक बनाए जाते हैं। ये सभी मांडने यूं ही नहीं बनते, इनमें उन त्योहारों और मांगलिक अवसर से जुड़ी हुई बातें बताई जाती हैं। सब मांडने एक दूसरे से अलग होते हैं। लड़के की शादी होती है तो अलग मांडना बनता है, और लड़की की शादी होती है तो अलग मांडना बनता है।
1: जी बिल्कुल, हमारी बहनें चैत्र माह से लेके फाल्गुन माह तक जितने भी त्यौहार आते हैं मांडना बना सकती हैं। अब बात आती है, जैसे अभी आपने कहा कि मांडना और चौक बनते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है?
0: बिल्कुल, चौक जो होता है वो पूजा के दिन बनता है।
1: जी,
0: और चौक में स्वास्तिक बनाया जाता है, साथिया जिसे हम लोग बोलते हैं, चौक में स्वास्तिक बनाया जाता है और ये चारों दिशाओं में एक जैसा बढ़ता हुआ बनाया जाता है।
1: जी,
0: चौक के चारों तरफ मांडना बनाया जाता है गोलाकार। चौक पर गेहूं रखकर चौकी रखी जाती है और भगवान जी की स्थापना करके उनकी पूजा की जाती है। यह अंतर होता है मांडना और चौक में। सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि चौक के ऊपर कोई पैर नहीं रख सकता, क्योंकि वहां पूजा होती है, मांडना के ऊपर सब चल सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मांडना और चौक में क्या अंतर होते हैं। और जब बात आती है कि जैसे मांडना आंगन में भी बना सकते हैं, कहते हैं जमीन पर कहीं पर भी बना सकते हैं, तो मांडना कहाँ कहाँ बनाए जाते हैं?
0: मांडना जमीन पर भी बनते हैं और दीवार पर भी बनते हैं। जमीन पर जो मांडना बनाए जाते हैं, तो जमीन को गोबर से लीप कर उसके ऊपर सफ़ेद छुई मिट्टी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि सफ़ेद छुई मिट्टी से इन्हें बनाया जाता है। इनको बनाने के कई तरीके हैं। छोटी छोटी बिंदी रखकर उन्हें जोड़ते जाते हैं, इस तरह से एक मांडना बनता है। तो दूसरा होता है एक कट बूंद का मांडना, जिसमें 2 बूंद के बीच में एक बूंद रखकर फिर उन्हें रेखाओं से जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त भी और कई प्रकार के मांडने हैं जो बनाए जाते हैं। और दीवार पर जो मांडना बनते हैं, उन्हें गेरू से बनाया जाता है। ये जो मांडने होते हैं, ये त्योहारों से संबंधित होते हैं, इनके अंदर एक कहानी भी होती है तथा इनकी पूजा भी की जाती है। जैसे सावन में नौमी बनती है, जिसमें राखी पर भाई और बहन के स्नेह को दिखाया जाता है। नाग पंचमी पर नाग के चित्र बनाकर उनकी कहानी कहकर उनकी पूजा करते हैं। श्रवण कुमार जी का चित्र बनाया जाता है, जिसमें वह अपने बूढ़े माँ बाप को कंधे पर, कांवर पर बैठकर लेकर जा रहे हैं।
1: जी,
0: इन सभी चित्रों में शक्ति के प्रतीक सूरज और चांद जरूर बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राम, लक्ष्मण, पांचों पांडव, छठे कृष्ण जी की लीलाएं, इन सबको बनाने के साथ साथ मोर, तोता, बंदर आदि पशु पक्षी भी बनाए जाते हैं। इनके चारों तरफ बिंदुओं को जोड़कर कई तरह की खूबसूरत बेलें भी बनाई जाती हैं। पहले इनको बनाने में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था। गेरू से लाल रंग भरा जाता था, पत्तों से हरा रंग आता था, हल्दी से पीला रंग, पर आजकल तो बदल गया है समय, तो फेविक्रिल से भी ये मांडने बनने लगे हैं।
1: लेकिन जहाँ तक हो, प्राकृतिक रंगों से ही हमारी बहनें मांडना बनाए। और मांडना तो देखो जमीन पर भी बना सकते हैं, जैसे अभी आपने बताया, दीवार पर भी बना सकते हैं, आंगन में भी बना सकते हैं।

0: जी
1: और सबसे अच्छी बात बताई, पशु पक्षियों के चित्र भी बना
0: जी
1: सकते हैं, तो बड़ा सुंदर लगता है। मैडम जी, अब बात आती है कि इस तरह की कथाओं चित्रों के माध्यम से बच्चों को बहुत जानकारी मिलती होगी। जब हमारी बहनें माड़ना के बारे में जानेंगी तो हमारे बच्चों
0: जी
1: को भी आगे सिखाएंगी।
0: बिल्कुल
1: जी, तो आप क्या
0: बिल्कुल,
1: कहना
0: इन
1: चाहेंगी?
0: मांडना को बनाने का उद्देश्य यही है कि आगे आने वाली पीढ़ी हमारी संस्कृति को जाने, हमारे त्योहारों को पहचाने,
1: जी
0: हमारे घर के जरूरी कार्य क्या क्या हैं, इनको भी इन मांडना में दिखाया जाता है। जैसे दही बिलोना, कपड़े रखना, धान कूटना, पशुओं को चराना, जंगल से लकड़ी लेकर आना, कुएं से पानी भर कर लाना, खाना बनाना, ये सब छोटे छोटे चित्र इनमें दिखाए जाते हैं।
1: जी
0: और सबसे बड़ी जो बात है इन चित्रों में, प्रकृति की, प्रकृति और पर्यावरण का बहुत महत्व दर्शाया जाता है। जो पेड़ हमें जीवन देते हैं, महिलाएं उनकी पूजा तो करती ही हैं, घर की दीवार पर उनके चित्र बनाकर उनको पूजती भी हैं। जैसे नीम, बरगद, पीपल, आंवला, तुलसी, इन पेड़ों को महिलाएं पूजा करके रक्षा सूत्र बांधती हैं, तथा इन पेड़ों को काटने से पाप लगता है ऐसी शिक्षा बच्चों को प्रारंभ से ही देती हैं।
1: जी
0: यही कारण है कि गांव में आज भी नीम, बड़, पीपल, आंवला, तुलसी, बेलपत्र, इन पेड़ों को कोई काटता नहीं है। और यदि हम वृक्षों को त्योहारों से जोड़कर देखें तो हम देखते हैं कि देवउठनी एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह होता है,
1: जी
0: सोमवती अमावस्या पर पीपल की पूजा होती है, ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को बट सावित्री में, बट यानी बरगद की पूजा होती है, कार्तिक शुक्ल नवमी आंवला नवमी के रूप में पूजी जाती है,
1: जी
0: भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कजली तीज में नीम की पूजा होती है, और गुड़ी पड़वा को नीम की पत्ती भी खाई जाती है।
1: जी जी
0: इस तरह से मालवा के लोक चित्र सिर्फ एक सुंदर लोक कला ही नहीं है, बच्चों को संस्कार देने के साथ साथ इनमें वृक्षों के बहुत महत्वपूर्ण स्थान को भी बताया गया है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपका मानना है कि बच्चों को संस्कार देने के साथ साथ इनमें वृक्षों को भी महत्वपूर्ण स्थान
0: जी
1: दिया गया है,
0: जी
1: पर्यावरण को भी
0: शामिल
1: संरक्षण
0: किया
1: मिलेगा।
0: गया जी
1: जी बिल्कुल। मैडम जी, अब बात आती है, आपने मांडना के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे दी, इनसे संबंधित और कोई विशेष बात आप बताना चाहेंगी हमारी बहनों के लिए?
0: जी मांडना की बहुत बड़ी विशेषता है वह ये है कि इसको बनाने में किसी भी तरह का कोई भी ज्योमेतीय उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता ही नहीं होती है। स्केल, रबर, पेंसिल, चांदा, प्रकार किसी की भी नहीं, बिना किसी मदद के ये जो मांडना बनते हैं ये सिर्फ रेखाओं, बिंदुओं के जोड़ और घटाव से बनते हैं, और चारों दिशाओं और आठों कोणों में एक साथ बढ़ते चले जाते हैं। अनगढ़ रेखाओं और बिंदुओं का जोड़ घटाव, इनका गणित है मांडना। और मुझे कभी कभी आश्चर्य भी होता है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मनुष्य इतने सुंदर डिजाइन कैसे बना लेते थे।
1: जी मैडम जी, आपने इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी हमारी बहनों के लिए दे दी, अंत में आप कोई संदेश हमारी बहनों को देना चाहेंगी, श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी?
0: चूंकि ग्राम लक्ष्मी कार्यक्रम है और
1: जी,
0: मेरी
1: जी।
0: बहुत सारी बहनें इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, तो मैं उनसे जरूर थोड़ी सी बात करना चाहूंगी कि मैं मालवा क्षेत्र की लोक कला मांडना पर काम तो कर रही हूँ और पिछले 30 वर्षों से कर रही हूँ, और आज जबकि विकास के नाम पर गांव शहरों में विलीन होते चले जा रहे हैं और कच्ची दीवारों वाले घर समाप्त होते जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरत है कि इन कलाओं को संग्रहित करके सुरक्षित किया जाए। मेरा यही प्रयास रहता है और मैं कार्यक्रम सुनने वाली मेरी सभी बहनों से और श्रोताओं से यह अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप मांडना बनाना जानती हैं और इस कला के संरक्षण के लिए कुछ भी कर सकती हैं।
1: बहनों, आपने अभी लोक कला मांडना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सुनी अनीता सक्सेना जी से। हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी लोक कला का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, मांडना कैसे बनाया जाता है, इन्हें कब बनाया जाता है, मांडना और चौक कैसे बनते हैं, मांडना कहाँ बनाए जाते हैं, सारी जानकारी अनीता सक्सेना जी से सुनी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस जानकारी का भरपूर लाभ जरूर उठाएंगी। अनीता सक्सेना जी, आपने इस कार्यक्रम के लिए आई और आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बिना हरो जे सुनी आपने भेंटवार्ता, जी को विषय है तो लोक कला मांडना, और जानकारी दे रही हती विशेषज्ञ अनीता सक्सेना, भेंट कर रही हती पुष्पा सिंह गौर बहन। भेंटवार्ता के माध्यम से आप और उनको जानकारी मिली हुई है कि हमारी लोक कला कितनी धनी है और ये सहेजवे के काम हर स्तर पे होने चाहिए। और अब सुन लेते हैं एक बधाई गीत, जिए गाओ है मंजू मिश्रा ने।

बिना रोग कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं औषधीय पौधों की खेती के बारे में। औषधीय पौधों की खेती किसानों के लाने कम लागत और कम पानी में अधिक मुनाफे को एक बेहतरीन विकल्प है। अश्वगंधा, तुलसी, गिलोय और एलोवेरा जैसी फसलें उगावो तो आसान होते हैं और आयुर्वेदिक दवाई और सौंदर्य प्रसाधन के बाजार में इनकी मांग भी भारी होते। अगर बिना हरो औषधीय खेती के क्षेत्र में आप कदम रखो चाहत हो तो आप और इन प्रमुख पौधों की शुरुआत कर सकते हो। जैसे कि अश्वगंधा, ई की सूखी जड़ों की भारी मांग होते और लगभग 5-6 महीना में ई की फसल तैयार हो जाते। सफ़ेद मूसली, ई पौधा की भी बेहद कीमती जड़ी बूटी होते जो फसल 8-9 महीना में तैयार होकर भारी मुनाफा देते। तुलसी, एलोवेरा, लेमन ग्रास, पामारोजा ऐसे और भी कई पौधा हैं जिनकी खेती करके अधिक लाभ कमाओ जा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें जानवो बहुत ही जरूरी है, जैसे कि बीज और रोपण, प्रमाणित नर्सरी से अच्छे बीज और पौधा खरीदने चाहिए। इन्हें बारिश के मौसम जुलाई अगस्त में लगाने चाहिए। भूमि और जलवायु और मिट्टी को पीएच मान देख के खेती करने

चाहिए, खाद और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, जैविक खाद वर्मी कंपोस्ट खाद को उपयोग करने चाहिए। इन पौधन में कीड़े कम लगते हैं, लेकिन शुरुआत में निराई गुड़ाई अच्छी होनी चाहिए। और अब सुन लेते हैं लोकगीत, जे एक लोक भजन है, जे गाँव है चंदा श्रीवास ने।

बिना हरो ग्राम लक्ष्मी होए और रसोई घर की कछु बातें ना होए, ना कोई व्यंजन होए, तो ऐसा तो हो नहीं सकत है। आज हम बात कर रहे हैं मैरिनेशन की। बिना हरो हर एक खाने के स्वाद और खुशबू बढ़ाए के लाने मैरिनेशन को इस्तेमाल करो जाते हैं। आज हम कोई व्यंजन विधि नहीं बताए हैं, आज हम मैरिनेशन के बारे में बताए हैं। सबसे पहले दही वालों मैरिनेशन, इस ई को जो हम इस्तेमाल करते हैं पनीर टिक्का, कटहल, ग्रिल सब्जी आदि के बनाए में कर सकते हैं। अभी यह करत कैसे हैं, तरीका होते है दही, अदरक लहसुन को पेस्ट, हल्दी, हरी मिर्च पाउडर, गरम मसाले, नींबू को रस, सरसों तेल, सबको मिला के गाढ़ो पेस्ट बना लेते हैं और फिर इन्हें हम सब्जी में लपेट सकते हैं और आराम से चाहे सेक लो चाहे तल लो। ऐसे ही हम सूखे मसालों को भी मैरिनेशन कर सकते हैं। सूखे मसाले में जैसे अपन ले सकते हैं नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा, अमचूर, थोड़ा सा तेल मिला के ये बनाओ जा सकते हैं और ये भी हम भिंडी फ्राई, कॉर्न, आलू रोस्ट इन सब चीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही हम हरी चटनी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी चटनी को मैरिनेशन कैसे तैयार करते हैं, इसमें हम पुदीना, हरी धनिया, हरी मिर्ची, नींबू को रस, काली मिर्च पीस के गाढ़ो पेस्ट बना लेते हैं, फिर जैसे पनीर होगा ऐसी सब्जियन में लपेट के हम इन्हें बनाऊते हैं। इस तरह से हम अपने खाने को और अच्छा स्वाद बढ़ा सकते हैं और पोषण भी बढ़ा सकते हैं। अब चलत चलत कल के कार्यक्रम आप और उनको बता देते हैं। काल सवेरे कृषि चर्चा में सुनियो कृषि उद्यमिता से आए वार्ताकार हुई हैं डॉक्टर आकांक्षा शर्मा और संजय के बिरिया में सुनियो आपको अपनों कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। अब दीजिए रीता बहन को आज्ञा, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। ये प्रसारण आकाशवाणी भोपाल से किया गया। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में।

0: Surgiome.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन।
2: सर्वोच्च न्यायालय के कल के अहम फैसले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को पूरी तरह वैध ठहराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास SIR करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद विपक्षी पार्टियों के SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर पूरी तरह विराम लग गया। विपक्ष के इन सवालों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनाव आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत जी, स्वागत है आपका।
3: नमस्कार।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरू करने के पहले आइए हम सुनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है।
2: आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, ये जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं, जो स्वच्छता की बात करते हैं इलेक्टोरल रोल की, इसमें SIR का कितना महत्व रहता है?
3: बहुत ही महत्व रहता है क्योंकि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो है शुरू होता है इलेक्टोरल रोल से। कोई भी देश का, खाली भारत का नहीं, कोई भी देश का इलेक्टोरल रोल जो है वो अगर सही हो तो फिर इलेक्शन साफ होता है, फ्री फेयर होता है और इलेक्शन के नतीजे लोगों का विल को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए सारी चीज का शुरुआत है वोटर लिस्ट से, जिसको इलेक्टोरल रोल बोला जाता है। और भारत के इलेक्टोरल रोल जैसे है कि करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंचने वाला था, दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्टोरल रोल है, शायद बहुत सारे कंट्री का पॉपुलेशन मिलाकर भी 100 करोड़ नहीं होगा, लेकिन वो 100 करोड़ में अभी एक पॉज लग गया है SIR के जरिए। अभी थोड़ा सा रिवर्स होगा, कुछ नंबर्स घटेंगे। और घटेंगे क्यों? अच्छे कारण से घटेंगे। अच्छे कारण से इसलिए घटेंगे क्योंकि सब घोस्ट नेम्स थे, ये नेम का कोई महात्म्य नहीं था। जो इलेक्टोरल रोल में जो मरे हुए लोगों का नाम हो या जो चले गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के उन लोगों का नाम हो या जो उन लोगों का नाम दो तीन जगह में हो उनका नाम हो तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस सब को साफ करने के लिए और जो लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं रहना चाहिए उनको नाम को निकालने के लिए और खास करके आर्टिकल 326 के अनुसार कौन कौन एलिजिबिलिटी है हमारा भारत की इलेक्टोरल रोल में रहने के लिए, नागरिक होना चाहिए, 18 साल के होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, ये सब तो देखना होगा ना। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन में ये सब चीज को अच्छी तरह देखा गया क्योंकि उसमें एन्यूमरेशन होता है फ्रेश। एक बार मान लीजिए कि एक बार एक फ्रेश लिस्ट जैसे बनता है वो बात है, क्योंकि हर साल जो होता है समरी रिविजन उसमें क्या है कि उसी लिस्ट के ऊपर करेक्शंस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। इसमें लेकिन मान लीजिए कि पूरा एक बार एक समूचा नया इलेक्टोरल रोल आपके सामने रखा गया है और जो लोग रहना चाहिए वो रहते हैं, जो लोगों को नहीं रहना है उनको निकाला जाता है, माने वो नाम को, लोगों को नहीं उस नाम को, और 20-22 साल के बाद हो रहा है। तो इससे लगता है कि अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल अगर इलेक्शन कमीशन का एक दायित्व है आर्टिकल 324 के तहत, तो वो काम जो

0: 20-22 साल के बाद एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से वो काम दुरुस्त तरीके से होता है, तो इसलिए होना चाहिए।
1: जो प्रक्रिया हुई, जो बिहार से शुरू हुई और बाद में फिर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया सेकेंड फेज में, और थर्ड फेज का काम अभी चल रहा है, इस बीच में एक विवाद खड़ा हो गया SIR को लेकर, तो इन सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो पूरा विवाद रहा सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग आने के पहले?
0: देखिए, जितने अथॉरिटीज होते हैं देश में, या मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, गवर्निंग एजेंसीज होते हैं, ये सबसे इलेक्शन कमीशन थोड़ा अलग तरह के हैं। इनका काम ही एक हिसाब से पॉलिटिकल लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कैंडिडेट के साथ, रोज काम इन्हीं के साथ ही होता है। इनका पंजीकरण करना, इनका कैंपेन को रेगुलेट करना, इनका इलेक्शन कंडक्ट करना, इनका नतीजे निकालना, यही सब इलेक्शन कमीशन काम है। सिंबल्स देना, ये सब काम है। तो ये पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकता है एक हिसाब से। तो उसका मतलब नहीं है कि जरूर विवाद हो, उसका मतलब नहीं है कि जरूर पॉलिटिकल एक्यूजेशंस हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सवाल जरूर होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि भाई SIR क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि भाई SIR इस तरीके से क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है लोगों को तकलीफ देता है, इस तरह से नहीं करके ऐसे करना चाहिए, समय इतना लगना चाहिए। जो प्रोसीज्योर एलिमेंट है उस पर बार बार सुझाव आना चाहिए और बार बार प्रश्न भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का दायित्व तो बनता है वो सुझाव को लेके कुछ परिवर्तन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन करेक्शन कोर्स करेक्शन करना है, किया भी है इलेक्शन कमीशन, कुछ अपने आप में किया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर किया है। अभी 60 करोड़ लोगों का SIR हो चुका है, करीब 40 करोड़ लोगों का होना बाकी है, बड़े बड़े स्टेट्स में जनरली हो चुका है। तो इसमें जो सवाल आए लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों का जो मार्जिनल पॉपुलेशन है, जैसे अर्बन नहीं है, जो लिखा पढ़ी में बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से होता नहीं है, और वो जाके पेपर के पीछे भाग रहे हैं या कहां अपील करने के लिए भाग रहे हैं, तो वो डिफिकल्टीज को एक्नोलेज करना पड़ेगा और कुछ हद तक एड्रेस भी हुआ है। लेकिन उसका राजनीतिकरण एक अलग बात है। वो राजनीतिकरण जब हो जाता है उसका मतलब यह है कि आपका पॉलिटिकल आउटकम को नजर में रखते हुए आप किसको काठगढ़ में खड़ा कर सकते हो, जैसे कि आप इलेक्शन कमीशन को आरोप लगा सकते हो और कुछ कर सकते हो, वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बढ़िया बात है ही नहीं। आप देखिए, एक तरफ बात चल रहा है कि भाई इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठिया को निकालना है, एक तरफ बात चल रहा है कि लोगों का अधिकार से वंचित नहीं करा जाना चाहिए, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट लोगों का हो रहा है। मुझे लग रहा है ये सब है राजनीतिक अल्फाज, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो अल्फाज है वो है दो चीज। एक है कि भाई जो डेड हैं, जो डुप्लीकेट हैं, जो माइग्रेटेड हैं, इनका नाम को जरूर निकालना है, ASD वोटर्स, और बाकी जो 326 में जो वोटर लिस्ट में जिनका होना चाहिए लोगों का एलिजिबिलिटी, उनके हिसाब से उनको अगर नहीं है तो उनको निकालना चाहिए, बाकी लोग जो एलिजिबल है उनको जोड़ना चाहिए। नो वन एलिजिबल शुड बी लेफ्ट आउट, नो वन इनएलिजिबल शुड बी इन। इस तरह का बात अगर हो तो तरीके की बात चलता है, फिर ये लोकतांत्रिक होता है, संविधानिक बात होता है, राजनीति को एक बार छोड़ देना चाहिए। लेकिन राजनीति, जैसे आप और हम जानते हैं और देखे भी हैं इस सिलसिले में, राजनीति बहुत हद तक इसके अंदर आ गया और राजनीतिक सवाले आए और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, तो आरोप तो किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। वो सब थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है ना, टू थ्रो द बेबी टुगेदर विद बाथ वाटर, अब बाथ वाटर को आप निपटाइए लेकिन उसका मतलब बच्चा को भी फेंक देंगे क्या? तो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये अवॉइडेबल था, लेकिन आज की तारीख में, खास करके आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही ये चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का मोहर लगाया है उसके बाद विवाद अंत होना चाहिए और पीसफुल स्मूथ तरीके से सबका कोऑपरेशन के साथ बाकी SIR के जितना प्रक्रिया है, ये वाली और आने वाली कभी भी SIR होगा, वो ठीक से हो जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी जिम्मेवारी बनता है, जो जो सवाल करें सुझाव दें सुने, जो सवाल करें उसके जवाब दें।
1: सुप्रीम कोर्ट के ओवरऑल जजमेंट को कैसे व्यू करते हैं?
0: एक तो है कि आप आर्टिकल 3326 में जो वोटर इंडिया में इलेक्टर होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसमें एक है कि वो सिटीजन होना चाहिए, तो भारत की सिटीजन को ही खाली वोटर लिस्ट में डाल सकता है कौन? डालेगा इलेक्शन कमीशन, डालेगा तो इलेक्शन कमीशन रख सकता है, हाँ भाई ये सिटीजन है इसलिए वोटर लिस्ट में है, ये सिटीजन नहीं है इसलिए वोटर लिस्ट में नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन का एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोला है बहुत सही बोला है, क्योंकि SIR सिटीजनशिप या घुसपैठिया या इन्फिल्ट्रेटर बाहर के नागरिक, ये चीजों का सोल्यूशन नहीं है। SIR सोल्यूशन नहीं है ना, नागरिकता किसका है नहीं है उसका पुलिसिंग करना इलेक्शन कमीशन का काम है। सिटीजनशिप एक्ट अलग है, उसका अथॉरिटीज अलग है।

0: और वो जो अथॉरिटीज हैं वो देखें कैसे लोगों को बाहर देश के लोग हमारे यहाँ आके नहीं रहे, यहाँ के नागरिक नहीं बने, या नागरिक को जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिले, ये सब देखने का काम अलग है। सिटीजनशिप एक्ट है इनका, है एक है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन का, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, इसी के तहत। लेकिन जो इलेक्टोरल रोल में रखेंगे वो नागरिक होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डायलेमा को या ये जो चीज को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, और पहले भी ऑब्जर्वेशन दिया था इलेक्शन कमीशन, ये तो मेरे को लगता है कि जो जजमेंट था बहुत हद तक एंटिसिपेटेड था। ये इतना सारे महीनों से चल रहा है ये सारे हियरिंग्स, कि इसमें बहुत कीमती ऑब्जर्वेशंस दिया है बीच में सुप्रीम कोर्ट, वो फाइनली जजमेंट में कन्वर्ट हुआ कल। लेकिन उसने बोला है कि जो फाइनल सिटीजन कोई है या नहीं है उसको डिसाइड करेगा सिटीजनशिप एक्ट, इलेक्शन कमीशन का नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को अगर लगा कि किसका सिटीजनशिप का वैलिडिटी नहीं है वोटर लिस्ट में होने के लिए, तो वो वोटर लिस्ट से उसको निकाल सकता है। वो एक लिमिटेड पर्पस, अगर माने लिमिटेड पर्पस है, लेकिन उसका सिटीजनशिप का जो समूचा पर्सनालिटी है एक सिटीजन का वो डिसाइड करेगा, उसके लिए एक्ट है, अथॉरिटीज अलग है। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग करके दिखाया है, और ये भी सही है, पहले भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन आया है और ये भी सही है।
1: सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बाद इशू सेटल्ड माना जाए?
0: मैं तो सोच रहा हूं बिल्कुल सेटल्ड है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई सेंसिटिवनेस था वो बॉर्डर स्टेट ऑफ जैसे वेस्ट बंगाल वगैरह में, ये सब स्थिति ज्यादा था, एक तो पॉलिटिकल साइड से, एक बार रियल टोपोग्राफिकल या ज्योग्राफिकल सेंस में या हिस्टोरिकल सेंस में या सोशियोलॉजिकल सेंस में, वहां इस इशू का ज्यादा एक रिलेवेंस था, वैलिडिटी था, और पॉलिटिसाइज तो था ही, तो इसीलिए वहां से अगर निकल गया है। और अभी मैंने जैसे कहा ना, 60% आबादी जो है, वोटर्स आबादी जो है, 100 करोड़ मान लो रफली थे 2024 में, शायद वही था, करीब 100 करोड़ वोटर होने वाले थे, और उसमें से अगर 60 करोड़ का हो गया, 40 करोड़ का तो हो जाने का तो कोई नहीं होने का मुझे नहीं लग रहा है। और खास करके सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल मोहर लगा दिया तब तो ये सब कुछ क्लियर क्लियर क्लियर हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा आपको और आपके श्रोताओं को, कि इलेक्शन कमीशन पिछले 10-15 साल से एक बड़ा मुहिम में जुड़ा हुआ था। उसका है कि जो जो लोग हैं एलिजिबल सब पंजीकृत हो, और जो पंजीकृत हैं सब वोट दें, तो लोगों का भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकतंत्र में बहुत बड़ा मुहिम चला है, और उसका नाम एक आप स्वीप जानते हैं, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। बहुत अच्छे नतीजे आया था, जो टर्नआउट में जो लास्ट 10-15 साल में इजाफा हुआ है रजिस्ट्रेशन में भी, वो इसी का कारण से ये एक इलेक्शन कमीशन का मुहिम था। मुझे लग रहा है कि ये SIR ने जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको निकालने का जो एक कैरेक्टर बन के उभरा है, यही उसका कैरेक्टर है बेसिकली, क्योंकि जो नहीं है उनको निकालो, लेकिन जो एलिजिबल हैं देश में उनको जोड़ो, वो भी इसका एक पर्पस है। लेकिन जो देखा लोगों ने, इस चीज ज्यादा उभर कर आया कि भाई नाम लोगों का निकल जा रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार और वो माहौल बनना चाहिए, कैंपेन बनना चाहिए, कि जो जो लोग देश में जहां जहां हैं जो एलिजिबल हैं आर्टिकल 326 के अंदर, तो उनको सबको जोड़ा जाए। फिर जोड़ने का एक मुहिम अच्छी तरह हो, पंजीकरण और वोटिंग में, तो फिर डेमोक्रेसी में थोड़ा भागीदारी का और एक परिवेश या माहौल बनेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन SIR के ऊपर मुझे लग रहा है कि डिबेट जो है अंत है, और उसके हमें आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, सिटीजन्स को, वोटर्स को, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबको आगे बढ़ना चाहिए अभी।
1: धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत मिली फिल्म से, आवाज़ किशोर।

रजनीकांता। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, योगेश का गीत और सलील चौधरी का संगीत।

खट्टा मीठा। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में, गुलजार का गीत और राजेश रोशन का संगीत।

खतरों के खिलाड़ी। डीजी सुनिए इस फिल्म से मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल को आनंद बख्शी का गीत और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं खानदान फिल्म का ये नगमा, नक्श लियालपुरी का लिखा हुआ और संगीतबद्ध खय्याम का।

मुकद्दर का सिकंदर। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा आशा भोंसले की आवाज़ में। अनजान के लिखे गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:42 हुए हैं, वक्त है अंतराल का।

आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे।

0: केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृहमंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थगंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र

0: मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग हैं, उनको मिला के तो 4,00,00,000 बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: करना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।
1: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण उत्तरी भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीटवेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया है।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दाखला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में

0: सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मुल्क में हर गैर कानूनी इमिग्रेंट का पता लगाने और उसे उसके वतन वापस भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो आज गांधीनगर लोकसभा हलके में 340 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: जनाब अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को भी याद किया। कर्नाटक में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहने वाले सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में गवर्नर के दफ्तर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे कबल उन्होंने अपने काबीना साथियों के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बाद में नामानिगारों से खिताब करते हुए डीके शिवकुमार का नाम लिए बगैर उन्होंने गवर्नर मौसूफ से कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नामजद वजीर आला को मदु किया जाए। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: दो मरतबा के वजीर आला और दो मरतबा के अपोजिशन रहनुमा सिद्धारमैया ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 17 रियासती बजट पेश किए थे। उन्होंने रियासत में अहिंदा तहरीक शुरू की थी जो पसमानदा तबकों और अकलियतों की नुमाइंदा थी। सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान की मर्जी के मुताबिक इस्तीफा दिया है। आज अहिंदा ग्रुपों की तरफ से इस्तीफे के खिलाफ रियासत के बहुत से इलाकों में मुजाहरे किए गए। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के हामियों ने खुशी मनाई। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों ही कानून साज पार्टी के एक नए रहनुमा को चुनने और काबीना में इम्कानी रद्दोबदल के मजीद इकदाम पर बातचीत के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बेंगलुरु से सुदिंद्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है कि मुल्क में कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,91,00,000 मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है जबकि निशाना 4,95,00,000 मकानों का है। जनाब चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मरबूत करके देही इलाकों के कुनबों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन मकानों को मंजूरी दी गई है उनमें से तकरीबन 75% मकान या तो खवातीन के नाम पर हैं या मुश्तरका मिल्कियत में हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकों, खासतौर पर खवातीन, गरीबों और बच्चों के मामलात से निमटते वक्त हसास और ऐसा रवैया अख्तियार करे जिससे शहरियों को और ज्यादा मरकजी हैसियत हासिल हो। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू आज सुबह गैंगटॉक में अलंकरण परेड के दौरान सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने अमन कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने में सिक्किम पुलिस

0: पिरुलकी 27 भी की।
1: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: इधर सिक्किम को उल्लास पहल के तहत मुकम्मल तौर पर खानदान रियासत होने का बाजाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन कल से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो कल बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवनगिरी में BDT यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लैटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। हफ्ते के रोज जनाब राधाकृष्णन पनाजी में गोवा के यौम तासीस की तकरीबात में शामिल होंगे और समंदरी उलूम के CSIR कौमी इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। नायब सदर इतवार के रोज कर्नाटक में ही श्री सनती पार्क का इफ्तिताह करेंगे और श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजूनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा है कि जमहूरियत मुज़ाकरात, बहस व मुबाहसे, इत्तफाक राय और इख्तलाफ राय की इजाजत देती है। उन्होंने ये बात दिल्ली कानून साज असम्बली में 1930 तक मरकजी कानून साज असम्बली की सभी 407 नशिस्तों की कार्रवाइयों पर मुश्तमिल मुनफरिद 89 जिल्दों का इजरा करते हुए कही। जनाब बिरला ने कहा कि इस मजमूए से आने वाली नस्लों और जमहूरी इदारों के लिए एक बेशबहा रहनुमाई फराहम होगी। उन्होंने कहा कि ये हुकूमतों का फर्ज है कि वो तारीख, विरासत और उन रहनुमाओं की रिकॉर्ड की हुई तकारीर का तहफ्फुज़ करें जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जद्दोजहद की थी। लोकसभा के स्पीकर ने दिल्ली कानून साज पार्टी के विधान चेतना नाम के एक पहले सहमाही जरीदे का भी आगाज किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, दिल्ली काबीना वजीर प्रवेश साहब सिंह और दिल्ली कानून साज असम्बली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी इस तकरीब में शिरकत की। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तेलंगाना में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगले 5 साल में 200 इंटरसिटी रेलगाड़ियां बनाएगा। इन ट्रेनों को कम दूरी के सफर के लिए पूरे मुल्क में लगाया जाएगा। जनाब वैष्णव ने रेलवे के वजीर मुमलिकत रवनीत सिंह बिट्टू और आला एहलकारों के साथ मीटिंग में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अमली शक्ल देने के मंसूबों का जायजा लिया। ये रेलगाड़ियां तकरीबन 300 किलोमीटर तक चलेंगी और हर ट्रिप में ये कई जगह रुकेगी ताकि लोग कस्बों और शहरों के दरमियान आसानी के साथ सफर कर सकें। इस तरह इन ट्रेनों के जरिए लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में सफर के लिए नया कम खर्च मुतबादल मिल जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो ने ट्विशा शर्मा की सास गिरी बाला सिंह को भोपाल में गिरफ्तार कर लिया है जो एक रिटायर्ड जिला और सेशन जज हैं। उन्हें ट्विशा शर्मा की मौत से मुतालिक केस में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने उनकी रिहायशगाह पर सुबह तकरीबन 10:30 बजे पहुंचकर तलाशी ली और उनसे तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें सपहर 5:10 पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें सीबीआई की एक अदालत में पेश किया गया और इससे पहले उनकी तिब्बी जांच की गई। ये गिरफ्तारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से इस केस को तश्वीशनाक बताते हुए और जारी तफ्तीश के पेश नजर उनकी पेशगी जमानत मनसूख किए जाने के एक दिन बाद की गई है। ट्विशा शर्मा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 12 मई को मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई थी। उनके ससुराल के अफराद ने इसे खुदकुशी का केस बताया था जबकि ट्विशा के कुंबे ने कत्ल का इल्जाम आयद किया था। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में डोरीमल के मकाम पर घने जंगलों में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई का ये छठा दिन है। हिफाजती दस्तों ने इस इलाके का मुहासरा कर लिया और यहां दहशतगर्दों के छिपने की मुश्तबा जगहों पर ताजा फायरिंग की और ग्रेनेड लॉन्चर से कई हमले किए। इब्तदाई सुराग रसानी से मालूम हुआ था कि 2 या 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द यहां छुपे हुए हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पेचिंग में भारत चीन सरहदी मामलात पर मुशावरत और तालमेल से मुतालिक वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान यह तबादला ख्याल किया गया। तरफेन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीकेकार तय करने और सरहद के दोनों तरफ

तुम बिन टू डीजे फिल्म से अंकित तिवारी को, शकील आजमी का गीत और मनोज मुंतशिर का संगीत।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में सुनिए नगीना फिल्म का ये नगमा। आनंद बख्शी का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश और मयंक। रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा ने। तो सुनिए, आप सबकी पसंद पर जांबाज फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार और सपना की आवाज़ों में।

लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा, दंदरेंगी से भागवत वर्मा, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सबने सुनना चाहा है बाजीगर फिल्म का ये नगमा, विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ों में, जमीर काजमी के लिखे गीत की धुन बनाई है अनु मलिक ने। तो सुनते हैं इन सब की फरमाइश का ये नगमा।

अम्बेडकर चौक खुरैसे राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लू राम पूरन रोहित छोटू डुंडुन एवं समस्त परिवार नेपाल पैलेस सागर से तिरक राणा मीना राणा मोनिका नुपुर ऋषिका और रॉबिन आप सबने सुनना चाहा है। चालबाज फिल्म का ये नगमा मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम आयशा खान हादिया खान असमा सालिया शुएब खान मुस्तफ़ा खान रऊफ भाई शाहिद भाई गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर वैशाली कटनकर पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक मोहम्मद शाकिर मुश्ताक अहमद बेबी मंसार रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी आप सब ने सुनना चाहा है जंगबाज फिल्म का ये नगमा मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिए पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन, राग है गौरख कल्याण। आपके साथ तबला संगत की है रामस्वरूप रतोनिया ने और हारमोनियम पर लहरा दिया है रामदास मुंगरी ने।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन, राग था गौरख कल्याण। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृहमंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
3: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136

0: इससे अधिक विधायकों का समर्थन है।
1: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।